आकाशवाणी का ये शिवपुरी केंद्र है, एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 15वीं तिथि, तदनुसार 6 जुलाई सन 2026। इस समय प्रातः के 5:56 हुए हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन प्रसारण सभा आरंभ होती है। सुप्रभात।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। पहले चरण में श्री मोदी आज इंडोनेशिया पहुंचेंगे। ये प्रधानमंत्री की 4थी इंडोनेशिया यात्रा है। मई 2018 में दोनों देशों के संबंधों के व्यापक रणनीतिक भागीदारी तक पहुंचने के बाद से शीर्ष नेतृत्व के बीच पहली द्विपक्षीय वार्ता होगी। प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी की प्रगति की समीक्षा करेंगे। श्री मोदी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक नगर योग्यकार्ता भी जाएंगे। योग्यकार्ता में वे प्रबन्नन मंदिर जाएंगे। भारत और इंडोनेशिया मिलकर इस मंदिर का संरक्षण कार्य पूरा करेंगे। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज बैठक होगी। इस दौरान मंदिर को मिले दान की छानबीन कर रहे विशेष जांच दल की रिपोर्ट सहित अनेक प्रशासनिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा होगी। ये बैठक पहले दोपहर 3 बजे मणिराम छावनी में होनी थी, लेकिन अब ये राम मंदिर परिसर में ही होगी। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। ये समारोह सहकार से समृद्धि की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर श्री शाह कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इनमें 232 अनाज भंडारण गोदामों का उद्घाटन, सहकार वन का भूमि पूजन, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में टिश्यू कल्चर सुविधाओं का भूमि पूजन, राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस NCD और जियो टैग मोबाइल एप्लीकेशन तथा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के दुग्ध आपूर्ति समीक्षा डैशबोर्ड पोर्टल का शुभारम्भ शामिल है। असम में विधानसभा का बजट अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। इससे पहले कल गुवाहाटी में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में आपात सेवाओं में मजबूती लाने, औद्योगिक विकास बढ़ाने और शासन में सुधार के लिए कई नीतिगत फैसलों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने बताया कि सत्र के दौरान पेश किए जाने वाले अनेक विधेयकों को भी स्वीकृति दी गई है। इनमें असम सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम स्थापना

0: डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के 2 वर्षीय आधिकारिक समारोह के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीत लिया है। फाइनल में लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 7 विकेट से पराजित किया। इंग्लैंड ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 150 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने 17 ओवर और 1 गेंद में 3 विकेट के नुकसान पर 153 रन बनाकर मैच जीत लिया। बेथ मुनी को प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में नॉर्वे ने बड़ा उलटफेर करते हुए 5 बार की विश्व चैंपियन ब्राजील को 1-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। स्टार स्ट्राइकर एर्लिंग हालंद ने 2 शानदार गोल कर नॉर्वे को मजबूत बढ़ा दिलाई। ब्राजील की तरफ से एकमात्र गोल नेमार जूनियर ने किया। फ्रांस और मोरक्को के बाद क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली नॉर्वे तीसरी टीम है। विंबलडन टेनिस में सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने रूस के रोमन सफियोलिन को हराकर पुरुष एकल क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। ऑल इंग्लैंड क्लब में जोकोविच की ये 106वीं एकल जीत है। उन्होंने विंबलडन पुरुष एकल में 105 जीत का रोजर फेडरर का कीर्तिमान भी तोड़ा। इस चैंपियनशिप में केवल मार्टिना नवरातिलोवा ने ही 120 एकल मैच जीते हैं। वहीं महिला एकल में कैरोलिना मुचोवा ने पूर्व चैंपियन बारबोरा क्रेस्चिकोवा को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये शिवपुरी केंद्र है, एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 6:05 हुए हैं। समय हुआ है भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना का। आइए सर्वप्रथम नमन करते हैं हम अपनी मातृभूमि को। सुनते हैं ये मातृवंदना।

मातृभूमि को नमन करने के पश्चात आइए नमन करते हैं हम अपने परमपिता परमात्मा को। सुनते हैं ये भक्ति गीत।

अभी आप सुन रहे थे विनोद अग्रवाल की आवाज में कार्यक्रम का ये पहला भक्ति गीत। कार्यक्रम वंदना आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला भक्ति गीत।

अभी आप सुन रहे थे लखवीर सिंह लखा की आवाज में कार्यक्रम का ये भक्ति गीत। कार्यक्रम वंदना आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला भक्ति गीत।

कार्यक्रम का ये भक्ति गीत आप सुन रहे हैं सोनू निगम की आवाज में। कार्यक्रम के इस भक्ति गीत के साथ ही कार्यक्रम वंदना अब यहीं संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये शिवपुरी केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम चिंतन। आज सुनिए कर्म और अकर्म विषय पर डॉक्टर गंगाधर प्रसाद त्रिपाठी के ये विचार।

अर्जुन के समक्ष कर्म और अकर्म का प्रश्न उठाते हुए उसे इस प्रकार विवेचित किया है जिससे उस विवेचन का उपयोग सभी समय में सभी के लिए लाभप्रद हो सके। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, कौन कर्म किसके लिए श्रेयस्कर है और कौन सा अकर्म त्याज्य है, इसका विचार करते हुए कृष्ण ने कहा कि जो सज्जन पुरुष अपने लिए निर्धारित सभी कर्म यथाविधि संपादित करता है वही उसके लिए उसका कर्म है। किंतु ऐसा कर्म करते हुए भी उसकी एक विशेषता ये होती है कि वो बाह्य रूप से कर्म तो सभी करता है किंतु आंतरिक रूप से किसी कर्म में लिप्त नहीं रहता है। उसका प्रत्येक कार्य किसी भी प्रकार की स्वार्थ की भावना से प्रेरित नहीं होता है और न ही वो किसी भी अपने कार्य से किसी व्यक्ति का अहित करने का प्रयत्न करता है। उसे कर्म करते हुए इतनी भी चिंता नहीं होती कि इसका फल क्या होगा और उस फल से उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि कर्म करते हुए उस सत्पुरुष को किसी भी प्रकार की असफलता मिलती है अथवा किसी प्रकार का दुख आ पड़ता है तो भी उस पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके विपरीत यदि उसे अपने कर्म से किसी प्रकार से सफलता मिल जाती है और उसके लिए आनंद का समय उपस्थित हो जाता है तो भी वो न तो सफलता से इतराता है और न ही सफलता के आनंद से आनंद विभोर हो जाता है। वो अपने कर्म को कर्म मानकर उसे ईश्वरार्पण करता हुआ कर्म में रत रहता है। यही कर्म है और यही कर्म में रत रहने का सिद्धांत है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म और अकर्म के विषय में बुद्धिमानों में भी संदेह बना रहता है। स्वयं के लिए नियत कर्म को न करना अथवा कर्म

0: उसके फल के प्रति आशान्वित होकर मन से सुखी और दुखी होना अकर्म है। अकर्म में प्रवृत्ति होने पर कर्म का सहज त्याग हो जाता है और व्यक्ति अकर्म जन्म दुख से दुखी रहता है। गीता के कृष्ण का संपूर्ण उपदेश इसीलिए है कि व्यक्ति कर्म और अकर्म में भेद कर सके तथा कर्म में प्रवृत्त होकर अकर्म का त्याग कर सके। महाभारत के युद्ध के प्रारंभ में जब अर्जुन को मोह हुआ था तब भी इसी कर्म और अकर्म के परिप्रेक्ष्य में श्री कृष्ण ने कहा था कि तुम्हारे लिए नियत ये युद्ध ही तुम्हारा कर्म है, यदि तुम इसका त्याग करते हो तो ये तुम्हारी अकर्म में प्रवृत्ति होगी जो किसी भी तरह से हितकर नहीं है। इस युद्ध के परिणाम में तुम्हारी विजय होगी अथवा पराजय ये तुम्हारे विचार का विषय नहीं है। विजय और पराजय के प्रति आशावान रहना अथवा निराश होने का अधिकार तुम्हारा नहीं है। तुम्हारा अधिकार केवल यह है कि क्षत्रिय होने के नाते सम्मुख आए हुए युद्ध में पूरी वीरता के साथ प्रवृत्त हो जाओ, यही तुम्हारे लिए कर्म है। तब अर्जुन ने भी ये कहा था कि इस युद्ध में जो योद्धा उपस्थित हैं उनमें से कुछ मेरे पारिवारिक जन भी हैं, मैं उनका वध करके पाप का भागी नहीं बनूंगा। इसका समाधान करते हुए भगवान कृष्ण ने कहा था कि ये तुम्हारा भ्रम है, कोई किसी का पारिवारिक जन नहीं होता, कोई किसी को मारने वाला भी नहीं होता, तुम स्वयं को इनका पारिवारिक और मारने वाला मान रहे हो, इसीलिए तुम्हारे मन में इस प्रकार की द्विविधा उपस्थित है और इसीलिए तुम अपने लिए निर्धारित कर्म से विरत हो रहे हो, ये अकर्म है और श्रेयस्कर नहीं है। अपने लिए निर्धारित कर्म करना श्रेयस्कर होता है और अकर्म से विरत रहना ही कल्याणदायक है।
1: अभी आप सुन रहे थे कर्म और अकर्म विषय पर डॉक्टर गंगाधर प्रसाद त्रिपाठी के ये विचार। कार्यक्रम था चिंतन, आकाशवाणी का ये शिवपुरी केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस का संगीतमय प्रसारण।

संवत 1631 के चैत्र मास की नवमी तिथि मंगलवार को अयोध्या नगरी में गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना आरंभ की थी। भक्तजन का विश्वास है कि श्री रामचंद्र की जन्म तिथि को सारे तीर्थ अयोध्या चले आते हैं। असुर, नाग, पक्षी, मनुष्य, मुनि और देवता सभी अयोध्या नगरी आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री राम की कीर्ति और यश का गान करते हैं। कुपथ, कुतर्क, कुचाल और कलयुग के छल प्रपंच और कपट दंभ आदि को भस्म करने के लिए श्री राम के गुणों की तुलना प्रचंड अग्नि से की गई है और उनका चरित्र पूर्णिमा के चंद्रमा की शीतल स्निग्ध किरणों के भांति सबको सुख देने वाला है। तुलसीदास का निवेदन है कि जिस प्रकार विस्तार से भगवान शंकर ने पार्वती जी के प्रश्नों के उत्तर दिए थे, उसी प्रकार वो भी इस अद्भुत कथा की रचना करके उसे गाकर कहेंगे। भक्त कवि की विनय है कि जिसने ये कथा पहले कभी नहीं सुनी हो वो इसे सुनकर आश्चर्य ना करे, क्योंकि हरि की भांति हरि की कथा भी अनंत है।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री राम चरित मानस का संगीतमय प्रसारण। गायक स्वर थे सुरेश पाटकर और साथियों के। आकाशवाणी का ये शिवपुरी केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि सामायिकी। आज सुनिए फसलों में संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन विषय पर जानकारी डॉक्टर मुकेश कुमार भार्गव से।
1: किसान भाइयों, बदलते दौर पे खेती में धीरे धीरे बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं। उन बदलावों के साथ हमारी जो खेती में पोषक तत्वों की श्रृंखला है उसका समन्वय करते हुए समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन अपनाना भी बहुत जरूरी है। यह मैं आप लोगों से बात करना चाह रहा हूँ कि आप प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, रासायनिक खेती ये आजकल सुन रहे हैं। इसके साथ साथ एक सबसे महत्वपूर्ण है इन सब के बीच की बात है समन्वित खेती में पोषक तत्व प्रबंधन। तो पोषक तत्व प्रबंधन के लिए सबसे पहले अभी आप लोगों के खेत खाली होंगे, उन खाली खेतों में गोबर आधारित जो भी खाद है आपके पास, चाहे वो कंपोस्ट खाद हो, नाडेप खाद हो, वर्मी कंपोस्ट है, घनजीवामृत है, उसको आप खेत की आखिरी तैयारी के समय जुताई से पहले मिला दें और 5 से लेकर 10 टन प्रति हेक्टर के मान से मिला सकते हैं। यदि वर्मी कंपोस्ट है या घनजीवामृत है 2 से 5 टन भी मिला सकते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण फसल के लिए लाभकारी परिणाम देगी। साथ ही साथ किसान भाइयों, जो किसान भाई ने हरी खाद के रूप में सनई है, डेंचा है या मूंग है, उड़द की खेती की है, कहीं कहीं मूंगफली की भी खेती करते हैं, तो उसका जो रेसिड्यू है या उसके जो अवशेष हैं उसको भी मिट्टी में मिला सकते हैं। और डेंचा सनई तो मिट्टी में पलटाई करीब 25-30 दिन पर कर देते हैं, उसमें मिट्टी में जैविक जो अंश है, जीवांश है जिसको कहते हैं, उसकी एक बहुत अच्छी वृद्धि होती है और फसल को लाभ होता है। तो ये पूरी श्रृंखला, चाहे गोबर की खाद हो, हरी खाद देना, ये समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन की श्रृंखला में ही आते हैं। इसके बाद जब हम फसल बोने जा रहे हैं, कौन सी फसल बो रहे हैं, अनाज बाली बो रहे हैं, धान बोएंगे या मूंगफली बोएंगे, सोयाबीन बोएंगे, उसके लिए मिट्टी का परीक्षण यदि आपने कराया हुआ है तो उसके अनुशंसा अनुरूप, यदि नहीं कराया है तो अभी भी करा सकते हैं। हमारी शिवपुरी में कई मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला है, वो आजकल तो कई प्राइवेट सेक्टर में भी कर रहे हैं, तो इनसे आपको जांच के उपरांत पता चल जाएगा। तभी हमको रासायनिक उर्वरक जो हमारे डीएपी है, एनपीके है, पोटाश है, यूरिया है, सुपर है, अलग अलग श्रृंखला होती है। और किसान भाई डीएपी के पीछे पड़े रहते हैं, मैं तो कहूंगा आप नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाश तीनों एक में ही आते हैं, उसका प्रचलन मिल रहा है। यदि नहीं है तो हम अलग अलग भी कॉम्बिनेशन बना के दे सकते हैं, उत्पादन में कोई कमी नहीं आती। तो ये समन्वित और अनुशंसित मात्रा में देना बहुत जरूरी है।

0: रासायनिक उर्वरकों का। इसके साथ साथ किसान भाइयों, कुछ जैव उर्वरक बायो फर्टिलाइजर इनको कहते हैं, जो दलहनी फसलों के लिए जैसे राइजोबियम है और अनाज वाली फसलों के लिए एजिटोबैक्टर है और धान के लिए ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको बीजीए कहते हैं, तो नील हरित शैवाल। तो इससे हम बीज उपचार कर रहे हैं, तो बीज उपचार के लिए करीब 10 ml प्रति किलोग्राम बीज के मान से जैव उर्वरक से उपचार कर लेते हैं तो वो बड़े लाभकारी होता है। साथ ही साथ फास्फोरस सोलुबिलाइजिंग बैक्टीरिया, इससे भी 10 ml प्रति किलोग्राम बीज के मान से उपचार करने से जो फास्फोरस हमने पहले से दी है वो पौधों को पूरी फसल को उपलब्ध नहीं हो पाती या केमिकल रिएक्शन के माध्यम से जमीन में फिक्स हो गई है, तो उसको वो घुलनशील बनाते हैं। यहाँ किसान भाइयों में एक सुझाव भी देना चाहूंगा, इन रसायनों को आपने दिया है वो जमीन की उत्पादकता बढ़ाने में लाभकारी के लिए जैव उर्वरकों के द्वारा उनको उपलब्ध फॉर्म में लाने के लिए आप करीब 20-25 किलो मिट्टी ले लें या रेत ले लें, उसमें जैव उर्वरक के रूप में राइजोबियम है, एजिटोबैक्टर है डाल दें और खेत की आखिरी जुताई के समय भुरकाव कर दें, तो वो बैक्टीरिया बढ़ के पूरे खेत में प्रसारित हो जाते हैं और आपकी जो जमीन है उसमें घुलनशील फॉर्म में सल्फर या जो फॉस्फोरस है या जो भी पोषक तत्व है उसको एक लाभकारी परिणाम देते हैं। इसके साथ किसान भाई, जब हम फसल बोते हैं तो बोते समय हमको आधी मात्रा अनुशंसा की अनुरूप उर्वरकों की देनी चाहिए और बची हुई शेष मात्रा जैसे हमारी जो धान वाली फसल है तो खड़ी फसल पे दी जाती है। लेकिन जब दलहनी फसल की बात करते हैं तो दलहनी फसलों में बहुत कम आवश्यकता होती है क्योंकि नाइट्रोजन स्थिर करने वाले इसमें जो बैक्टीरिया होते हैं दलहनी फसल की जो जड़ों में पाए जाते हैं तो वो अपने आप स्वतः वातावरण से नाइट्रोजन लेते हैं और फसल को लाभ कराते हैं। आवश्यकता ये है कि हमको जो इनका उपचार करके एक टीकाकरण करना चाहिए वो बहुत जरूरी है। इस प्रकार आप देखें ये एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन प्रणाली में एक बार मैं फिर किसान भाइयों से अनुरोध के साथ कहना चाहूंगा, इससे आपकी फसल की लागत भी कम होगी और उर्वरक की जो रासायनिक निर्भरता है वो भी कम होगी। इसके लिए आप गोबर की खाद, चाहे वो नाडेप खाद हो, वर्मी कम्पोस्ट हो, घंजीवामृत हो, इसका उपयोग करें, हरी खाद का प्रयोग करें। यदि आपने जो जायद में फसल लगाई हुई है जैसे मूंग की फसल लगाई है तो कुछ आपने फली की तोड़ाई कर ली हो, बाकी शेष फसल को आप मिट्टी में मिला सकते हैं तो वो मिट्टी को पोषण देती है और मिट्टी की तासीर एकदम से बदलाव होती है, ये बहुत जरूरी है। साथ ही साथ जो जैव उर्वरक हैं उनका भी अपना एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है मिट्टी सुधार में और जो पोषक तत्व दिए जा चुके हैं उनको उपलब्ध कराने में। इस प्रकार आप जो अनुशंसाएं हैं उनके अनुरूप आप आगामी समय में खरीफ फसलों में पोषक तत्व की प्रबंधन करेंगे तो आपकी फसलों से भरपूर उत्पादन होगा, फसल की लागत कम होगी, रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता भी कम होगी।
1: आप ये आप सुन रहे थे फसलों में संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन विषय पर डॉक्टर मुकेश कुमार भार्गव से ये जानकारी। कार्यक्रम था कृषि समय की। आकाशवाणी का ये शिवपुरी केंद्र है FM बैंड 100.2 MHz पर। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम।

कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत हम आपको जानकारी देते हैं हमारे स्टूडियो से प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं संक्षिप्त से जानकारी हमारे स्टूडियो से। प्रातः 6:55 पर सुनिएगा संस्कृत में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। हिंदी समाचारों का समय रहेगा प्रातः 7:00, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। सांप्रदायिक सद्भाव विषय पर एक लघु वार्ता सुनिएगा प्रातः 7:05 पर। प्रादेशिक समाचारों का समय रहेगा प्रातः 7:05 का, प्रातः 7:10 का, जिसे हम भोपाल केंद्र से प्रसारित अनुप्रसारित करेंगे। हिंदी साहित्य में छायावाद विषय पर एक हिंदी वार्ता सुनिएगा। वार्ताकार होंगी डॉक्टर शवाना खान। इस कार्यक्रम का प्रसारण हमारे स्टूडियो से प्रातः 7:20 पर किया जाएगा। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा प्रातः 7:30 पर। सूचना परक दैनिक कार्यक्रम नमस्कार शिवप्री हम आपके लेकर आएंगे रोजाना की तरह प्रातः 7:45 पर। 8:00 सुनिएगा समाचार प्रभात और 8:15 पर सुनिएगा मॉर्निंग न्यूज हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी फरमाइश हम आपके लेकर आएंगे रोजाना की तरह प्रातः 8:30 पर 9:30 पर। जिले की चिट्ठी का अनुप्रसारण हमारे भोपाल केंद्र से होगा प्रातः 10 बजे और सुगम संगीत का आनंद लीजिएगा प्रातः 10:05 पर हमारे स्टूडियो से। साथ ही सुनिएगा 10:30 पर कार्यक्रम फिल्म संगीत। दोपहर 11 बजे से आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम हमारे भोपाल केंद्र से रिले होंगे। संध्या 7:21 पर सुनिएगा कार्यक्रम चौपाल, जिसके अंतर्गत आज चर्चा के विषय रहेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जल संरक्षण क्यों और कैसे, बरसात के मौसम में मच्छरों से करें बचाव। साथ ही होगी एक भेंट वार्ता, शिवपुरी जिले में आयुष विभाग की सुविधाएं विषय पर डॉक्टर वार्ताकार होंगे डॉक्टर अनिल वर्मा और इनसे भेंट करेंगे डॉक्टर समर्थ अग्रवाल। कार्यक्रम रहेगा चौपाल, जिसे हम संध्या 7:21 पर हमारे स्टूडियो से प्रसारित करेंगे। रात्रि 8 बजे से आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम हमारे भोपाल केंद्र से जारी रहेंगे। श्रोताओं, ये तो थी संक्षिप्त सी जानकारी हमारे स्टूडियो से प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। इसी के साथ कार्यक्रम विपरण अभी संपन्न हुआ। आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है, कुछ ही पलों में सुनिएगा संस्कृत में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: इयम् आकाशवाणी, संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्, प्रवाचिका निधिः झा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्यारभ्य इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड देशानां षड्दिवसीय यात्रायै प्रस्थितः। अस्याः त्रिदेशीय यात्रायाः प्रथमे चरणे असौ अद्य इंडोनेशिया देशं प्राप्स्यति। प्रधानमंत्रिणः मोदिनः इयं चतुर्थ इंडोनेशिया यात्रा वर्तते। अत्रावधेयं यत् स्वयात्रावधौ प्रधानमंत्री इंडोनेशिया देशस्य नवनिर्वाचित राष्ट्रपतिना प्रवोवो सुबियांतो इत्यनेन सह द्विपक्षीय वार्तालापं विधास्यति। संधेः प्रगतिमालक्ष्य समीक्षां च करिष्यति। तदीय मुख्याः आधिकारिकाः कार्यक्रमाः जकार्ता नगरे भविष्यन्ति। परं असौ योग्यकर्ता इति कञ्चन ऐतिहासिकं सांस्कृतिकं च नगरम् अपि गमिष्यति। जकार्ता नगरे प्रधानमंत्री सुविशालं भारतीय प्रवासी समुदायं संबोधयिष्यति। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाहः अद्य नवदेहल्यां आयोजितं सहकारिता मंत्रालयस्य पञ्चमं स्थापना दिवस समारोहं अलंकरिष्यति। मंत्रालयेन ज्ञापितं यत् अयं समारोहः सहकारात् समृद्धिः इति राष्ट्रीय संकल्पनामाधृत्य विधीयते। अस्मिन् मंगलप्रसंगे श्री शाहः अनेकासां प्रमुखाभिनव परियोजनानां शिलान्यासं उद्घाटनं च विधास्यति। एतासु योजनासु 33,200 अन्न संग्रह भण्डाराणां लोकार्पणं, सहकार वनस्य भूमिपूजनं, उत्तरप्रदेश महाराष्ट्र राज्ययोः त्रिषु कल्चर इति सुविधायै भूमिपूजनं, राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस NCD 3.0 इत्यस्य भौगोलिक चिन्हांकन दूरभाषानुप्रयोगस्य च आरम्भः। जम्मू कश्मीर केन्द्रशासित प्रदेशे प्रचलन्त्यां वार्षिक श्री अमरनाथजी यात्रायां श्रद्धालूनां महत्सम्मर्धः दृश्यते। यत्र यात्रायाः प्रथमेषु त्रिषु दिनेष्वेव 50,000+ जनाः पवित्र गुहा मन्दिरे समागताः। रविवासरे प्रायः 25,000 भक्तैः बाबा बर्फानी इत्यस्य दिव्य दर्शनं विहितम्। इतः पूर्वं द्वितीय दिने प्रायः 20,000 जनाः, उद्घाटन दिवसे च 12

0: सहस्रतोप्यधिकाः तीर्थयात्रिणः भगवतः दर्शनं लब्धवन्तः। अनेन सहैव जम्मू कश्मीरस्य उपराज्यपालः मनोज सिंहा श्वः नुवान पहलगाम इति आधार शिबिरस्य निरीक्षणं विधास्यति। सममेव ह्यः तत्र तीर्थयात्रिभ्यः कल्पितानां व्यवस्थानां प्रबन्धानां च सूक्ष्म पुनरीक्षणं तेन कृतम्। देशस्य विशालेषु भूभागेषु प्रावृत् स्थितिः अत्यधिकं तीव्रीभूता सञ्जाता, येन हि अतिवृष्टिः, मेघगर्जनं, विद्युत्पातः, प्रचण्डचक्रवादवायुः च प्रचलति। भारतीय ऋतुविज्ञानविभागेन विज्ञापितं यत् आगामिषु चतुर्षु दिनेषु गुजरातराज्यस्य कतिपयभागेषु, हरियाणा पंजाब राजस्थानेषु च प्रावृत् स्थितिः सर्वथा अनुकूला वर्तते। विभागेनाद्य छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, उत्तराखंड राज्येषु अतिवृष्टेः पूर्वानुमानं कृतम्। अपरतः आगामिषु द्वित्रिदिनेषु राष्ट्रीय राजधान्यां दिल्ल्यां, उत्तरप्रदेशे, पंजाबे, चंडीगढ़क्षेत्रे विकीर्णरूपेण वृष्टिः सम्भाव्यते। विम्बल्डन टेनिस प्रतिस्पर्धायां गतरात्रौ सर्बियादेशस्य लब्धप्रतिष्ठेन क्रीडकेन नोवाक जोकोविचिन रूसदेशस्य रोमन सफ्यूलिनं पराजित्य पुरुषेकलक्रीडायाः प्रागुपान्त्यचक्रे स्थानं सुरक्षितम्। इतः परम् असौ फेलिक्स नगरे उत डेविवोचिस इत्यनेन सह क्रीडां करिष्यति इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। पहले चरण में श्री मोदी आज इंडोनेशिया पहुंचेंगे। ये प्रधानमंत्री की चौथी इंडोनेशिया यात्रा है। मई 2018 में दोनों देशों के संबंधों के व्यापक रणनीतिक भागीदारी तक पहुंचने के बाद से शीर्ष नेतृत्व के बीच ये पहली द्विपक्षीय वार्ता होगी। प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी की प्रगति की समीक्षा करेंगे। श्री मोदी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक नगर योग्यकार्ता भी जाएंगे। योग्यकार्ता में वे प्रम्बनन मंदिर जाएंगे। भारत और इंडोनेशिया मिलकर इस मंदिर का संरक्षण कार्य पूरा करेंगे। जकार्ता में प्रधानमंत्री भारतवंशियों को भी संबोधित करेंगे। भारत स्विट्जरलैंड के जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के 9वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन ने 6 से 8 जुलाई तक इस सत्र का आयोजन किया है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि सत्र में सदस्य देश अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, शिक्षाविद और अन्य हितधारक उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज बैठक होगी। इस दौरान मंदिर को मिले दान की छानबीन कर रहे विशेष जांच दल की रिपोर्ट सहित अनेक प्रशासनिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा होगी। ये बैठक पहले दोपहर 3 बजे मणिराम छावनी में होनी थी, लेकिन अब ये राम मंदिर परिसर में ही होगी। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। ये समारोह सहकार से समृद्धि की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर श्री शाह कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। इनमें 232 अनाज भंडारण गोदामों का उद्घाटन, सहकार वन का भूमि पूजन, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में टिश्यू कल्चर सुविधाओं का भूमि पूजन, राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस NCD और जियो टैग मोबाइल एप्लीकेशन तथा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के दुग्ध आपूर्ति समीक्षा डैशबोर्ड पोर्टल का शुभारंभ भी शामिल है। असम में विधानसभा का बजट अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। इससे पहले कल गुवाहाटी में

राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में आपात सेवाओं में मजबूती लाने, औद्योगिक विकास को बढ़ाने और शासन में सुधार के लिए कई नीतिगत फैसलों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा ने बताया कि सत्र के दौरान पेश किए जाने

ये कार्यक्रम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के 2 वर्षीय आधिकारिक समारोह के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में नॉर्वे ने बड़ा उलटफेर करते हुए 5 बार की विश्व चैंपियन ब्राजील को 1-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। स्टार स्ट्राइकर एर्लिंग हालैंड ने 2 शानदार गोल कर नॉर्वे को मजबूत बढ़त दिलाई। ब्राजील की तरफ से एकमात्र गोल नेमार जूनियर ने किया। ब्राजील की हार के बाद नेमार जूनियर ने संन्यास की घोषणा कर दी। फ्रांस और मोरक्को के बाद क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली नॉर्वे अब तीसरी टीम है। ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीत लिया है। फाइनल में लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 7 विकेट से पराजित किया। इंग्लैंड ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 150 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने 17 ओवर और 1 गेंद में 3 विकेट के नुकसान पर 153 रन बनाकर मैच जीत लिया। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी का ये शिवपुरी केंद्र है एफएम एंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम लघु वार्ता। आज सुनिए सांप्रदायिक सद्भाव विषय पर ये लघु वार्ता। श्रोताओं, इस देश की अगर सबसे बड़ी कोई दुश्मन है तो वो है सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता ऐसा जहर है जिसमें व्यक्ति केवल अपनी धर्म, जाति और भाषा का ही अच्छाइयों को गिनाता है और दूसरों की धर्म की लाख बुराइयां करता है। इससे देश में सांप्रदायिक झगड़ों को बल मिलता है। इसलिए देश के प्रेमी सांप्रदायिक हीन भावना पर ज्यादा बल देते हैं। उनकी हर कोशिश यही होती है कि देश में किसी तरह के झगड़े ना हों। सब धर्म, जाति व भाषा के लोग एक थाली में बैठकर भोजन करें, एक साथ देश को आगे बढ़ाने का प्रयास करें और जब भी देश पर बाहरी हमला हो तो सब अपने जातिगत, धर्मगत भेद मिटाकर दुश्मनों के आगे सीना तान कर खड़े हो जाएं। श्रोताओं, सच तो यह है कि आज सबसे बड़ा देश को खतरा भारत की एकता को है। इस एकता को दुश्मन सांप्रदायिक तनाव पैदा कर खत्म करने पर तुले हुए हैं। देश में संप्रदाय के नाम पर ईर्ष्या फैलाई जाती है, दंगे भड़काए जाते हैं, तोड़फोड़ की घटनाएं की जाती हैं, बर्बरता और अमानवीय प्रवृत्तियां अपनाई जाती हैं, जिसके कारण मानवीय संवेदनाएं चूर चूर हो जाती हैं। सांप्रदायिकता में मानव पशुवत व्यवहार करता है, शांति और सद्भाव की जगह रक्तपात के लिए उतारू हो जाता है और मानवीय मूल्यों को ताक पर रख देता है। ऐसे में देश का प्रबुद्ध वर्ग समाज में सांप्रदायिक सद्भावना लेकर आता है और लोगों को समझा बुझा कर शांत करता है। ये प्रबुद्ध वर्ग कौन है? ये हम स्वयं हैं। जी हाँ, हमें स्वयं को इस सद्भावना से जोड़ना होगा, सांप्रदायिक भावनाओं को बल देना होगा, सभी धर्म और जातियों के साथ एक समान व्यवहार करना, यही सांप्रदायिक सद्भावना है। असल में हम सांप्रदायिकता का सही अर्थ समझते ही नहीं हैं। जब तक हम राष्ट्र, धर्म और संप्रदाय का सही अर्थ नहीं जानेंगे तब तक सांप्रदायिक सद्भावना कायम नहीं हो सकती। असल में संप्रदाय एक विशेष प्रकार की पूजा पद्धति का नाम है। साधारणतः किसी व्यक्ति के द्वारा चलाए गए पंथ को संप्रदाय कहते हैं, जैसे इस्लाम, बौद्ध, शाक्त, वैष्णव, शैव संप्रदाय आदि। इनके चलाने वाले कोई ना कोई महापुरुष ही होते हैं और कोई भी पंथ का संचालक कभी भी किसी दूसरे धर्म का अपमान नहीं करता, ना ही किसी दूसरे धर्म को मानने से मना करता है। पर स्वार्थी समाज अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए इन विभिन्न पंथ के लोगों को एक दूसरे से लड़वा देते हैं, जिसके कारण इंसानियत का खून होता है। संप्रदाय पूजा पद्धति है जबकि धर्म एक नियम है। ये ऐसे नियम है जिनसे समाज संचालित होता है। संप्रदाय कोई धर्म नहीं है, संप्रदाय

संकुचित विचारधारा है, जबकि धर्म विशाल है। ऐसे में अगर हम देश में सांप्रदायिक एकता बनाए रखना चाहते हैं, सांप्रदायिक सद्भावना बनाए रखना चाहते हैं, तो हमें अपने मन को उदार बनाना होगा। हमें अपने विभिन्न संप्रदायों की पूजा पद्धति के प्रति आदर भाव दिखाना होगा। इन संप्रदायों की अच्छी बातों को अपनाना होगा। विचारों में मतभेद दूर करने होंगे, तब देश में सांप्रदायिक सद्भावना कायम होगी और इसी भावना से देश उन्नति करेगा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। जी हाँ, सबसे पहले हम एक हिंदुस्तानी हैं, बस इस बात का ध्यान रखिए। तो हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। हमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इन सब से ऊपर उठकर हमें सिर्फ एक अच्छा इंसान बनना है और अपने समाज और अपने देश की उन्नति के लिए सदा अग्रसर रहना है। श्रोताओं, इसी के साथ देती हूँ मैं अपनी चर्चा को यहीं विराम। आकाशवाणी का ये शुभ प्रिय केंद्र है, कुछ ही पलों में सुनिएगा

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यात्रा आज से शुरू। 40 वर्षों बाद हो चुकी न्यूजीलैंड की पहली द्विपक्षीय यात्रा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज भोपाल में करेंगे डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क का भूमि पूजन। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शिवपुरी में रखी अदाणी डिफेंस फैक्ट्री की आधारशिला। रक्षा क्षेत्र में मिलेगी मजबूती। और प्रदेश में मानसून की जोरदार बारिश जारी। सागर, दमोह सहित 9 जिलों में आज अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। पहले चरण में वे इंडोनेशिया पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और योग्याकार्ता में प्रम्बानन मंदिर भी जाएंगे। दूसरे चरण में प्रधानमंत्री 8 जुलाई को ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पहुंचेंगे, जहां वे प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के साथ वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। यात्रा के तीसरे चरण में श्री मोदी 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड में होंगे, जो पिछले 40 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली न्यूजीलैंड यात्रा होगी। इस दौरान वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। तीनों देशों में प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय के लोगों को भी संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज भोपाल के सतगढ़ी में 173 एकड़ में विकसित होने वाले डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क का भूमि पूजन करेंगे। इस परियोजना में 10,000 क्षमता वाला विश्व स्तरीय कन्वेंशन और एग्जीबिशन सेंटर भी विकसित किया जाएगा। कार्यक्रम में देश प्रदेश के करीब 200 से अधिक उद्योगपति और निवेशक शामिल होंगे। इस परियोजना से 15,000 से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने का अनुमान है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल शिवपुरी जिले के पाली में लगभग 2,500 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले अदाणी डिफेंस एंड एरोस्पेस ग्रुप के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा,
1: मध्यप्रदेश में निवेश का एक नया मार्ग खुला है। ग्वालियर अंचल में हमारा डिफेंस कॉरिडोर का पहला प्रोजेक्ट लगभग 2,500 करोड़ से 3,000 करोड़ का, जहां मिसाइलें बनेगी, मिसाइल से लगा करके सारे प्रकार के आर्म्स की जो आवश्यकता है वो सारे विकास के साथ साथ यहां पर रोजगार भी मिलेगा। साथ साथ 211 करोड़ के अलग अलग विकास कार्यो का लोकार्पण भूमि पूजन भी यही सम्पन्न हुआ। सब मिला के 4-5 हजार करोड़ के काम यहाँ लगातार प्रारंभ होने की स्थिति में आए हैं।
0: वहीं श्री सिंधिया ने कहा कि ये प्लांट भारत की रक्षा

0: आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करेगा और हजारों युवाओं को रोजगार देगा। इस मौके पर शिवपुरी जिले के लिए करीब 211 करोड़ रुपए की लागत के 38 विकास कार्यों का ई लोकार्पण और ई भूमि पूजन भी किया गया। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल राज्यों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत जी राम जी योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा की। उन्होंने योजना के संचालन के लिए 25,863 करोड़ रुपए की पहली किश्त भी जारी की। उन्होंने बताया कि मनरेगा से इस योजना में ट्रांजिशन पूरी तरह सहज और सुचारू रहा है, अब तक कोई तकनीकी शिकायत नहीं मिली है। श्री चौहान ने कहा,
1: मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे, लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है, 1 साल 2 साल नहीं, पहले दिन ही विकसित भारत जी राम जी योजना एक साथ पूरे देश में लागू हो गई। 100 दिन नहीं, अब 125 दिन रोजगार, 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई, तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गाँव का निर्माण हो जाएगा।
0: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन करते हुए इसमें 2 हिंदू सदस्यों को भी शामिल किया है। अधिकारियों के अनुसार वक्फ अधिनियम संशोधित 2025 के तहत गठित ये देश का पहला राज्य स्तरीय वक्फ बोर्ड है जिसमें हिंदू सदस्य शामिल किए गए हैं। इस संबंध में राजपत्र अधिसूचना जारी कर सनवर पटेल को 10 सदस्यीय बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जबकि मनोज मालपानी और अनिमेश भार्गव को हिंदू सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश नया अधिनियम के तहत वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मेहनत, आधुनिक तकनीक और सामूहिक प्रयास से खेती की तस्वीर कैसे बदल सकती है, इसकी मिसाल खंडवा जिले का जावर गांव बन रहा है। यहां किसान उत्पादक संगठन यानी FPO के माध्यम से उगाया जा रहा खीरा और टमाटर अब दुबई तक निर्यात हो रहा है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं खंडवा से हमारे संवाददाता हीरा लाल लोंगरे।
3: खंडवा जिले के जावर गांव के किसान अश्विन बादल सिंह रावले ने 4 वर्ष पहले मात्र 2 एकड़ में खीरा और टमाटर की खेती शुरू की थी। बेहतर उत्पादन मिलने पर उन्होंने गांव के किसानों को जोड़कर FPO का गठन किया। आज इस संगठन से 160 किसान जुड़े हैं जो करीब 400 एकड़ में टमाटर, खीरा, करेला, लौकी और नींबू जैसी फसलों का उत्पादन कर रहे हैं। इनकी उपज देश के बड़े बाजारों के साथ साथ दुबई तक पहुँच रही है।
4: मैं अश्विन सावले, ग्राम जावर, जिला खंडवा से हूँ। सोलर ड्राई के माध्यम से सब्जियों का मूल्य संवर्धन कर किसानों की आय बढ़ा रहे हैं। किसान संगठित होकर वैज्ञानिक तरीके से खेती करे तो बेहतर आमदनी और अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुँच सकते हो आप।
3: उद्यानिकी विभाग के सहयोग से गुणवत्तापूर्ण उत्पादन के कारण जावर का FPO आज क्षेत्र के किसानों के लिए एक सफल मॉडल बन चुका है। उद्यानिकी विभाग के उप संचालक श्री अजय चौहान ने बताया कि
5: शासन का हमेशा से ये प्रयास रहता है कि किसान की आय में वृद्धि हो, इसी तारतम्य में उद्यानिकी विभाग द्वारा कृषकों को उद्यानिकी की ओर प्रेरित किया जा रहा है। किसान की आय परंपरागत खेती की तुलना में उद्यानिकी फसलों से अधिक प्राप्त होती है।
3: आकाशवाणी समाचार के लिए मैं खंडवा से हीरालाल लोंगरे।
0: प्रदेश पुलिस की राज्यव्यापी सेफ क्लिक 2.0 अभियान के तहत प्रदेश भर में साइबर जागरूकता गतिविधियां जारी हैं। कल इंदौर पुलिस कमिश्नरेट ने 6,000 से अधिक नागरिकों के साथ साइबर जागरूकता मैराथन आयोजित की। भोपाल में RD मेमोरियल मेडिकल कॉलेज में करीब 1500 छात्र छात्राओं को डिजिटल अरेस्ट और फिशिंग जैसे साइबर अपराधों से बचाव के उपाय बताए गए। वहीं खंडवा, राजगढ़, टीकमगढ़ सहित कई जिलों में स्कूलों, पंचायतों और सरकारी कार्यालयों में भी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। भोपाल के शौर्य स्मारक में कल अंतर्राष्ट्रीय अनघ मंच द्वारा आदिवासी क्रांतिवीर स्मृति महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। देश मेरे तुम भूल न जाना, वन वीरों का बलिदान थीम पर आधारित यह कार्यक्रम सुबह 11:30 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगा। अंग्रेजों से आजादी की लड़ाई में हजारों आदिवासी क्रांतिकारियों के बलिदान को इस महोत्सव के जरिए याद किया जाएगा। कार्यक्रम में देश के 50 से ज्यादा वक्ता काव्य गोष्ठी के माध्यम से आदिवासी क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री दुर्गादास उइके ने कल

बैतूल में आयोजित स्कूल बैग विद एजुकेशनल डेस्क वितरण कार्यक्रम को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित किया। मंत्री उइके ने कहा कि डेस्क युक्त स्कूल बैग बच्चों के लिए अत्यंत उपयोगी और नवाचारपूर्ण पहल है, ताकि बच्चे कहीं भी सुविधापूर्वक बैठकर अध्ययन कर सकें। और अब बात मौसम की। प्रदेश में मॉनसून जमकर बरस रहा है। अब तक औसत 6.4 इंच पानी गिर चुका है। मौसम विभाग ने आज सागर, दमोह, बैतूल सहित 9 जिलों में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि रतलाम, उज्जैन सहित कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। झाबुआ जिले को वर्ष 2027 तक पूर्ण साक्षर बनाने के लक्ष्य को लेकर डायट कल्याणपुरा में उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। अमृत 2.0 योजना के तहत सांसद रोडमल नागर ने कल आगरमालवा में पौधरोपण की शुरुआत की। भोपाल शहर के जहांगीराबाद स्थित बापू कॉलोनी से 70 श्रद्धालुओं का एक जत्था पवित्र अमरनाथ गुफा के लिए अमरनाथ यात्रा के लिए रवाना हुआ। नर्मदापुरम जिला प्रशासन ने प्रोजेक्ट दामिनी की शुरुआत की है, जिसके तहत जिले के प्रत्येक गांव के घरों तक आकाशीय बिजली से बचाव का संदेश पहुंचाया जाएगा। खंडवा में मॉनसून अवधि के दौरान प्रभावी आपदा प्रबंधन हेतु आज से 12 जुलाई तक 7 दिवसीय सिविल डिफेंस वॉलंटियर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। डिंडौरी में जनजाति कल्याण केन्द्र महाकौशल बरगांव के केशव सभागार में करियर गाइडेंस कार्यशाला का आयोजन किया गया। ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हराकर रिकॉर्ड पहली बार महिला T20 विश्व कप का खिताब जीता। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर।

0: आकाशवाणी का ये शिवपुरी केंद्र है, एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम हिंदी वार्ता। आज सुनिए हिंदी साहित्य में छायावाद विषय पर डॉक्टर शवाना खान से ये जानकारी।
1: हिंदी साहित्य में छायावाद ये वह युग है जिसने हिंदी कविता को एक नया रूप, नई आत्मा और नई ऊंचाइयां प्रदान की। छायावाद हिंदी काव्य का वह स्वर्ण काल है जिसमें कविता केवल भावना की अभिव्यक्ति नहीं रही बल्कि आत्मा की पुकार बन गई। छायावाद हिंदी साहित्य के इतिहास में एक अत्यंत प्रभावशाली और क्रांतिकारी युग रहा है। इसने न केवल कविता की अभिव्यक्ति शैली में परिवर्तन किया बल्कि विषय वस्तु और दृष्टिकोण को भी नया आयाम दिया। छायावाद ने हिंदी कविता को बाह्य यथार्थ से उठाकर अंतरात्मा के भीतर ले जाकर व्यक्तित्व, आत्मा, प्रकृति और सौंदर्य की ओर मोड़ा। छायावाद शब्द का शाब्दिक अर्थ है छाया का वाद, लेकिन साहित्यिक दृष्टि से इसका आशय है भावनात्मक, रहस्यात्मक, सौंदर्य प्रधान और आत्मनिष्ठ काव्यधारा। यह शब्द मूलतः आलोचक नागरी प्रचारणी सभा के अध्यक्ष डॉक्टर नागेंद्र और आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा प्रचारित हुआ। इसमें छाया का मतलब केवल अंधकार या रहस्य नहीं बल्कि कविता के भीतर की गहराई, अवचेतन की अनुभूति और अंतर मन की झलक से भी है। छायावाद हिंदी साहित्य में लगभग 1918 से 1936 तक सक्रिय एक महत्वपूर्ण काव्य आंदोलन रहा। इसे हिंदी साहित्य के इतिहास में काव्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। यह युग भावुकता, सौंदर्य, आत्म अनुभूति, रहस्य और

0: कल्पना से ओतप्रोत काव्य का युग था। छायावाद ने कविता को परंपरागत विषयों से हटाकर व्यक्ति की आंतरिक भावनाओं, मानवीय संवेदनाओं, प्रकृति और आध्यात्मिकता की ओर मोड़ा। यह युग मुख्यतः रोमानी विचारधारा, भारतीय दर्शन और पश्चिमी रोमांटिक आंदोलन से प्रभावित रहा। छायावादी कवियों ने भाषा में संगीतात्मकता, प्रतीकों और भावों की गहराइयों को विशेष स्थान दिया। छायावाद ने साहित्यिक दृष्टि से हिंदी कविता को भावनात्मक ऊंचाई दी, दार्शनिक दृष्टि से व्यक्ति की चेतना और अस्तित्व पर ध्यान केंद्रित किया, सांस्कृतिक दृष्टि से भारतीयता और आत्मगौरव को उभारा और भाषिक दृष्टि से कविता की भाषा को कोमल, गेय और भावपूर्ण बनाया। छायावाद के चार प्रमुख स्तंभ रहे, जिन्हें हिंदी साहित्य में छायावाद के चार स्तंभ कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराशा सी शिथिल सांस भरकर बैठी थी वह मौन निराशा, आंसू से बहते थे सपने, स्मृति में थी कुछ मधुमास सी। जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। अरुण ये मधुमेह देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। जयशंकर प्रसाद की काव्य रचनाओं में भावनाओं की गहराई, इतिहास बोध और दार्शनिक चिंतन स्पष्ट दिखाई देता है। कामायनी उनकी सबसे प्रसिद्ध काव्य कृति है, जिसमें मानव जीवन की यात्रा को श्रद्धा, भावना और ज्ञान के माध्यम से दर्शाया गया है। उनकी कविता में नारी को श्रद्धा के रूप में देखा गया है और प्रकृति के प्रति गहरी संवेदनशीलता भी स्पष्ट है। प्रसाद जी ने हिंदी नाटक और कहानी को भी नई दिशा दी। उनकी रचनाओं में गहराई, गंभीरता और भावनात्मक प्रभाव मिलता है। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकल कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। सुमित्रा नंदन पंत की कविता में प्रकृति एक सजीव सत्ता के रूप में उभरती है। प्रकृति के द्रगों का विषाद, नयन में अश्रु, अधर में विह्वल वाद, यही है मानवता की बात, यही है कवि का मौलिक नाद। पंत जी को प्रकृति का कवि कहा जाता है। उनकी भाषा संस्कृत निष्ठ परंतु अत्यंत मधुर और लयात्मक होती है। पल्लव, गुंजन, ग्राम्य और युगांत जैसी काव्य कृतियों में उन्होंने सौंदर्य, प्रेम और मानवता को अद्भुत भावों में बांधा है। उनकी कविता में आदर्शवाद, सौंदर्य बोध और कल्पनाशीलता के साथ साथ समाजवादी चेतना भी दिखाई देती है। यह दीप अकेला सघन अंधकारों में लहरों का मौन सहारा है, ज्वालाओं में जो नहीं जला वह अश्रु हमारा है। महादेवी वर्मा की कविताओं में करुणा और आत्मव्यथा की छाया है। मैं नीर भरी दुख की बदली, स्पंदन में चिर निस्पंदन बसा, क्रंदन में आहत विश्व हसा। महादेवी वर्मा छायावादी कविता की मीरा कही जाती हैं। उनकी रचनाएं करुणा, पीड़ा और आत्म अनुभूति से परिपूर्ण होती हैं। उन्होंने नारी संवेदना को स्वर दिया और उसे साहित्य के मंच पर प्रतिष्ठा दिलाई। यामा, निहार, रश्मि, सांदगीत उनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं। उनकी कविता में आत्मा की पुकार है, जो एक ऐसी दुनिया को खोजती है जहां प्रेम, सौंदर्य और शांति का वास हो। महादेवी जी ने गद्य में भी महत्वपूर्ण कार्य किया है। श्रृंखला की कड़ियां जैसे निबंधों में उन्होंने स्त्री विमर्श और सामाजिक यथार्थ को गहनता से प्रस्तुत किया है। वरदे वीणा वादिनी वरदे, नवगति नवलय ताल छंद को नव स्वर दे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के सबसे स्वतंत्र और विद्रोही कवि माने जाते हैं। तोड़ दो वे स्वर्ण जाल, यह मेरे बंधन का कारण है। निराला ने छायावाद को केवल भावुकता तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसमें समाज की पीड़ा, आर्थिक विषमता और आत्मसंघर्ष को भी स्थान दिया। वह तोड़ती पत्थर, देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर, कोई न छायादार पेड़, वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार, शब्द न कोई, नयन में ज्योत, चुपचाप थी वह तोड़ती पत्थर। निराला की कविता में नव जीवन की आकांक्षा है, विद्रोह की पुकार है और सौंदर्य का एक नया दृष्टिकोण है। परिमल, अनामिका, तुलसीदास और कुकुरमुत्ता जैसी काव्य कृतियां उनके सशक्त कवि रूप को दर्शाती हैं। निराला की भाषा शुद्ध लेकिन बोलचाल की ध्वनि के लिए होती है, जिसमें एक लयात्मक वेग और सजीवता दिखाई देती है। इन महान कवियों की कविताओं की पंक्तियां न केवल भाव और सौंदर्य से भरपूर हैं, बल्कि भारतीय संस्कृति, संवेदना और चेतना का आईना भी है। छायावाद ने हिंदी काव्य को अंतरात्मा की अभिव्यक्ति बनाया और इन कवियों की कलम ने इसे अमर बना दिया। छायावाद ने हिंदी कविता को भावनात्मक, दार्शनिक और कलात्मक ऊंचाइयों तक पहुंचाया। इसके चारों स्तंभों, प्रसाद, पंत, महादेवी और निराला ने न केवल हिंदी कविता की दशा और दिशा बदली, बल्कि एक ऐसे साहित्यिक युग की रचना की जिसकी गूंज आज भी हिंदी साहित्य में सुनाई देती है। छायावाद के प्रमुख लक्षण व्यक्तिवाद, रहस्यवाद, आध्यात्म, भावुकता, प्रकृति का मानवीकरण और करुणा है। छायावाद की भाषा में लय, छंद, प्रतीक, रूपक और उपमा का सुंदर प्रयोग हुआ। इन कवियों की भाषा अधिकतर संस्कृत निष्ठ होती थी, जो काव्य को उच्च स्तर प्रदान करती है। छायावाद ने हिंदी साहित्य को एक नया मोड़ दिया। छायावाद की कविताएं आज भी पढ़ने पर पाठक के भीतर भावों की तरंग पैदा करती है। मुझे तोड़ लेना वन माली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जाएं वीर अनेक। एक और रचना देखिए, सूखी हुई नदी में जाकर बहा देना रसधार, शुष्क भूमि की छाती में भर देना मधु संचार। मैं बनू ना मालिन के गजरे, न मंदिर का श्रृंगार, वीरों के पद की शोभा बन जाऊं उसी के द्वार। छायावादी कवि केवल कवि नहीं, संवेदना के पुरोधा थे। इन्होंने आत्मा के स्वर को शब्द दिया और वह स्वर हिंदी कविता की गूंज बनकर आज तक जीवित है। आज के तकनीकी और यथार्थवादी युग में भी जब हम छायावादी कविताएं पढ़ते हैं, तो वे हमें आत्मा की गहराइयों में उतरने और सौंदर्य तथा संवेदना की शरण में जाने के लिए प्रेरित करती है। धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे हिंदी वार्ता। आज का विषय था हिंदी साहित्य में छायावाद और वार्ताकार थी डॉक्टर शवाना खान। आकाशवाणी का ये शिवपुरी केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत।
2: मैंने पूछा बागों में बाहर है?
3: है।
2: गर्मियों के निखार है?
3: हाँ है।
2: तो तुमको मुझसे प्यार है?
3: नहीं।

0: सोमवार है, आज सोमवार है, तुमको मुझसे प्यार है।
1: कार्यक्रम का पहला ये गीत आपने सुना फिल्म आराधना से, आवाजें थी मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर और साथियों की। गीत आनंद बख्शी का था, संगीत एसडी वर्मन का। कार्यक्रम फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत सुनिएगा इस छोटे से अंतराल के पश्चात।
2: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
3: आरबीआई कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: कार्यक्रम के इस अंतराल के पश्चात आइए सुनते हैं आपका कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म अपनापन से। आवाजें हैं सुलक्षणा पंडित और किशोर कुमार की। गीत आनंद बख्शी का है, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

कार्यक्रम फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से। अभी आप सुन रहे थे फिल्म अपनापन से लिया गया ये गीत। आवाज़ें थीं सुलक्षणा पंडित और किशोर कुमार की। गीत आनंद बख्शी का था, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। इसी के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत अब यहीं संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये शिवपुरी केंद्र है। कुछ ही पलों में सुनिएगा सूचना परक दैनिक कार्यक्रम नमस्कार

नमस्कार शिवप्री। नमस्कार शिवप्री कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है और आज के इस अंक के साथ मैं हाजिर हूँ आपकी रेडियो सखी ज्योति तोमर। श्रोताओं, हमारा प्यार भरा नमस्कार स्वीकार करें। श्रोताओं, इस कार्यक्रम की शुरुआत हम करते हैं एक सुविचार के साथ। आज का सुविचार है, बदला लेने की नहीं बदलाव लाने की सोच रखिए। समझदार व्यक्ति वह नहीं जो ईंट का जवाब पत्थर से दे, समझदार व्यक्ति वो है जो फेंकी हुई ईंट से भी अपना आशियाना बना ले। जी हाँ, आज का जमाना बदला लेने का नहीं है, क्योंकि बदला एक रिवेंज वो चीज है जो कभी भी मिटती नहीं है। एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी, दूसरी के साथ तीसरी पीढ़ी तक ये चीज चलती रहती है और नुकसान अपना ही होता है और अपनों का भी। इसलिए किसी से भी बदला लेने की बजाय अपने आप में बदलाव लाने की सोच रखिए, क्योंकि समझदार व्यक्ति वह नहीं होते जो ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं, बल्कि समझदार व्यक्ति वो होते हैं जो उस ईंट से भी अपना आशियाना बनाए देते हैं। जी हाँ, सामने वाले को मजबूर कर दीजिए कि हम इतने सुखी क्यों हैं, हम इतने खुश क्यों हैं।

0: हम उससे बदला क्यों नहीं ले रहे? इसको इस बात की सोच जब वो सामने वाला सोचेगा तो वो आधा वैसे ही हो जाएगा। इसलिए उसको सोचने दीजिए कि आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे, बस आप अपनी मस्ती में लगी रहिए और आगे बढ़ते रहिए। क्योंकि जब हम आगे बढ़ेंगे, हमारा परिवार आगे बढ़ेगा, हमारा समाज आगे बढ़ेगा और हमारा देश आगे बढ़ेगा। बस इस सोच के साथ आगे बढ़ते जाइए और इस प्रवृत्ति को अपने आप से मिटा दीजिए कि हमें दूसरों का बुरा करना है या दूसरों से बदला लेना है या उसकी ईंट का जवाब हमें पत्थर से देना है। इस सोच को हमें स्वयं बदलना होगा। तो ये तो थी एक बात। श्रोताओं, आज है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती। हर साल 6 जुलाई को ये जयंती मनाई जाती है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म 1901 में कोलकाता में हुआ था। वे भारतीय जनसंघ के संस्थापक और एक देश में दो विधान, दो प्रधान और दो निशान के प्रबल विरोधी थे। उनका जन्म 6 जुलाई 1901 में कलकत्ता में हुआ। वे केवल 33 वर्ष की आयु में कलकत्ता विश्वविद्यालय के सबसे युवा कुलपति बने। उन्होंने 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना की, जो आज की भारतीय जनता पार्टी का पूर्ववर्ती रूप है। जम्मू कश्मीर को भारत का पूर्ण और अभिन्न अंग बनाने के लिए उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। बिना परमिट के कश्मीर में प्रवेश करने पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 23 जून 1953 को रहस्यमयी परिस्थितियों में उनका निधन हुआ। तो आज हम उनकी जयंती, पूरा विश्व उनका जयंती मना रहा है। ऐसी महान विभूति को हमारा कोटि कोटि नमन। श्रोताओं, कार्यक्रम नमस्कार शिवप्री में हम आपको जानकारियों के साथ देते हैं समाचार पत्रों से जुड़ी हुई कुछ खास खबरें। तो खास खबरें हम आपको अभी जरूर सुनाएंगे। सुनते हैं उससे पहले ये संदेश।
1: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: इन संदेशों के बाद आइए ले चलते हैं आपको समाचार पत्रों से जुड़ी हुई कुछ खास खबरों की ओर। श्रोताओं, शिवपुरी के पोलो ग्राउंड में दक्षिण एशिया के निजी क्षेत्र के सबसे बड़े मिसाइल इकोसिस्टम अडानी डिफेंस एंड एयरो स्पेस परियोजना की आधारशिला रविवार को रखी गई, यानी कि कल रखी गई। 2500 करोड़ रुपए की लागत से विकसित होने वाली इस परियोजना का भूमि पूजन सीएम डॉक्टर मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और अडानी समूह के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में हुआ। अडानी समूह के डिफेंस फैक्ट्री के भूमि पूजन के अवसर पर मंच से अपने संबोधन के दौरान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से शहर में सर्कुलर रोड मेडिकल कॉलेज में कार्डियोलॉजी विंग, शिवपुरी में 108 फीट ऊंची शिव प्रतिमा और खोण में सरकारी कॉलेज खोलने की मांग की। कार्यक्रम में ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर उपस्थित रहे। सिंधिया की इस मांग पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने संबोधन के दौरान चारों मांगों को पूरा करते हुए घोषणा की कि शिवपुरी शहर में बढ़ते यातायात से हो रही कठिनाई के समाधान के लिए यहां करीब 120 करोड़ रुपए लागत से 14 किलोमीटर की फोर लेन बनाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिवपुरी शहर में उचित स्थान पर 108 फीट की शिव प्रतिमा की स्थापना के साथ यहां एक सुंदर टूरिज्म सेंटर भी बनाया जाएगा। इस कार्यक्रम में ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर भी उपस्थित रहे। श्रोताओं, वर्षा ऋतु में आकाशीय बिजली की बढ़ती घटनाओं के देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को सतर्क रहने के लिए अपील की है। विभाग ने सलाह दी है कि वज्रपात के दौरान खुले मैदान, ऊंचे पेड़, बिजली के खंभों, धातु की वस्तुओं और निर्माण स्थलों से दूर रहें। प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति विशेष परियोजना वित्त पोषण योजना के तहत आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। योजना में अनुसूचित जाति वर्ग के बेरोजगार युवक युवतियां, कृषि आधारित उद्योग, फूड प्रोसेसिंग, मिल्क प्रोसेसिंग, कोल्ड स्टोरेज, कस्टम हायरिंग सेंटर, हस्तशिल्प एवं ग्रामोद्योग जैसी परियोजनाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं। श्रोताओं, साइबर ठगी होने पर तुरंत 1930 पर कॉल करें। साइबर सुरक्षा के लिए हेल्पलाइन जारी कर दी गई है। ऑनलाइन धोखाधड़ी, डेटा चोरी, साइबर बुलिंग, फिशिंग अटैक, हैकिंग एवं फर्जी सूचनाओं के प्रसार जैसी घटनाओं की सूचना इस पर दी जा सकती है। राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल कर शिकायत की जा सकती है। खाद की कालाबाजारी रोकने पर मिलेगा इनाम। मध्य प्रदेश शासन ने किसानों के हित में सूचनादाता प्रोत्साहन योजना चालू की है। इसके तहत खाद की कालाबाजारी, अवैध भंडारण, मिलावट या यूरिया के अवैध औद्योगिक उपयोग की गुप्त सूचना देने वाले को 1,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। शिकायत सीएम किसान हेल्पलाइन नंबर 155253 पर की जा सकती है। यह योजना 30 सितंबर तक प्रभावी रहेगी। एक बार फिर से हम अपना किसान सीएम किसान हेल्पलाइन नंबर नोट कर लीजिए, 155253 पर आप शिकायत कर सकते हैं खाद की कालाबाजारी रोकने के लिए, और इसके लिए आपको इनाम दिया जाएगा 1,000 रुपये। कुछ और खबरें हम आपको देंगे इस छोटे से अंतराल।

खुशखबरी। जी हाँ, आकाशवाणी शिवपुरी हुई अब हाईटेक। जी हाँ, आप अब हमें सुन सकते हैं अपने एंड्रॉइड और आईफोन दोनों प्लेटफॉर्म पर एक साथ कहीं भी। प्रसारण के समय जब जी चाहे तब सुनिएगा। प्ले स्टोर से न्यूज ऑन AIR ऐप को डाउनलोड करें और रेडियो ऑप्शन में जाएं। मध्य प्रदेश में आकाशवाणी शिवपुरी यानी कि AIR शिवपुरी को सिलेक्ट करें और सुने अपने एंड्रॉइड पर पूरी दुनिया में जब चाहें उस वक्त।

श्रोताओं, प्रोजेक्ट चीता की सफलता से उत्साहित दक्षिण अफ्रीका अब भारत को और चीते देने को राजी हो गया है। इसके तहत जल्द ही 6 से 8 और चीते लाए जा सकते हैं। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की दक्षिण अफ्रीका के शीर्ष नेतृत्व के साथ हुई चर्चा में बनी सहमति के बाद चीतों की नई खेप को कूनों में रखने की तैयारी भी शुरू कर दी गई है। वैसे भी कूनों में बाहर से आने वाले चीतों को रखने के लिए जो ढांचा तैयार किया गया है, उसमें भविष्य में भी बाहर से आने वाले चीतों का लॉन्चिंग ग्राउंड कूनों ही रहेगा। फिलहाल मौजूदा समय में मध्य प्रदेश के कूनों और गांधी सागर अभ्यारण्यों में 53 चीते हैं। इसी के साथ दीजिए हमें अनुमति कार्यक्रम नमस्कार शिवप्री से कल फिर मिलेंगे रोजाना की तरह प्रातः 7:45 पर आपके पसंदीदा सूचना परक दैनिक कार्यक्रम नमस्कार शिवप्री को लेकर। तब तक के लिए

0: कि एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। भारत जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के नवे सत्र की अध्यक्षता करेगा। भारत ब्रिक्स की अपनी अध्यक्षता में केरलम के कोच्चि में आज से शुरू हो रही महिला कार्य समूह की बैठक की मेजबानी करेगा। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज बैठक होगी। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर समग्र राष्ट्र की भावभीनी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें साहस, राष्ट्रवाद और निस्वार्थ सेवा का शाश्वत उदाहरण बताया। और फीफा विश्व कप में 5 बार के चैंपियन ब्राजील की नॉर्वे से 2-1 से हार के बाद नेमार जूनियर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। पहले चरण में श्री मोदी आज इंडोनेशिया पहुंचेंगे। ये प्रधानमंत्री की 4थी इंडोनेशिया यात्रा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मई 2018 में दोनों देशों के संबंधों के व्यापक रणनीतिक भागीदारी तक पहुंचने के बाद से शीर्ष नेतृत्व के बीच ये पहली द्विपक्षीय वार्ता होगी।
3: प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियंतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है, जिसमें रक्षा सहयोग, व्यापार, निवेश और ऊर्जा सुरक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग पर खास ध्यान दिया जाएगा। जकार्ता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन होगा, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। बाली, मेदान, सेमारंग, सुराबाया और जकार्ता के समुदाय सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ भव्य स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। हजारों भारतीय नागरिकों और भारतीय मूल के लोगों के जुटने की उम्मीद है, जो इस यात्रा को गर्व का विषय और अपनी मातृभूमि के साथ संबंध मजबूत करने का अवसर मान रहे हैं। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक प्रम्बनन मंदिर के दर्शन के लिए योग्यकार्ता जाएंगे। भारत इस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के जीर्णोद्धार के प्रयासों में सहयोग कर रहा है, जो दोनों देशों के बीच गहरे

0: सांस्कृतिक संबंधों को रेखांकित करता है। जकार्ता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
1: भारत स्विट्जरलैंड के जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के नवे सत्र की अध्यक्षता करेगा। संयुक्त

0: संबंधित पक्ष उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति से जुड़े उभरते मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। उपभोक्ता मामले विभाग की सचिव निधि खरे इस सत्र की अध्यक्षता करेंगी। वह 3 दिन तक चलने वाले इस सत्र में विचार विमर्श का संचालन करेंगी। सत्र के दौरान उपभोक्ता जानकारी और शिक्षा, टिकाऊ उपभोग, वैश्विक बाजारों में उपभोक्ता संरक्षण कानून के प्रभावी क्रियान्वयन और सीमा पार उपभोक्ता संरक्षण जैसे विषयों पर चर्चा होगी। भारत वाई द प्रिंसिपल मैटर विषय पर आयोजित उच्च स्तरीय फायरसाइड चर्चा में भी भाग लेगा। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
1: भारत अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत ब्रिक्स महिला कार्य समूह की 2 दिन की बैठक की मेजबानी करेगा। केरलम के कोच्चि में आज से शुरू हो रही बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे।
2: विभिन्न क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण और महिला नेत विकास से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर विचार होगा। साझा प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी बातचीत होगी। इस बैठक से सदस्य देशों को महिला नेत विकास के लिए सहमति बनाने का अवसर मिलेगा। ब्रिक्स महिला कार्य समूह ने 4 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया है। इनमें शासन और नेतृत्व में महिलाओं की भूमिका, डिजिटल और वित्तीय गतिविधियों में उनकी समावेशिता, महिला उद्यमिता और कौशल विकास तथा जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा और पोषण में महिलाओं की भूमिका शामिल है। ये बैठक 8 और 9 जुलाई को होने वाले ब्रिक्स महिला मंत्री स्तरीय सम्मेलन की आधार भूमि तय करेगी। समाचार कक्ष से मैं आशा निवेदी।
1: भारत असम के गुवाहाटी में 2 दिन की ब्रिक्स मादक पदार्थ रोधी एजेंसी प्रमुखों की बैठक की मेजबानी करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि आज से शुरू हो रही बैठक का उद्देश्य संस्थागत संपर्क मजबूत करना और मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के बीच सहयोग बढ़ाना है।
3: बैठक में सिंथेटिक ड्रग्स और प्रिकर्सर रसायनों की अवैध आपूर्ति पर रोक, खुफिया सूचनाओं के आदान प्रदान तथा परिचालन समन्वय को मजबूत बनाने, क्षमता निर्माण और संस्थागत सहयोग बढ़ाने जैसे विषयों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि ने साइकोएक्टिव पदार्थों, डार्कनेट के माध्यम से होने वाली तस्करी, क्रिप्टोकरेंसी आधारित अवैध वित्तीय लेनदेन तथा प्रिकर्सर रसायनों के दुरुपयोग जैसी उभरती चुनौतियों पर भी विचार विमर्श करेंगे। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज बैठक होगी। हमारे संवाददाता ने बताया कि मंदिर को मिले दान की छानबीन कर रहे विशेष जांच दल की रिपोर्ट सहित अनेक प्रशासनिक और वित्तीय मुद्दों पर बैठक में चर्चा होगी।
4: बैठक के एजेंडे में महासचिव चंपत राय और न्यासी डॉक्टर अनिल मिश्रा के त्याग पत्रों पर विचार विमर्श करना भी शामिल है। सदस्यों को न्यास की दान पेटियों के माध्यम से मिले दान की गणना के संबंध में सोसाइटी की अंतरिम रिपोर्ट के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। बैठक में राम मंदिर के भविष्य के प्रबंधन से संबंधित व्यवस्थाओं पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। एजेंडा का एक महत्वपूर्ण बिंदु वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आय व्यय वितरण, बैलेंस शीट और अन्य वित्तीय दस्तावेजों की प्रस्तुति और शामिल है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: समग्र राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर संस्कृति मंत्रालय पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग से कोलकाता में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि यह कार्यक्रम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के 2 वर्षीय आधिकारिक समारोह के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है।
5: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दोपहर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती समारोह में शामिल होने के लिए कोलकाता पहुंचेंगे। वे न्यू टाउन स्थित इको पार्क जाएंगे, जहां वे श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125 फीट ऊंची प्रतिमा के शिलान्यास समारोह में भाग लेंगे। दोपहर बाद भवानीपुर स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पैतृक निवास पर आयोजित कार्यक्रम में अमित शाह उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करके श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें साहस, राष्ट्रवाद और निस्वार्थ सेवा का शाश्वत प्रतीक बताया है। श्री मोदी ने एक आलेख में कहा है कि डॉक्टर मुखर्जी का जीवन अखंड भारत के लिए उनके

0: अटल प्रतिबद्धता का प्रमाण है। उन्होंने विभाजन के दौरान पश्चिम बंगाल को और इसके बाद जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाए रखना सुनिश्चित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2019 में अनुच्छेद 370 और 35 से निरस्त किया जाना उनके बलिदान के प्रति सर्वाधिक समुचित श्रद्धांजलि थी। मुंबई और तटीय महाराष्ट्र में तेज हवा के साथ लगातार बारिश हो रही है। रायगढ़ जिले में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, जहां प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि रायगढ़ और रत्नागिरी जिलों में मूसलाधार बारिश ने जबरदस्त तबाही मचाई है।
1: मुंबई, ठाणे, पालघर, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट और रायगढ़ जिले के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। एहतियात के तौर पर सभी तटीय जिलों और पुणे में सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। मुंबई के मानखुर्द इलाके में 3 मंजिला कच्ची चौल में घरों के ढहने से 6 लोगों की मौत हो गई। रविवार को ठाणे और पालघर जिलों में तेज बारिश का कहर जारी रहा, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई और कई इमारतें ढह गईं। सिंधुदुर्ग में कई जगहों पर इमारतें ढहने से नुकसान हुआ है। मुंबई से संगीता गोडबोले की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: मौसम विभाग ने आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। ब्राजील के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी नेमार जूनियर ने फीफा विश्व कप के राउंड 16 में कल रात नॉर्वे से 2-1 से हार के बाद अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है। नेमार जूनियर हमेशा ब्राजील के सबसे प्रमुख स्कोरर रहे। कल के मैच में ब्राजील के लिए एकमात्र गोल करने के बावजूद नेमार अपनी टीम को हार से बचा नहीं पाए। महाभारत के कालजयी प्रसंगों को पंडवानी में पेश करने वाली सुविख्यात लोक गायिका तीजन बाई अब हमारे बीच नहीं रही। उनके निधन से लोक संस्कृति की अपूर्णीय क्षति हुई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
2: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों की सुर्खियों में आज राम मंदिर परिसर में होने वाली न्यास की बैठक और देश के विभिन्न हिस्सों में मॉनसून की चाल से जुड़े समाचार छाए हुए हैं। साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के अन्य मुद्दों को भी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। राजस्थान पत्रिका ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर चित्र सहित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, देश की एकता और अखंडता को समर्पित जीवन। पत्र ने श्री मोदी के इन शब्दों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। डॉक्टर मुखर्जी के जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करना था। देश के विभाजन के समय उन्होंने पश्चिम बंगाल को भारत का अभिन्न अंग बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कुछ वर्षों बाद इसी उद्देश्य से उन्होंने जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर भी संघर्ष किया। अन्य राष्ट्रीय समाचार पत्रों ने भी इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश संपादकीय पन्नों पर छापा है। वहीं जनसत्ता ने ओडिशा में विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान 20 लाख से अधिक लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए जाने के समाचार को पहले पन्ने पर प्रमुखता से छापा है। पत्र ने प्रख्यात पंडवानी गायिका तीजन बाई के निधन का समाचार सचित्र प्रकाशित करते हुए उनकी उपलब्धियों और योगदान पर भी प्रकाश डाला है। दैनिक भास्कर ने गैस आपूर्ति पर लगे प्रतिबंधों को हटाए जाने का समाचार हाशिए में सबसे ऊपर प्रकाशित किया है। पत्र ने देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत के लिए हो रही तैयारियों की खबर को भी वरीयता दी है। वहीं इंस्टाग्राम पर बच्चों के यौन शोषण से जुड़े कंटेंट के मामले में केंद्र सरकार की ओर से मेटा को जारी नोटिस का समाचार नवभारत टाइम्स, दैनिक भास्कर और देशबंधु सहित कई अखबारों ने पहले पृष्ठ पर दिया है।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी भारतीय जनसंघ के संस्थापक और राष्ट्र की एकता, अखंडता और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रबल समर्थक थे। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। भारत जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के नवे सत्र की अध्यक्षता करेगा।

आपकी फरमाइश कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है और गीतों के सफर के साथ मैं आपके साथ हूँ ज्योति। श्रोताओं, कार्यक्रम आपकी फरमाइश में हम आपको सुनवाते हैं आपके ही पसंद किए गए कुछ चुनिंदा गीत। आइए, बारिश का मौसम है तो क्यों ना गीतों की शुरुआत बारिश से ही की जाए। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये पहला गीत फिल्म अलग अलग से, आवाज है किशोर कुमार की, गीत आनंद बख्शी का और संगीत राहुल देव वर्मन का।

कार्यक्रम का ये पहला गीत आपने सुना फिल्म अलग अलग से। आवाज थी किशोर कुमार की, गीत आनंद बख्शी का था, संगीत राहुल देव वर्मन का। इस गीत की फरमाइश की थी सुंदर खेड़ राजमाता नगर बुलडाड़ा महाराष्ट्र से नरेंद्र नरवाड़े, ज्योति नरवाड़े, आकांक्षा नरवाड़े और आकाश कुमार की। आशा है आपने अपना गीत सुना होगा और आपको पसंद भी आया होगा। कार्यक्रम आपकी फरमाइश आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से। कार्यक्रम के अगले गीत की फरमाइश आई है फिल्म आया सावन झूमके से। आइए सुनते हैं इस फिल्म का ये गीत और फिर हम आपको बताएंगे ये फरमाइश किसकी है।

इस फिल्म का ही शीर्षक गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और साथियों की आवाज में। गीत आनंद बख्शी का था, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। इस गीत की फरमाइश की थी छत्रपति संभाजी नगर से राजेश सावले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश ने। साथ ही इस गीत को सुनना चाहता विवेकानंदपुरम शिवपुरी से राजेंद्र सिंह तोमर, शिवांगी तोमर, अभिजीत सिंह तोमर और शैलेंद्र सिंह परिहार ने। श्रोताओं, सावन तो झूम के आ चुका है और आपको इस सावन का भरपूर आनंद उठाना है, लेकिन आनंद उठाने के साथ साथ कुछ एहतियात भी बरतने पड़ेंगे। अपने बच्चों को गंदे पानी में खेलने से रोकना है, बाहर निकलने से पहले छाता लेके जाना है, रेनकोट लेके निकलना है। छोटी छोटी इन बातों का हमें विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि बारिश का ये मौसम सुहाना तो होता है लेकिन अपने साथ सैकड़ों बीमारियां भी लेकर आता है। इसलिए अपना ख्याल रखिए और अपने बच्चों का, अपने बड़ों का विशेष ध्यान रखिएगा। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, फिल्म सौतन की बेटी से लिया गया।

फेब और मार्च तलक तूने मुड़कर भी न देखा। जैन फेब और मार्च तलक तूने मुड़कर भी न देखा। अप्रैल से मई तलक मैंने तेरा रास्ता देखा।

हुई अगस्त में रुसवाई, सितंबर अक्टूबर बीता तुझे दया न आई, अरे तुझे दया न आई। मेरी हालत देख के मुझ पे मेरी हालत देख के मुझ पे हंसने लगा नवंबर।

छह महीने तक तो दिल ने सब्र कर लिया जाना, 12 महीने तक तो दिल ने सब्र कर लिया जाना, हान करोगी अब तुम तो मर जाएगा दीवाना, बिगड़ जाओ अब तो पत्थर की देवी, तू मान मेरा कहना, आज बहुत मुश्किल है अकेला लौट के घर को जाना, लौट के घर को जाना, मेरे दिल का कमरा खाली है, ए मिस कम, मेरे दिल का कमरा खाली है, तू आजा इसके अंदर।

0: लग जाने दो नंबर,
1: जद तेरा नहीं लगेगा नंबर।
0: मेरे दिल में कर गई पंचर।

0: कार्यक्रम का ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म सौतन की बेटी से लिया गया। आवाजें थी किशोर कुमार और मेघना श्रीवास्तव की, गीत सावन कुमार का, संगीत वेदपाल का। इस गीत की फरमाइश हमें की थी छत्तीसगढ़ भाटापारा दंतरेकी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और छावेंद्र कुमार वर्मा ने। कार्यक्रम आपकी फरमाइश आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से। इस कार्यक्रम के अंतर्गत जिन श्रोताओं ने हमें फरमाइश लिखकर अभी तक नहीं भेजी है, हमारा पता नोट करें। कार्यक्रम आपकी फरमाइश द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी केंद्र शिवपुरी, पिन कोड 473551 पर। श्रोताओं, इस पते पर आप अपने पसंद का कोई भी गीत हमें लिखकर भेज सकते हैं और हम आपको रोजाना आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश के अंतर्गत आपके चुनिंदा गीत। कार्यक्रम का अगला गीत सुनिएगा इस छोटे से अंतराल के पश्चात।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001424 पर।
2: 8700001424।

सावन को आने दो, इस फिल्म का ये शीर्षक गीत आप सुन रहे थे। आवाज़ें थीं जसपाल सिंह और कल्याणी मित्रा और साथियों की। गीत गौहर कानपुरी का था और संगीत राज कमल का। इस गीत की फरमाइश की थी गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदीप मीका, बलविंदर मिर्क विर्क, जयतेग विर्क और मीका विर्क ने। साथ ही इस गीत को सुनना चाहा था रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा ने। कार्यक्रम आपकी फरमाइश हम आपके लिए लेकर आते हैं प्रातः 8:30 पर, और इस कार्यक्रम का पुनः आप सुन सकते हैं प्रातः 9:30 तक। तो बने रहिए हमारे साथ, 9:30 पर हम आपसे पुनः मिलेंगे आपके पसंदीदा फिल्मी गीतों को लेकर। जिन श्रोताओं ने हमें अभी तक फरमाइश लिखकर नहीं भेजी है, हमारा पता पुनः नोट करें, कार्यक्रम आपकी फरमाइश आकाशवाणी केंद्र शिवपुरी द्वारा केंद्र निदेशक मध्य प्रदेश पिन कोड 473551 पर। तो इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप अपने फरमाइशी गीतों को लिखकर हमें ज़रूर भेजिएगा। तब तक के लिए हमें दीजिए अब इस कार्यक्रम से अनुमति। पुनः मिलते हैं आपसे प्रातः 9:30 पर।

आकाशवाणी का यशुभुपुरी केंद्र है एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 9 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रंग। आज हम आपको सुनवा रहे हैं सुधीर बाबू पांडे और अनंत सिंह रावत के गाए हुए चुनिंदा लोकगीत। कार्यक्रम का आरंभ करते हैं सुधीर बाबू पांडे के गाए हुए इन लोकगीतों के।

कार्यक्रम लोकरंग आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से। आज हम आपको सुनवा रहे हैं सुधीर बाबू पांडे के गाए हुए ये लोकगीत। अभी आप सुन रहे थे गणेश वंदना। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला लोकगीत।

कार्यक्रम लोकरंग आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से। अभी आप सुन रहे हैं अनंत सिंह रावत के गाए हुए कुछ चुनिंदा लोकगीत। आइए सुनते हैं उन्हीं की आवाज का ये और एक और लोकगीत।

कार्यक्रम लोक रंग आप सुन रहे थे आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से। आज हमने आपको सुनवाए सुधीर बाबू पांडे और अनंत सिंह रावत के गाए हुए कुछ चुनिंदा लोकगीत। आकाशवाणी का ये शिवपुरी केंद्र है एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश कार्यक्रम लेकर हम पुनः उपस्थित हैं आपके समक्ष आपके चुनिंदा गीतों के साथ। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं फिल्म आवारा के इस गीत के साथ।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म आवारा का ये गीत मुकेश की आवाज़ में। गीत शैलेंद्र का था, संगीत शंकर जय किशन का। इस गीत की फरमाइश हमें की थी एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर से कुमारी वंदना मराठा, कुमारी देविका चौधरी, गणेश दादा परम मराठा, कार्तिक भाऊ मराठा, परी संजना मराठा, मालती चौधरी, स्वाति प्रयाग चौधरी और ललिता नारायण खर्चे ने। कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए फिल्म आवारगी से।

0: कार्यक्रम का ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म आवारगी से, आवाज थी गुलाम अली की, गीत आनंद बख्शी का, संगीत अनु मलिक का। इस गीत की फरमाइश हमें की थी चिरमरी कुरासिया कालरी जिला कोरिया छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह, अनुभव सिंह, ऋषभ सिंह, राम सहोदर और उनके साथियों ने। साथ ही इस गीत को सुनना चाहा था लाल माटी शिवपुरी से अर्चना जादौन, रचना जादौन, शिवा, श्वेता, सलोनी, सौम्या, रुद्र और समस्त जादौन परिवार ने। कार्यक्रम आपकी फरमाइश आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से।
1: So, your place?

0: ओ माइन, उसके पहले ये बताओ तुम्हारे पास कॉन्डम है?
1: कॉन्डम? लेकिन हम तो
0: क्या हुआ, ओरिएंटेशन चाहे जो भी हो, असुरक्षित यौन संबंध से एचआईवी एड्स और बाकी यौन संक्रमणों का खतरा हर स्थिति में बराबर ही रहता है, खासकर जब एक से ज्यादा व्यक्तियों के साथ यौन संबंध कर रहे हो।
1: अरे तुम जानते हो मैं वैसा नहीं हूँ, लेकिन हाँ सुरक्षा इम्पोर्टेंट है, ये बात मैं समझ गया हूँ।
2: आप भी ये बात याद रखें, संयम, वफादारी और कॉन्डम अपनाएं, सुरक्षित यौन व्यवहार बनाएं। अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल से 1097 डायल करें। मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
3: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
4: आरबीआई कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: दिल दे दिया है, जान तुम्हें देंगे।
1: इतनी वफादारी, आजकल कौन सोचता है ये सब, जीने के हैं चार दिन तो जियो जी भर के।
0: तुम्हें पता नहीं है शायद, संक्रमित व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संबंधों से एचआईवी एड्स और यौन संक्रमण का खतरा सबसे अधिक होता है, इसीलिए वफादारी बहुत जरूरी है। और कंडोम का उपयोग भी स्वस्थ यौन व्यवहार के लिए जरूरी है, उससे एचआईवी एड्स के साथ ही यौन संक्रमणों और अनचाहे गर्भ से भी सुरक्षा मिलती है, समझे?
1: हाँ भाई समझा।
0: तो संयम, वफादारी और कंडोम अपनाओ, सुरक्षित यौन व्यवहार बनाएं। और हाँ, अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल से 1097 डायल करें।
6: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।

फिल्म बागी का ये गीत आपने सुना। आवाजें थी अमित कुमार और अनुराधा पुडवाल की। संगीत आनंद मिलित का था और गीत समीर का। इस गीत की फरमाइश हमें की थी कोलारस से आरती पूजा दीक्षा कान्हा शिवम और उनके मम्मी पापा ने। फिजिकल रोड शिवपुरी से प्रज्ञा प्रथा प्रगति और उनके मम्मी पापा ने। कार्यक्रम आपकी फरमाइश आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से। आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अगली फरमाइश फिल्म बिल बादल बरसात से।

बिन बादल बरसात, इस फिल्म का ही शीर्षक गीत आपने सुना आशा भोसले की आवाज़ में। गीत शकील बदायूं का था और संगीत हेमंत कुमार का। इस गीत को सुनना चाहा था पुरानी शिवपुरी से पंकज कुशवाहा, पूनम कुशवाहा, नंदिनी, उदय और कान्हा ने। जवाहर कॉलोनी स्टेडियम रोड से मालती जाटव, सुनील जाटव ने। कार्यक्रम आपकी फरमाइश आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप भी अपनी फरमाइश हमें लिखकर भेज सकते हैं। हमारा पता नोट करें, कार्यक्रम आपकी फरमाइश, कार्यालय द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी केंद्र शिवपुरी, पिन कोड 473551 पर। तो हमें इस पते पर अपनी फरमाइश जरूर हमें लिखकर भेजते रहिए और हमें दीजिए इस कार्यक्रम से यहीं पर अनुमति। कल पुनः मिलेंगे आपके फरमाइशी गीतों के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।

0: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है जिले की चिट्ठी।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है छतरपुर जिले की चिट्ठी। आलेख सुनील पांडे, वाचन स्वर दीपा सिंह। छतरपुर में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री तथा सांसद डॉ. वीरेंद्र कुमार की अध्यक्षता में दिशा समिति की बैठक हुई। बैठक में जिले के विकास कार्यों की एक एक कर समीक्षा की गई। 70 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाने, हर घर नल जल योजना पूरी होने पर पंचायतों को हैंड ओवर करने और नियमित पानी सप्लाई के निर्देश दिए गए। जनप्रतिनिधियों से भी अपने अपने क्षेत्रों में विकास कार्यों की लगातार निगरानी करने को कहा गया। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने जिले में पल्स पोलियो अभियान चलाया। पहले दिन पोलियो बूथों पर और उसके बाद घर घर जाकर बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई। जिले में करीब 3,04,000 बच्चों को दवा पिलाने का लक्ष्य रखा गया था, जिसके लिए 2,000 से ज्यादा बूथ बनाए गए। अभियान की शुरुआत जिला कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने की। जल संरक्षण को लेकर चल रहा जलगंगा संवर्धन अभियान भी अब सम्पन्न हो गया है। समापन कार्यक्रम मोटे के महावीर परिसर में आयोजित किया गया, जिसमें वन और पर्यावरण राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार शामिल हुए। उन्होंने प्राचीन बावड़ी के जीर्णोद्धार का लोकार्पण किया और लोगों से बारिश के पानी को बचाने, जल स्रोतों की सफाई और खेतों में मेड़ बंधान तथा तालाब बनाने की अपील की। जिले के युवाओं के लिए जिला प्रशासन ने लोक सेवा गुरुकुल और सेंट्रल लाइब्रेरी की शुरुआत की है। यहाँ आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को निःशुल्क प्रतियोगी परीक्षा की कोचिंग मिलेगी। आज से वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी खुद विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करेंगे। ऑफलाइन क्लास, ऑनलाइन स्टडी मटेरियल और मॉक टेस्ट जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। दूसरी तरफ जिले के सरकारी स्कूलों में नए शिक्षा सत्र की पढ़ाई भी नियमित रूप से शुरू हो चुकी है। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने कई स्कूलों का औचक निरीक्षण किया। शिक्षकों को समय पर स्कूल पहुंचने और बेहतर पढ़ाई करने के निर्देश दिए गए। वहीं लापरवाही मिलने पर कुछ शिक्षकों के वेतन काटने और समूहों को नोटिस जारी करने की कार्रवाई भी की गई। छतरपुर में बन रहा मेडिकल कॉलेज अब अंतिम चरण में पहुंच गया है। जिला कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने निर्माण स्थल का निरीक्षण कर हॉस्टल, ऑपरेशन थिएटर, क्लासरूम, इमरजेंसी और अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। किनबितवा लिंक परियोजना से विस्थापित परिवारों के पुनर्वास को लेकर कलेक्टर पार्थ जायसवाल और पुलिस अधीक्षक रजत सकलेचा ने करोंदिया पहुंचकर विस्थापित परिवारों से मुलाकात कर सुविधाओं का निरीक्षण किया। कलेक्टर ने पेयजल व्यवस्था की समीक्षा करते हुए अतिरिक्त बोरवेल कराने के निर्देश दिए और विस्थापित परिवारों की समस्याओं के समाधान के लिए विशेष शिविर आयोजित करने को कहा। उन्होंने डोढ़न और खरियानी गांव का भी दौरा कर उन ग्रामीणों से चर्चा की जिन्होंने अभी तक अपने आवास खाली नहीं किए हैं। मानसून की दस्तक के बाद जिले में किसानों ने खरीफ की बुआई तेज कर दी है। अब तक 70% से ज्यादा रकबे में बोनी हो चुकी है। किसान मूंगफली, उड़द, सोयाबीन की फसल लगा रहे हैं। कृषि विभाग और किसान FPO के माध्यम से उन्नत बीज भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। जिले के जरूरतमंद मरीजों के लिए भी राहत की खबर है। गंभीर बीमारियों से पीड़ित 7 लोगों को मुख्यमंत्री स्वच्छ अनुदान मद से इलाज के लिए कुल 3.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मंजूर की गई है। प्रशासन ने अवैध खनिज परिवहन और भंडारण के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। खनिज विभाग ने 5 मामलों में कार्रवाई करते हुए कुल 17,45,300 रुपए का जुर्माना लगाया है। छतरपुर के लक्ष्मण कॉलोनी सटई रोड में बाल विभाग की सूचना मिलने पर महिला बाल विकास, राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर बाल विवाह रुकवाया। टीम ने दोनों पक्षों को समझाते हुए बाल विवाह करने पर कानूनी कार्रवाई और सजा के प्रावधानों की जानकारी भी दी। छतरपुर के मऊ सहानिया में 2 दिवसीय विरासत महोत्सव का आयोजन किया गया। इसमें महाराजा छत्रसाल के शौर्य वीरता ने दर्शकों पर अमिट छाप छोड़ी। समापन दिवस पर मुस्कान चौरसिया ने बुंदेली गायन और संप्रिया पूजा ने पनभानी शैली में महाभारत का प्रसंग प्रस्तुत किया। अंतिम प्रस्तुति सुमित मिश्रा द्वारा संयोजित धन्य धन्य बुंदेल धरा रही, जिसमें कविता शर्मा के गीतों के साथ 16 लोक नृत्य कलाकारों ने बुंदेलखंड की गाथा प्रस्तुत की और अंत में बात विश्व योग दिवस की। जिले के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खजुराहो के पश्चिमी मंदिर समूह परिसर में भव्य योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 2,000 से ज्यादा लोगों ने सामूहिक योगाभ्यास किया। कार्यक्रम में वन और पर्यावरण राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार भी शामिल हुए और प्रधानमंत्री के संबोधन का सीधा प्रसारण भी लोगों ने देखा। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

अभी आप सुन रहे थे ज़िले की चिट्ठी। इसमें आज आपने सुनी छतरपुर ज़िले की चिट्ठी। आलेख सुनील पांडे का था, वाचन था दीपा सिंह का, और इसका प्रसारण किया गया आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से।

कार्यक्रम सुगम संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से। अभी आपने सुनी अनुराधा पौडवाल और जसवंत सिंह की गाई हुई ये गजल। कार्यक्रम की अगली गजल सुनिए सोनू निगम की आवाज में। संगीत निखिल विनय का है।

नहीं तो तेरी याद सही। ये गजल आप सुन रहे थे सोनू निगम की आवाज में। कार्यक्रम सुगम संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से। आइए सुनते हैं चंदन दास की आवाज में कार्यक्रम की ये अगली गजल।

कहीं चांद राहों में खो गया, कहीं चांदनी भटक गई। ये गजल आप सुन रहे थे चंदन दास की आवाज में। कार्यक्रम सुगम संगीत आप सुन रहे आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से। आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अगली गजल भूपिंदर सिंह की आवाज में।

कार्यक्रम के इस अंतिम गजल के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ। आज हमने आपको सुनवाए विभिन्न कलाकारों के गाए हुए कुछ चुनिंदा गजल, जिनके अंतर्गत आज के कलाकार थी अनुराधा पोडवाल और जसपाल सिंह, सोनू निगम, चंदन दास और भूपिंदर सिंह। आपने सुनी इनकी गाई हुई चंद गजलें। आकाशवाणी का ये शिवपुरी केंद्र है FM 100.2 मेगाहर्ट्ज पर। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत।

फिल्म वीर ज़ारा का ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और सोनू निगम की आवाज़ में। गीत जावेद अख्तर का था, संगीत मदन मोहन का। कार्यक्रम फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के शुभप्री केंद्र से। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म विश्वास से।

मनहर उदास और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म विश्वास से। गीत गुलशन बावरा का था, संगीत कल्याण जी आनंद जी का। कार्यक्रम फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से।

कृषकों की खेती को उन्नतशील बनाने के लिए प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी सुनिए शाम 7:30 पर आकाशवाणी शिवपुरी से 100.2 MHz पर। इसमें हमारे कृषक भाई सुन पाएंगे नित नई बातचीत। तो सुनते रहिए किसान वाणी शाम 7:30 आकाशवाणी शिवपुरी से।

यादों के मौसम। इस फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे अनुराधा पौडवाल की आवाज में। गीत सलाहुद्दीन परवेज का था, संगीत आनंद मिलिंद का। आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए फिल्म जंजीर से।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म जंजीर से। गीत गुलशन बावरा का था, संगीत कल्याण जी आनंद जी का। आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म सिर्फ तुमसे।

0: सिर्फ तुम फिल्म के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम फिल्म संगीत अभी ही संपन्न हुआ। आकाशवाणी का शुभप्री केंद्र है FM 100.2 MHz पर। कुछ ही पलों में हमारे आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम भोपाल केंद्र से रिले होंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

कश्मीर की गली इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। आवाजें थी मोहम्मद रफी और आशा भोसले की, SH बिहारी की बोल थी और तर्ज बनाई थी OP नैयर ने। आइए अब आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर और कुमार सानू के युगल सुरों में ये दिल लगी फिल्म का नगमा।

फिल्म संगीत में आइए अब आपको सुनवाते हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में रानी मलिक के लिखे हुए नगमे को, जिसे तर्ज से सजाया है अनु मलिक ने, और फिल्म का नाम है मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी।

आइए अब आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज़ों में आनंद असद भोपाली के लिखे बोलों को, जिसकी तर्ज बनाई है राम लक्ष्मण ने। तो आइए सुनते हैं मैंने प्यार किया फिल्म का ये नगमा।

अभी आप सुन रहे थे सोनू निगम और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ों में हम तुम्हारे हैं सनम सम का गीत। गीतकार थे परवीन और संगीतकार थे डब्बू मलिक। फिल्म संगीत का कार्यक्रम इस वक्त आप सुन रहे हैं।

अभी आप सुन रहे थे हम तुम पे मरते हैं फिल्म का नगमा, जिसे गाया था लता मंगेशकर और उदित नारायण ने। आनंद बख्शी के बोल थे और तर्ज बनाई थी उत्तम सिंह ने।

आप सुन रहे हैं लावारिस फिल्म का नगमा, आवाजें उदित नारायण और अलका याग्निक की, जावेद अख्तर की बोल, तर्ज बनाई राजेश रोशन ने।

एफएम संगीत का कार्यक्रम इस वक्त आप सुन रहे हैं। आइए अब आपको सुनवाते हैं उदित नारायण और अलका याग्निक के युगल सुरों में मिस्टर बेचारा फिल्म से ये नगमा, जिसे लिखा है नवाब आरजू ने और तर्ज बनाई आनंद मिलंद ने।

आइए आपको सुनवाते हैं कुर्बान फिल्म का नगमा, जिसे आवाजें दी हैं अनुराधा पौडवाल और सुरेश वाडेकर ने। गीतकार हैं समीर, संगीतकार आनंद मिलन।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे इस घंटे की खास

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। वे आज इंडोनेशिया में राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। 8 जुलाई को ऑस्ट्रेलिया पहुंचेंगे और 10 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे, जो पिछले 40 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली न्यूजीलैंड यात्रा होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा आज भोपाल के सतगढ़ी में 173 एकड़ में विकसित होने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क का भूमि पूजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में 200 से अधिक उद्योगपति और निवेशक शामिल हो रहे हैं। इस परियोजना से 15,000 से अधिक रोजगार सृजित होंगे। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के पुनर्गठन की राजपत्र अधिसूचना जारी कर सनवर पटेल को 10 सदस्यीय बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जबकि मनोज मालपानी और अनिमेश पार्को को हिंदू सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। प्रदेश में पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान का तीसरा चरण 13 जुलाई से शुरू होगा। अभियान में 5,72,000 पशुपालकों को भेंट करने का लक्ष्य है। शौर्य स्मारक भोपाल में कल आदिवासी क्रांतिवीर स्मृति महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में देश के 50 से ज्यादा वक्ता काव्य गोष्ठी के माध्यम से आदिवासी क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। और मौसम विभाग ने आज 9 जिलों में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि अधिकांश जिलों में भारी बारिश की संभावना है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। पेश है आपकी फरमाइश कार्यक्रम। आपकी फरमाइश कार्यक्रम में आइए सबसे पहले सुनते हैं आप सभी की फरमाइश। लिखने वाले हैं खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सरमती पंचोलिया। बड़वा से प्रवीण, शिमाली, मीना, आदित्य, आदिति, शिवानी और मीनूराज शिमाली। तो आइए आप सभी की पसंद पूरी करते हैं और आप सभी की फरमाइश पर हम आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का मर्डर फिल्म का ये नगमा, जिसे आमिर जमाल ने आवाज़ दी है। सईद कादरी के बोल हैं और अनु मलिक की तर्ज। तो आइए सुनवाते हैं आपकी फरमाइश पर ये नगमा।

आपकी फरमाइश कार्यक्रम में आइए, अब सुनवाते हैं आप सभी की फरमाइश। लिखने वाले हैं नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका, नूपुर, ऋषिका और रॉबिन। समाजी नगर से राजेश, राजदीप, राशि और शीतल। आप सभी ने सुनना चाहा है बरसात फिल्म का नगमा, आवाज़ें सोनू निगम और अलका याग्निक की, गीतकार समीर और तर्ज बनाई नदीम श्रवण ने। तो आइए आप सभी की फरमाइश पूरी करते हैं और सुनवाते हैं ये नगमा।

शाजापुर से मनमोहन राजावत, राज मधुराशि रक्षित, चित्रंजन कमल उमेश सरोज आरती रेखा रितिका ऋचा रिया रीत ऋषभ और इनके परिवार के सदस्य, गौतम नगर नांदेड़ से प्रभाकर और आरती। आप सभी ने सुनना चाहा है बरसात की रात फिल्म का नगमा मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। साहिर लुधियानवी की बोल हैं, 10 बनाई रोशन ने।

सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला नसीम बेगम आयशा खान हमीदा असमा सालिया शुएब मुश्तबा रऊफ और शाहिद गांधी बाग अकोला से रमेश और वैशाली मुरादाबाद से अयूब खान इरम गुड़िया और शुएब आप सभी ने सुनना चाहा है क्रिश फिल्म का नगमा सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में इब्राहिम अश्क के बोल हैं और राजेश रोशन ने इसकी तर्ज बनाई तो आइए आप सभी की फरमाइश पर सुनते हैं क्रिश फिल्म से ये नगमा

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम संग्रहालय से। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं धारावाहिक हंसना मना है का पांचवा भाग।

0: लीजिए दोस्तों, एक बार फिर इस नई कड़ी के साथ हाजिर है आपका अपना दोस्त रजनीकांत त्रिवेदी। वैलेंटाइन डे किसी को अच्छा लगा तो किसी को बुरा, कोई खुश हुआ तो कोई खफा हो गया। अरे लाख मना करें आप, मगर गोपाल तिवारी कहां मानने वाले।
1: एक फेस्टिवल अभी घुसपैठिए की तरह हिंदुस्तान में घुसाया, और घुसा ऐसे कि हिंदुस्तान तो त्योहारों का देश है, यहाँ तो हर दिन त्योहार है। कैसे त्योहार? बैठकी, भैया दूज, धनतेरस, नरक चौदस, दिवाली, पंचमी, छठ, नाग पंचमी, दुर्गाष्टमी, रामनवमी, दशहरा, गन्ना ग्यारस, भीमसेनी द्वादशी, धनतेरस, नरक चौदस, दिवाली। अब ये बताओ कौन सा दिन खाली। मतलब त्योहारों का देश हिंदुस्तान, लेकिन जिन देशों में त्योहार नहीं है अब वो क्या करे, उन्हें बड़ी दिक्कत होती है। यार हिंदुस्तान तो मतलब ऐसा लगता है कि जैसे रोज त्योहार है। वहां कभी कुछ पकवान बन रहे हैं, कभी होली खेली जा रही, तो कभी ईद, तो कभी दिवाली, तो कभी क्रिसमस। यानी स्वर्ग की कहीं कल्पना है तो हिंदुस्तान में है, क्योंकि विश्व के जितने त्योहार हैं उसमें से अधिकांश हिंदुस्तान उसका जनक है। एक त्योहार विदेश से आया और वो त्योहार धीरे धीरे संक्रमित कर रहा है हमारी युवा पीढ़ी को, उस पर एक व्यंग है और मजा लीजिए। मैं उसके विरोध में भी बात नहीं कर रहा, उसके पक्ष में भी बात नहीं कर रहा, केवल आनंद लेने की बात है। आइटम का नाम है वैलेंटाइन डे। वैलेंटाइन डे एक ऐसा त्योहार जिसे पाश्चात्य संस्कृति में मनाया गया, जिस दिन किसी संत ने यह कहा कि हम एक दूसरे में प्यार बांटे, एक दूसरे के साथ स्नेह बांटे। ये इसका सच्चा मैसेज था, और अभी जो उसका जो रूप हो गया है विकृत, वो भी हम देखेंगे इस आइटम के अंदर। वैलेंटाइन डे के कम से कम दो चार दिन पहले लड़कों में विशेष तैयारी होती है, और कैसी तैयारी वो देखिए साहब, लड़कों की तैयारी। चार छह लड़के हैं और लड़कों में चर्चा चल रही है। तुम संजू कैसा, क्या तुम्हारा कल यार? अरे यार गुरु, यार जींस ले ली है, अब टी शर्ट की यार जवाब नहीं हो रही, तुम दिलवा दो। तुम्हें काम करो, 20 पड़े हैं। हाँ पड़े, तुम्हें काम करो, वहाँ चलो, वहाँ गोल बाजार के वहाँ वहाँ सब सेकंड हैंड मिलते हैं। अरे कोई पहचान जा, अरे कुछ नहीं पड़ा, दे रहे हो चलेंगे। यार तुम्हारी क्या व्यवस्था यार? अरे यार जब क्या हुआ, पिछले बार कुर्ता पहन के गए थे तो वो यार उन्हें अच्छा रिस्पॉन्स नहीं। इस बार क्या व्यवस्था तुम्हारी यार? यार लेदर वाली जैकेट मिल जाए। अरे तुम भी बड़े भाई ना, उधारी के चक्कर में हर समय रहते। तुम आओ, एक काम करो, शाम को आओ, हम दिलवाते हैं। वो चच्चा की है, हम दिलवा देंगे सेटिंग से, चिंता नहीं करो तुम। तुम्हारी क्या व्यवस्था यार? अरे यार मतलब कुर्ता मिल गया। हाँ मिल गया कुर्ता, और मतलब जींस भी सब मिल गई। अब यार बड़ा भाई यार जूते की बहुत दिक्कत। क्या? अरे बोले यार वो जूते यार ढीले पड़ रहे हैं यार, और छोटे भाई के लिए तो वो बहुत गड़ रहे हैं, काट रहे हैं यार। तो बोले फिर क्या व्यवस्था? पैसे की व्यवस्था करिए यार, 250-300 रुपये। हम सोच रहे हैं यार सदर से मतलब जाके ले लें जूते। अरे यार तुम सदर जाने क्या जरूरत, हर चीज सदर जाना, गोरखपुर जाना, यही मिल जाएगा। तुम बोलो ना कितने चाहिए तुम्हें। और विश्वास नहीं है तो तुम मतलब चौदह को चलना, मुफ्त दिलवाएंगे अपन। और सुबह से माहौल बन रहा है, और सब सुबह से अपना बिल्कुल टीम टाम होके, और जो दुकान होती है बार बार की वहां भी भीड़ लगी हुई है, शेविंग वेविंग बन रही है पड़ी है। अरे तो खूंट निकाल दी, अरे यहाँ से, अरे आज बहुत तुम उल्टी भी रेजर चलवा रहे, सीधी भी नहीं गुरु, करीब का मामला है ना, तो जरा गड़ना नहीं चाहिए। अरे हाँ सही। अब साहब पूरी तैयारियां हो गई, और सुबह सुबह यहाँ इनकी तैयारी चल रही है, वहां दूसरे डिपार्टमेंट की भी तैयारी चल रही है।
2: तुम्हारा कैसा क्या? नहीं हमने तो ना नई ड्रेस बनवाई है, और ये शॉर्ट ब्लाउज शॉर्ट, ये शॉर्ट, वो तू तो बिल्कुल आज के लिए इतनी शॉर्टकट होती जा रही है। ऐसा नहीं करना कि अल्लाह सब हो गया बाद में हम लोग को पता चल रहा है। नहीं रे तेरे को तो ना कितनी पक्की सहेली थी ना। हाँ माले पक्की सहेली, पिछली बार बुलाया था, बाद में कजन बोल, नहीं वो कजन ही हमको चार आ रही। एक बात बता, जिसको तुम कजन कह रही थी परसों तक तो मेरे कजन थे, तो आए कैसे हो गए?
1: अब साहब ये सब चर्चाएं, वहां पुलिस महकमा भी जो है अपनी तैयारी में लगा है और आदेश दिए जा रहे हैं।
3: ऐसा है कि देखिए देश में ये जो त्योहार आ रहे हैं इनसे बड़ी दिक्कत हो रही है, समझ रहे नहीं आप? हमारी युवा पीढ़ी बिगड़ती चली जा रही है, इसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि जितने भी जगह है खासकर पॉइंट है ना, कॉलेज वगैरह हो गए, गर्ल्स कॉलेज, गर्ल्स हॉस्टल, कॉफी हाउस, और जहाँ जहाँ मीटिंग पॉइंट है पूरे सब में रहेंगे। और सुनो तुम इधर आओ, रेखा, सुशीला, श्यामा तुम इधर आओ, कलो तुम भी जाओ। एक चीज ध्यान रखो कि कल तुम लोग विदाउट यूनिफॉर्म रहो।
1: क्यों सर, यू विदाउट यूनिफॉर्म?
3: समझो बात, जितनी कह रहा है मिशन है हमारा, विदाउट यूनिफॉर्म रहोगी और अगर कोई फूल दे तो ले लेना।
1: नहीं सर, हम किसी से भी।
3: अरे तुमको फूल लेने का मतलब हम ऐसा नहीं बोल रहे, फूल दे तो ले लेना और उसके बाद फिर मतलब झुराई चालू। समझ गए? नहीं समझ गए?
1: ये पूरा वहां भी आदेश चल रहा, वहां भी बड़ी तैयारियां हो रही साहब। अब सुबह जब हुई वहां फूल वाले भी अपना जुगाड़ करके फूल लाए हैं और 2 रुपए की कली 20 रुपए में बेचने के चक्कर में है। कुछ प्लास्टिक की कलियां भी लाए हैं, उनकी भी तैयारियां हैं। और देखिए सुबह का वक्त और सब अपने अपने मुहिम में चल पड़े। और कॉलेज के पास, स्कूल्स के पास, बच्चों में, सब में बड़ा जोश है त्योहार को मनाने का। जो त्योहार नहीं मनाने देना चाहते उनमें भी बड़ा जोश है। क्यों नहीं मनाने देना चाहते? उसमें कुछ लोग नए शामिल हुए हैं दूसरी पार्टी से। क्यों? बोले पिछले साल तो तुम विरोध नहीं कर रहे थे बाबा, इस बार। अरे नहीं यार, पिछले बार हम फूल लेके गए तो यार मना कर दिया हमने। बोला ठीक है, स्वच्छ विरोधी में शामिल हो जाओ। बोले गुरु इस बार तो बहुत मतलब चटकाना है। बोले तुम क्यों उसको मारे क्यों रहे पिछली बार? अरे वैलेंटाइन का तो बहाना रहा, कोई बोलता नहीं हो चक्कर में मरना ही चक्का। ये साहब चर्चाएं हुई। अब जो फूल देते हैं और लेते हैं, जिनका मामला पहले से पटरी में है उनकी बात अलग है, और जो पहली बार हौसला बढ़ाते हैं उनके साथ बहुत गजब बात होती है। कैसी बात? मान लीजिए लड़का दे रहा है तो वो 3-4 बार सोचेगा कि कहीं दे ऐसा ना हो कि रिवर्स में झापड़ पड़ जाए। माने एक बड़ा डर रहता है और लड़कियों को भी डर रहता है। अब जैसी उसने फूल दिया, फूल मुझे आपसे बात नहीं करनी,
3: हम आपको बहुत मतलब चाहते हैं,
1: आप चाहो या ना चाहो, आप जाओ नहीं तो हम बोल देंगे अभी शोर मचाएंगे, आप फालतू नहीं नाटक नहीं करो,
3: आप प्लीज दे दीजिए
1: माम। अच्छा रहने दीजिए, हम जा रहे हैं। वो भागा। ये साहब ऐसी कई घटनाएं घटी। अब दोस्तों की चर्चा चल रही है। एक चौबारे पे मैं गया, काफी दोस्त बैठे हुए हैं, शाम का वक्त है और उनकी समीक्षा चल रही है कि बॉस फूल मंडी में क्या स्थिति है, कॉलेजेस में क्या स्थिति है, यहाँ क्या स्थिति है और क्या चर्चा हो रही है। देखिए साहब, एक उसमें से गैंग लीडर है और वो सबको एक एक को बुला के पूछ रहा है, तुम आओ बेटा, तुम बताओ तुम्हारे फूल देने का क्या हुआ, तुम भी बताओ फूल मिले कि नहीं मिले। अरे यार फूल देना तो है लेकिन मंडी में फूल नहीं है यार, तो तुम एक काम करो ना, तुम वहां चले जाओ फूल मंडी बड़े बाजार के पास चले जाओ। अरे क्या कह रहे हैं यार, गुड्डू भी कह रहा है, क्या हुआ भैया? गुड्डू से पूछो क्या तुम रो कह रहे होगा क्या
4: भैया, हम फूल लेने गए यार 20 रुपया के 3 कली की बात है, बाप रे ऐसा टल्ला टल्ला आया है, बाप रे कमर हट गई गुरु, बहुत बड़ा मारा माँ कसम बहुत मारा,
1: और जा फूल लेने। ये घटनाएं हमने इसे पूछा, अच्छा एक काम करो तुम्हारे इधर लग रहे हैं फूल, तुम्हारे इधर के फूल का क्या हुआ? अरे यार रात ही में कोई चुरा के लेकर, हमने सोचा सुबह ताजा देंगे, वो ताजे के चक्कर में बाजा भी चला गया यार। तुम्हारे इधर, तुम इधर आ, तुम्हारा क्या नाम?
5: हमारा नाम झोरी लाल।
1: अरे बहुत सुंदर झोरी, झोरी बेटा तुम्हारे इधर तो बगीचा लगा ना, तुम्हारे इधर कौन से फूल लगे?
5: हमारे इधर तो गेंदा के लगे।
1: अरे गेंदा के फूल नहीं दिए जाते यार। तुम्हारा क्या नाम है
5: जी? खजूरी।
1: क्या नाम?

0: कलर भी क्या एक ही सा है ना, मैचिंग है। अच्छा तुम ये बताओ कि तुम्हारा कलर मैचिंग है, तुम फूल कौन सा दे रहे हो?
1: ये ऐसा है, गोरा कलर होता तो अपन लाल वाला फूल गुलाब का दे देते, लेकिन पक्के कलर की है, हम सोच रहे हैं कि मतलब मैया को जासौन का चढ़ा दे।
0: अब ये साहब फूलों की चर्चा चल रही, एक से बुलाए तुम इधर आओ, तुम कहा के फूल देते?
2: अरे भैया हम नहीं दे रहे फूल, फूल के पीछे बहुत देखा।
0: तुम क्यों नहीं?
2: अरे कह रहे फूल दे रहे यार, हम लाइन में लगे पीछे, 400 जन के फूल ले रही हूँ, वापस आ गए।
0: क्या तुम्हारे नहीं लिए? नंबर ही नहीं आया भैया। तो फिर
2: हम भी लेके आप फूल, अब दूसरा वाला दें।
0: कौन सा दोगे?
2: बेशरम का।

0: नाम? जी झोरी। अरे कैसे कैसे नाम धरते तुम लोग यार। झोरी दराव बेटा, तुम कहाँ रहते? जी ग्वारी घाट में। ग्वारी घाट में रहते? बहुत खूबसूरत बात है, वहाँ बहुत अच्छे अच्छे लोग रहते हैं, अच्छे अच्छे आर्टिस्ट भी रहते हैं। अब ये बताइए, ग्वारी घाट बड़ा धार्मिक स्थल भी है, माँ नर्मदा का सरिल है, और ग्वारी घाट में बहुत बढ़िया फूलों की खेती भी होती है, नर्सरी लगी है, वहाँ तो फूल जरूर मिल जाएंगे। नहीं भैया, वहाँ का सब फूल मतलब पहले ही कट गए, बिक गए भैया, एक्सपोर्ट हो गए। अच्छा एक्सपोर्ट हो गए? हाँ भैया, इस बार फूल नहीं है वहाँ, बहुत महंगा गया गुलाब इस बार वहाँ का, तो अभी कोई फूल नहीं मिलेंगे। मिलेंगे ना भैया? तो कौन से फूल? खारी वाले। इसी दौरान मैंने एक पार्क का सर्वे किया। पार्क में देखा कि दो तीन लोग यहाँ वहां बैठे हैं और बड़े उदास बैठे हैं। एक मित्र को मैंने देखा कि वो परिचित थे कहीं से, बड़े उदास बैठे। हमने पूछा, क्यों क्या हुआ तुमको यार? अरे बोले यार भैया, यार बहुत दिक्कत हो गई। बोले क्यों क्या हुआ? बोले यार हमारा मतलब बहुत दिन से सिलसिला चल रहा था, आज फाइनल बात होना थी, तो यार हमारे पिताजी ने कहा कि नहीं, उसके पिताजी क्या देंगे, दहेज में कुछ दे नहीं पा रहे हैं। एक काम करो तुम, तो वो दूसरी वाली पार्टी उसको हमने यस कर दिया, और वहीं शादी करो तुम। तो यार वो वहां से मतलब दिल टूट गया यार, क्या बताएं। तो फिर बोले, फिर हुआ क्या? तो बोले यार हम क्या बताएं, बहुत दुखी हैं। वो शायराना अंदाज के आदमी थे, तो उनने उसी अंदाज में अपनी बात बयां की कि मोहब्बत में मेरा सर फूटा, मोहब्बत में मेरा सर फूटा, हाथ टूटा, पैरों में दर्द आया है। मोहब्बत में मेरा सर फूटा, हाथ टूटा, पैरों में दर्द आया है, और मैं जब निकला उनकी गली से, तो उन्होंने अखियों के झरोखों से देखा और फरमाया, बहारो फूल बरसाओ। लोग अलग अलग तरह की शर्त लगाते हैं, और शर्तों की बात होती है, लेकिन उसके पहले एक बात वैलेंटाइन डे की चल रही थी। बिटिया जब घर में पहुंची तो पापा पहले से मौजूद थे, और पापा ने जैसे ही बिटिया को आते देखा, और क्या बात की, कितना बज रहे हैं?
1: पापा 5:30।
0: अच्छा, कॉलेज कितने बजे छूटता है?
1: पापा जी 3:30 बजे छूटता है।
0: तो इतने इतनी देर क्या कर रही थी?
1: नहीं, वो सहेली के यहाँ चली गई थी, तो इसलिए लेट हो गई।
0: हमें सब पता है सहेली के यहाँ चली गई थी तुम, और यहाँ पे पीछे क्या है?
1: नहीं पापा कुछ नहीं।
0: हाथ दिखाओ।
1: नहीं वो नहीं,
0: हाथ दिखाओ, हमने कहा नहीं अभी, अब हाथ दिखाओ। रोने रोने की बात नहीं है। अच्छा मतलब गुलाब की कली, हम समझ गए कहां से तुम आ रही हो।
1: पापा मम्मी हमको बोलते।
0: तुमको नहीं बोले? किसको बोले?
1: मम्मी को।
0: क्यों, मम्मी ने क्या किया? और मम्मी है कहाँ तुम्हारी? मम्मी कहाँ? देखो बेटा,
1: मम्मी नहीं है।
0: क्यों, कहाँ गई मम्मी?
1: मम्मी वहां गई है, वो प्रवचन सुन।
0: क्यों, आज किसके प्रवचन हो रहे? कौन संत आ गए?
1: वो संत वैलेंटाइन आए।
0: और जैसी मम्मी आई, आइए, कहाँ गई थी?
1: नहीं वो गुरुजी आए थे, तो उनका प्रवचन सुन।
0: और ये हाथ में क्या तुम्हारे? अच्छा पूरा बुके लेके आई हो तुम गुलाब का, बहुत अच्छे। कौन ने दिया ये?
1: नहीं सब सब जन चढ़ाने को लाए, नहीं तो मतलब आखिरी बचे वाले हम,
0: तो हमको ना बताओ तुम बिल्कुल। ये ऐसी बहुत सारी बातें वैलेंटाइन में हमने सुनी। एक और बिटिया बिल्कुल सबसे अलग, सुबह उठी, पूजा की, और 200 रुपए की उसने गुलाब की माला दो दो महीने पहले बुक कर दी थी। वो गुलाब की माला उसने ली और गुलाब के दुकानदार से कहा कि एक कली मुफ्त। हाँ मैडम, बोले आपने 200 रुपए की माला ली, एक कली की बात करने, ये लीजिए। बढ़िया पैक करके उनने खुशबू खुशबू डाल के, और वो थर्माकोल के बबल, और बढ़िया से उसको जरा सजा के वो उसने दिया, और गुलाब की माला उसने ली, साथ में कुछ मिष्ठान लिया, और बाबा के दरबार गई, बाबा को एक माला चढ़ाई उसने, हाथ जोड़े, आंख बंद, बाबा से विनम्र भाव से प्रार्थना की, बाबा मैंने आपका ख्याल रखा, आप मेरा रखिएगा। एक बिटिया फूल लेने के लिए अपने पड़ोस में गई, और जैसे ही उसने बगीचे से फूल तोड़ना चाहे, दादी ने फौरन उसको वहीं पर आदेश करके रुका, हाँ हाँ बेटा आज बिल्कुल फूल नहीं।
1: क्यों दादी? मैं तो रोज ले जाती हूँ भगवान जी के लिए फूल, और आप आज मना कर रहे हैं, ऐसे में भगवान जी नाराज हो। तुम हमें न बताओ मतलब कि भगवान जी नाराज हो जाए, हमें मालूम तुम फूल कौन के लाने ले जा रहे हैं। नहीं ऐसा नहीं है सच्ची में।

0: भगवान के लिए फूल ले जा रही हूँ, आप बिल्कुल ऐसे में भगवान आपको पाप पड़ेगा और किसी को मना नहीं। हाँ मैंने बताओ बेटा, तुम जो उनके लाने फूल ले जा रहे हैं हमें सब मालूम है, आपको क्या मालूम है? ऐसा है बेटा, तुम जितने दिन फूल ले गई आज के बाद फूल ले जाना बंद। क्यों ऐसा क्यों आप कर रहे हैं हमारे साथ जुल्म? ऐसा है बेटा, तुम जो उन भगवान के लाने फूल ले जाती हो, वे तुम्हारे वाले भगवान आज हमारी नातिन से एंगेज हो रहे हैं।
1: हंसना मना है, हंसना मना है रे, हंसना मना है, हंसना मना है। कोशिश कोई लाख करे, कहता रहे कि हंसना मना है, मगर लोग हंसेंगे, खिलखिलाएंगे। एक बात आपसे खास तौर पे कहना चाहते हैं हम कि इस कार्यक्रम का नाम है हंसना मना है। ले लो भाइयों, ताजे फलों का संसार आपके द्वार पे आ गया। अरे कश्मीर का लाल सेब ले लो, महाराष्ट्र का संतरा ले लो, भुसावल का ले लो केला, सबसे बढ़िया ताजा केला, जबरदस्त और प्यारा मीठा मीठा ताजा केला ले लो भाई साहब।
2: एक केले वाले।
1: हाँ बाबूजी, नमस्कार बाबूजी। बोलिए बाबूजी,
2: केले कैसे दिए?
1: ये वाले केले भुसावल के बाबूजी, बड़े प्यारे, बहुत ताजे, बहुत बढ़िया केले हैं बाबूजी।
2: ले लीजिए।
1: अरे भाव क्या लगाए बाबूजी, जो मन करे आपका दे देना, और क्या है।
2: अरे भाई कुछ तो भाव होगा, कैसे दिए आपने केले?
1: अरे आप पूछ रहे तो बता देते, 5 रुपए के 12।
2: 5 के 12?
1: हाँ।
2: अरे यार कुछ कम करो यार।
1: तो 10 ले लो।

0: लल्ला जी नमस्कार नमस्कार
1: नमस्कार आइए साहब आइए।
0: और क्या हाल दोस्त?
1: और बढ़िया।
0: लल्ला एक काम करो भैया, जरा जल्दी से 6 साबुन दे दो, नहाने के साबुन।
1: नहाने का साबुन? अच्छा अच्छा, छोटू जरा नहाने के साबुन निकाल लो भैया।
2: सेठ जी नहाने का साबुन खत्म हो गया। सेठ जी
1: क्या कहा? नहाने का साबुन खत्म हो गया है? भाई साहब नहाने का साबुन तो खत्म हो गया है। एक काम कीजिए कि वो रात को हमारा माल आने वाला है, तो जैसे ही हमारा माल आएगा तो कल वो साबुन आप हमारे यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं।
0: तो एक काम करो, साबुन नहीं है, है ना, आप नाले दे दीजिए, वो पायजामे में जो नाले डाले जाते हैं।
1: अच्छा अच्छा, पायजामे का नाला?
0: हाँ
1: जी पायजामे का नाला। छोटू पायजामे का नाला देना भैया।
2: सर जी नाला तो पायजामे का खत्म हो गया। सर जी रात में माल आएगा तभी आ पाएगा।
1: क्या कहा? पैजामे का नाला भी खत्म हो गया है? भाई साहब क्या है कि वो नाला भी खत्म हो गया है पैजामे का, वो क्या है कि माल आने वाला है और जैसे ही रात को माल आएगा तो हम आपके यहाँ वो नाला और साबुन ये दोनों सामान पहुंचा देंगे, आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए।
0: माल आने वाला, माल आने वाला। अच्छा फिर आप एक काम करिए, आप बहुत जल्दी से वो जूते की पॉलिश दे दीजिए, वो काले वाली।
1: जूते की पॉलिश? हाँ काली वाली। वो तो साहब ये रखिए, ये लीजिए, ये काली। ये आपने काली मांगी जी? ये लाल है। क्या है कि काली जरा खत्म हो गई है। हाँ। वो माल आने वाला है साहब, हमारा जैसे ही माल आएगा तो हम वैसे आपके यहाँ तीनों सामान पहुंचा देंगे।
0: हमें कोई जरूरत नहीं है, आप एक बात बताइए, आपकी दुकान में ताले हैं?
1: ताले?
0: हाँ ताले। हाँ, ताले।
1: ये देखिए ताले तो सामने रखे, ये देखिए छोटा ताला, ये देखिए बड़ा, ये हरा वाला देखिए कैसा है, ये देखिए।
0: हमें ताले चाहिए नहीं है भाई साहब, हमको ताले नहीं चाहिए हैं। आप एक काम करिए, आप अपनी दुकान का शटर नीचे गिराइए, दुकान बंद करिए, उसमें ताले लगाइए और अपने घर जाइए। दोस्तों क्या आपको मालूम है कि हंसने से आपकी कितनी मांस पेशियां तनाव रहित हो जाती है? नहीं मालूम ना? वैसे एक राज की बात बताऊं, हमें भी नहीं मालूम। मगर अंदाजा है कि 2-400 मांस पेशियों पर असर तो होता होगा, है ना? खैर छोड़िए, विनय जैन एक बार फिर आ रहे हैं आपको हंसाने के लिए।
1: एक साहब डॉक्टर साहब के पास पहुंचे और बोले, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब जल्दी चलिए।
3: क्या बात है?
1: डॉक्टर साहब जल्दी चलिए।
3: अरे भाई बात क्या है, कहां चलूं मैं?
1: डॉक्टर साहब क्या है कि वो हमारे घर में बहुत ज्यादा तबीयत खराब है।
3: अरे भाई किसकी तबीयत खराब है? जिसकी तबीयत खराब है उसको यहीं ले आऊं?
1: डॉक्टर साहब वो यहाँ नहीं आ सकती।
3: अरे भाई कौन नहीं आ सकती? आपकी माता जी हैं, आपकी पत्नी हैं, आपकी बच्ची हैं।
1: नहीं डॉक्टर साहब वो क्या है ना कि वो यहाँ मैं उनको ला नहीं सकता।
3: अरे भाई वो है कौन?
1: वो डॉक्टर साहब हमारी भैंस बीमार है।
3: भैंस बीमार है?
1: शट अप, गो डाउन। भैंस बीमार है।

0: और मेरे जैसे डॉक्टर के पास आप यहाँ पे ये शिकायत लेके आए कि भैंस बीमार है, मैं आपके घर आपकी भैंस को देखने चलूं?
1: मैं मरीज को यहाँ पर देखता हूँ, वो भी जानवरों को नहीं, इंसानों को। तुम भैंस की तबीयत खराब लेके मेरे पास आए हो, गेट आउट।
2: अरे डॉक्टर साहब कुछ करो डॉक्टर साहब, हमारी भैंस मर जाएगी डॉक्टर साहब, मैं भैंस को बिल्कुल नहीं ला सकता साहब।
1: ठीक है डॉक्टर साहब को दया आ जाती है, एक काम करते हैं, तुम्हारी भैंस की तबीयत खराब है तो मैं उसको दवाई दे देता हूँ और ये गोली दे देता हूँ, तो तुम ये गोली ले जाओ और भैंस को खिला देना और बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ठीक है, इसका 50 रुपया लगेगा।
2: हाँ डॉक्टर साहब हम 50 रुपये देंगे।
1: साहब 50 रुपये देते हैं, डॉक्टर साहब उनको 2-3 गोलियां देते हैं, बहुत बड़ी बड़ी गोलियां देख के साहब उनको खिलाने का तरीका पूछते हैं।
2: डॉक्टर साहब इसको खिलाएंगे कैसे?
1: अरे भाई एक तो भैंस का इलाज बता रहे हैं, वैसे ही हम जानवरों का इलाज करते नहीं है, उसके बाद तुमको हम गोली दे रहे हैं। खिलाने का तरीका बिल्कुल सिंपल है भाई, तुम चूल्हे फूकने वाली कभी तुमने वो फूकनी देखी है जिससे फूका करते हैं? हाँ साहब हमने फूकनी तो बहुत देखी, बस फूकनी को ऐसा भैंस के मुंह में फंसाना और उसके बाद तुम क्या करना, गोली को लेके फूकनी के बीच में रखना और जोर से एक बार फूंक मार देना, बस गोली अंदर, भैंस की तबीयत ठीक। दूसरे दिन साहब वापस लौट के आए, डॉक्टर साहब ने पूछा कि भाई भैंस की तबीयत ठीक है?
2: बोले साहब भैंस की तो छोड़ो, हमारी तबीयत खराब हो गई।
1: बोले क्या हो गया?
2: बोले साहब जैसे बताया था वैसे ही किया था, फूकनी उकनी सब लगा दी भैंस के मुंह में, जैसे ही गोली रखी तो भैंस ने पहले ही फूक मार दी।
3: दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हंसना मना है, मगर आपकी न हंसने की कसम तोड़ने के लिए आवाज दे रहे हैं हसोड़ गोपाल तिवारी को।
4: कुछ लोग ऑफिस में भी होते हैं तो ऐसी बात करते हैं कि उसका कुछ मजा ही अलग होता है। एक सज्जन बैठे हुए ऑफिस में अपने कुछ मैटर ड्राफ्ट कर रहे थे और ड्राफ्टिंग के वक्त जो गलतियां होती हैं, तो पेपर चूंकि शासकीय होता है तो उसका कैसा भी उपयोग किया जा सकता है, तुरंत तो 4 लाइन लिखी, नहीं गलत, ऐसा मोड़ा और फेंका उनने, तो दूसरा लिखा, तीसरा लिखा, ऐसा कई देर से कर रहे थे। एक बार क्या हो कि उन्होंने लिखा कुछ और उसको मोड़ा, फेंकने के लिए विंडो जो होती खिड़की होती उसमें थोड़ा छेद था, बाहर फेंकने के वो मूड में थे, जैसे उनने ऐसा करके फेंका और फेंका तो वो टकरा के वापस आ गया। अरे यार नहीं गया, फिर दिया और फिर फेंका, फिर नहीं गया, 3-4 बार ऐसा हो गया। तो पास में एक जो सज्जन बैठे थे वो इरिटेट हुए और उन्होंने वो कागज उठाया, भाई साहब ऐसे नहीं फेंकते, देखो निशाना देखना है, और जैसे उन्होंने लिया एक बार में ऐसा फेंका उस तरफ, देखा ऐसे फेंकते हैं। ये ऐसा है हमारे बस की बात नहीं है, आप ही कर सकते हो क्योंकि आप बचपन से फेंक रहे हो। और गजब गजब बातें हो जाती हैं। एक सज्जन गुरंदी बाजार पहुंचे और गुरंदी बाजार पहुंचकर उन्होंने कुछ चीजों के रेट पूछे, और रेट कैसे पूछे क्या बात हुई देखिए। एक तोता बेचने वाला था और तोता बेचने वाले के पास गए और तोते की क्वालिटी वाइज उसके रेट से वो पूछ रहा है तोते के बारे में, देखिए। अरे भैया ये तोते दिखा रहे जरा। हाँ साहब कौन सा तोता देखना चाहेंगे जरा? वो वाला दिखाओ, वो जो लोहे के पिंजरे में है, जो आर्डनरी सा, वो जिसकी कंठी इंटी है और बहुत बढ़िया सा, कैसा तोता वो दिखाओ जरा, जरा कैसा लग रहा है वो? साहब ये जो तोता है, इस तोते को करण तोता बोलते साहब, ये राम राम सीताराम गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग बोलता सर, हेलो बोलता है मिले तो, हाय बोलता है मिले तो, बाय बोलता है जाए तो, और मोहल्ले में कभी मिल जाए, कभी कॉलोनी में मिल जाए तो फौरन बोलता है काय, तो हाय बाय और काय का तीनों का मैच है इसका साहब, बड़ा इंटेलिजेंट ये जो है तोता है, आप चाहे तो ये ले लीजिए। कितने का है साहब? ये जो तोता है ये मात्र 200 रुपए का है। अच्छा, उसके बाद वो जो बहुत बढ़िया सा प्यारा सा तोता और बिल्कुल गजब लग रहा है वो तोता दिखाओ जरा, वो चांदी के पिंजरे में उसको दिखाओ। हाँ साहब ये जो तोता है, ये तोता कुछ

0: सोने के झूले में सुनहरा सा वैल गजा छम तोता दिख रहा है। जो जिस तोते के एक पंख में इतनी शार्पनेस है, इतना बढ़िया शाइन है, ये तोता थोड़ा देखा। साहब जिस तोते की बात आप कर रहे हैं ये बहुत कॉस्टली तोता है, ये एक्चुअली सर बहुत लर्निड तोता है, बड़ी जुगाड़ के बाद इस पिंजरे में आया साहब, बड़े मुश्किल से कैद हुआ है, और साहब ये जो तोता है केवल ऑर्डर देना जाता है। नो नो दैट इज रॉन्ग, ऐसा नहीं चलेगा, ये गलत बात है। हाँ ठीक है तुम्हें मिलेगा भाई, ये ऐसा नहीं है, ये साहब बहुत बढ़िया तोता है, ये बिल्कुल ऑफिशियल जवान जानता है। अच्छा ये कितने का है? ये 10,000 का है। यार तुम गजबत भी हो यार, जो तोता सबसे ज्यादा काम करता है, सबसे बढ़िया बोलता है, सबसे बढ़िया क्वालिटी है जिसकी, और जो लोहे की पिंजरे में रखा है उसको तुम खिला रहे, वही अपना चना हो गया, मूंगफली हो गई, और जो सबसे बढ़िया वाला तोता है उसको तो हम देख रहे हैं।
1: संग्रहालय से इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे धारावाहिक हंसना मना है की 5वीं कड़ी। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। प्रस्तुत हैं इस घंटे की खास

0: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा आज भोपाल के सतगढ़ी में 173 एकड़ में विकसित होने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क का भूमि पूजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में 200 से अधिक उद्योगपति और निवेशक शामिल हो रहे हैं। इस परियोजना में 15,000 से अधिक रोजगार सृजित होंगे। चुनाव आयोग ने बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों के उपचुनावों के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। मध्य प्रदेश में दतिया विधानसभा पर उपचुनाव होना है। अधिसूचना के अनुसार नामांकन 13 जुलाई तक स्वीकार किए जाएंगे और 30 जुलाई को मतदान होगा। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के पुनर्गठन की राजपत्र अधिसूचना जारी कर सनवर पटेल को 10 सदस्यीय बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जबकि मनोज मालपानी और अनिमेश भार्गव को हिंदू सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। प्रदेश में पशुपालन व डेयरी विभाग द्वारा दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान का तीसरा चरण 13 जुलाई से शुरू होगा। इस अभियान में 5,72,000 पशुपालकों से भेंट करने का लक्ष्य है। शौर्य स्मारक भोपाल में कल आदिवासी क्रांतिवीर स्मृति महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में देश के 50 से ज्यादा वक्ता काव्य गोष्ठी के माध्यम से आदिवासी क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। और प्रदेश में मानसून सक्रिय है। अब तक औसत 6.4 इंच बारिश हुई है। मौसम विभाग ने आज 9 जिलों में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि रतलाम, उज्जैन सहित अधिकांश जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: इस वक्त आप हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश के साथ। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पण, प्रस्तुति आकाशवाणी भोपाल।

प्रिय श्रोताओं, आज के स्वास्थ्य दर्पण में मैं प्रेक्षा सक्सेना आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। मेरा प्यार भरा नमस्कार स्वीकार कीजिए। श्रोताओं, आज हम बात करेंगे सेल्फ केयर और स्वस्थ जीवन शैली की, जो कि एक दूसरे के पूरक हैं। स्वयं की देखभाल करना स्वस्थ जीवन के लिए बेहद आवश्यक है। अच्छा स्वास्थ्य केवल बीमारी का अभाव नहीं, बल्कि संतुलित दिनचर्या, पौष्टिक आहार, नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद और सकारात्मक सोच का सुंदर समन्वय है। रोजमर्रा की ये छोटी छोटी आदतें मिलकर स्वस्थ जीवन शैली का आधार बनती हैं। पर याद रखिए, एक स्वस्थ जीवन शैली की शुरुआत स्वयं की देखभाल से होती है। इसके लिए कुछ अच्छा समय खुद के लिए निकालना जरूरी है, तभी हम अपने जीवन को स्वस्थ, ऊर्जावान और खुशहाल बना पाएंगे। श्रोताओं, आइए सुनते हैं ये

0: कार्यक्रम में समय हो गया है भेंट वार्ता का। जैसा कि हम सभी जानते हैं, बारिश के मौसम में बहुत से ऐसे वायरस हैं जो पनप जाते हैं, जिससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ जाती हैं। इन बीमारियों की रोकथाम कैसे करें, इसी विषय पर जानकारी के लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर लोकेंद्र दवे को, और इनसे बातचीत की है महक गुप्ता ने। तो आइए सुनते हैं ये भेंट वार्ता।
1: श्रोताओं, आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं गांधी मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर, श्वास रोग विशेषज्ञ डॉक्टर लोकेंद्र दवे जी। नमस्कार सर।
2: नमस्कार मैडम, और सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
1: सर, बारिश के मौसम में अक्सर वायरल इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ऐसे में कभी कभी हम कोई घातक बीमारी भी कैच कर लेते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। तो कैसे हम इस मौसम में खुद को बचा सकते हैं?
2: देखिए, बारिश में हवा में वातावरण में नमी बहुत रहती है जी। और थोड़ा टेम्परेचर भी कम होता है, तो नमी और टेम्परेचर, ये दोनों चीज़ों का जो मिक्सचर है, ये वायरस के पनपने के लिए बहुत अच्छा एक एनवायरनमेंट बनाता है जी। और इसलिए बहुतायत इस वातावरण के कारण से सांस संबंधी बीमारियां समझो, या हम पेट संबंधी रोग समझो, या आँखों से संबंधी, गले के संबंधी, ये सब वायरस की जो बीमारियां हैं, और इसके अलावा कई सारी सीरियस इलनेसेज हैं वायरस रिलेटेड, वो सभी इस समय बहुतायत से हमारे ओपीडी में हम लोग देखते हैं। तो वायरस की जो बीमारियां हैं उसमें अगर हम आँखों की बात करें

0: दूसरा, जो वायरस के जनित मरीजों के रोगी हैं
1: जी
0: उनकी सेवा करने वाले यदि संभव हो तो या तो ग्लव्स पहने या हाथों को बार बार धोएं साबुन पानी से, क्योंकि हाथ एक और माध्यम है जिसके माध्यम से वायरस एक से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचता है। तो ये दूसरी तरीका है जिसमें
1: जी
0: हम ये कर सकते हैं। और एक जो इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट है खान पान से रिलेटेड, कि इस समय हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहे तो वायरस की बीमारी जो है माइल्ड होती है, नहीं तो वायरस की बीमारी अनकंट्रोल्ड हो जाती है। जो कोमोर्बिडिटी वाले लोग हैं उनको विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है, जैसे किसी को डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट डिजीज़ है, प्रेग्नेंट वुमेन है,
1: जी
0: ये सब लोग जो हैं उनको विशेषतर ये कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना रहती है वायरस की बीमारी से, इसलिए इन लोगों को विशेष सावधानी बरतने की ज़रूरत है।
1: जी सबसे ज़्यादा जो हमने कॉम्प्लिकेशन देखा है, जैसे कि आपने बोला निमोनिया,
0: जी
1: निमोनिया एक ऐसा शब्द है जिससे अक्सर लोग डरते हैं,
0: बिल्कुल।
1: तो इस बीमारी के बारे में हमें कुछ बताइए।
0: देखिए, निमोनिया किसी भी मरीज को सांस नली में संक्रमण होता है और वो फेफड़े की तरफ बढ़ता है, फेफड़े में सूजन आ जाती है,
1: जी
0: तो ऑक्सीजन जो ट्रांसपोर्ट का काम है फेफड़े का वो काम प्रॉपर नहीं हो पाता है। तो निमोनिया के जो सामान्य लक्षण हैं, सर्दी, खांसी, बुखार, चेस्ट में पेन और उसके बाद सांस में लेने में दिक्कत और पसली चलना है जिसको साधारण भाषा
1: जी
0: में लोग बोलते हैं, तो ये लक्षण यदि दिखाई दें हाई ग्रेड फीवर के साथ तो निमोनिया की संभावना पूरी है। और ऐसे मरीज को तुरंत अस्पताल में इलाज कराएं, क्योंकि घर पे निमोनिया का इलाज करने में कई बार कॉम्प्लिकेशन पैदा हो सकते हैं।
1: जी सर, इसके अलावा इस मौसम में एलर्जीज भी हमने देखा है कई गुना बढ़ जाती हैं। लगातार छींकें आना, नाक बहना, जरा सी धूल से या पोलन से, तो उनसे हम किस तरह से बच सकते
0: देखिए,
1: हैं?
0: इस समय हरियाली ज़्यादा होती है, जंगली घास फूस उग जाती है, वो
1: जी
0: भी एलर्जी का एक बड़ा कारण होता है।
1: जी
0: हरियाली में पोलेंस, जो आपने जैसा बोला, पोलेंस भी एक इम्पॉर्टेंट कॉज है जो एलर्जी का कारण है। मुख्यतः शहरों में और गांवों में इस मौसम में एलर्जी मिलती फंगस की, क्योंकि दीवारों में सीपेज होता है और फिर जब दीवारें सूखती है तो दीवारों पर काले हरे धब्बे आ जाते हैं,
1: जी
0: वो धब्बे एक्चुअल में फंगस है और फंगस ड्राई होने के साथ हवा में उड़ती है तो लोगों को एलर्जी बहुत करती है।
1: जी
0: दूसरा जो प्रॉब्लम है, इस समय नमी ज़्यादा होती है, सूरज की रोशनी कम निकलती है, तो जो गद्दे होते हैं, सोफ़ा होता है, मोटे गद्दे, तकिया, कालीन, ये सब जो हमारे घर के अंदर चीज़ें होती है इनमें डस्ट माइट पनपती है।
1: जी
0: डस्ट माइट, डस्ट के साथ होने वाले बहुत माइक्रोस्कोपिक बारीक कीड़े होते हैं जो नज़र नहीं आते आँखों से, लेकिन उनकी एलर्जी भी बहुत ज़्यादा होती है। तो
1: जी
0: डस्ट माइट की एलर्जी और पोलन की, फंगस की एलर्जी, इन तीनों की संख्या बढ़ने की वजह से मरीजों की संख्या बढ़ती है। तो ये कॉमन कॉजेज हैं जिनसे हमें दूर रहना है, बचाव करने की ज़रूरत है।
1: जी इसके अलावा सर, शहरों में प्रदूषण की मात्रा भी बढ़ रही है, क्या उसका आपने आपकी ओपीडी में कोई प्रभाव देखा है?
0: प्रदूषण देखिए राउंड द क्लॉक समस्या है। बारिश के टाइम में इस मौसम में प्रदूषण का एक समस्या बड़ी है कि जो पानी गिरता है तो उसके साथ में हवा जो होती है ठंडक, उसमें घनत्व तो ज़्यादा हो जाता है हवा का, तो जो पार्टिकुलेट मटेरियल होता है हवा के अंदर जो कण होते हैं वो बहुत नीचे तैरते हैं, तो उसका दुष्प्रभाव निश्चित रूप से हेल्थ पर पड़ता है और कई सारी हेल्थ संबंधी समस्याएं प्रदूषण के साथ भी इस मौसम में होती हैं। तो कॉमनली समस्याएं वही हैं जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ,
1: जी
0: वायरस की समस्याएं, एलर्जी की समस्याएं, प्रदूषण की समस्याएं, सभी में आँखों में खुजली हो सकती है, तकलीफ हो सकती है, नाक और गले की समस्याएं हो सकती है, फेफड़े की समस्याएं हो सकती है। प्रदूषण की अन्य समस्याओं में हम लोग न्यूरोसाइकेट्रिक प्रॉब्लम्स वगैरह ये सब चीज़ें भी देखते हैं, लेकिन वो लगातार लंबे समय रहने पर होती हैं। इस तरह से शॉर्ट टर्म में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, जो इस मौसम के लिए पर्टिकुलरली ध्यान रखने की बात है।
1: जी फेफड़ों की बीमारी संबंधित कोई और बीमारी जिस पर आप प्रकाश डालना चाहेंगे?
0: देखिए, जो आपने जैसे एलर्जी का बोला, तो एलर्जी में लगभग 1/3 पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें अस्थमा डेवलप होता है,
1: जी
0: तो इस मौसम में अस्थमा के लिए ट्रिगर फैक्टर होता है नमी, हवा की नमी, और बहुत लोग बादलों में आपने देखा होगा सांस के मरीजों को तकलीफ होती है। तो हम लोग हमेशा ये एडवाइस करते हैं कि इस मौसम में अपने दवाओं पर पूरा ध्यान दें और इनहेलर्स अगर प्रिस्क्राइब किए तो इनहेलर्स को प्रॉपर

0: पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें अस्थमा डेवलप होता है,
1: जी
0: तो इस मौसम में अस्थमा के लिए ट्रिगर फैक्टर होता है नमी, हवा की नमी। और बहुत लोग बादलों में आपने देखा होगा सांस के मरीजों को तकलीफ होती है, तो हम लोग हमेशा ये एडवाइस करते हैं कि इस मौसम में अपने दवाओं पर पूरा ध्यान दें और इनहेलर्स अगर प्रिस्क्राइब किए तो इनहेलर्स को प्रॉपर

0: के पास जाने में काफी देरी कर देते हैं।
1: जी
0: कौन से ऐसे संकेत हैं जिनसे हमें पता चल सके कि नहीं, अब इस व्यक्ति का इलाज घर पे संभव नहीं है, हमें विशेषज्ञ की मदद लगेगी, अस्पताल जाना पड़ेगा।
1: देखिए, मामूली सर्दी जुकाम 1 या 2 दिन से हो रहा है तो फिर हम होम रेमेडीज से हम काम चला सकते हैं, लेकिन यदि सर्दी जुकाम के साथ बुखार आ रहा है या गले में दर्द पकड़ रहा है या सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो ऐसे मरीज को बिल्कुल भी घर में नहीं रखना चाहिए। ऐसे मरीज को जरूर ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल में जाके डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। घरेलू इलाज बहुत मामूली सिम्टम्स के लिए हो सकते हैं, जिसमें हम सिंपल पैरासीटामोल लेके और प्लेंटी ऑफ लिक्विड्स देके पेशेंट को एडवाइस करते हैं रेस्ट करने के लिए, लेकिन माइल्ड सिम्टम्स बहुत कम लोग जो है उसको इसको फॉलो करते हैं, रेस्ट नहीं करते, तो उसके साथ वो फिर कॉम्प्लिकेशन भी किसी किसी को बढ़ जाते हैं। मॉडरेट सिम्टम जहाँ फीवर आने लगता है, गले में तकलीफ होने लगती है, सांस में तकलीफ होने लगती है, तुरंत जाके मरीज को एंटीवायरल और सपोर्टिव मेडिसिन लिखवानी चाहिए, जरूरत हो तो भर्ती भी करना चाहिए। सीरियस मरीज जो है वो तो ऑलरेडी हमारे पास इसी तरह के आते हैं जिनको भर्ती करना बहुत आवश्यक हो जाता है, पर वो स्टेज ना आए तो अच्छा है, क्योंकि सीरियस मरीज निमोनिया के जो होते हैं उनमें 30-40% मॉर्टेलिटी रहती है, मतलब डेथ की संभावना रहती है, तो सीरियसनेस को नहीं पनपने दें, ये मेरा सभी से आग्रह रहता है और इसका सभी को ध्यान रखना चाहिए।
0: थैंक यू सर। आपकी तरफ से कोई और संदेश जो आप हमारे श्रोताओं को देना चाहेंगे?
1: देखिए, बारिश का मौसम एक वरदान मौसम है मानव सभ्यता के लिए, प्राणियों के लिए, सभी के लिए बारिश बहुत आवश्यक है हमारे लिए
0: जी।
1: लेकिन इस मौसम का लुत्फ उठाएं, साथ में अपने स्वास्थ्य की रक्षा भी करें, अपना खान पान संतुलित रखें, बाहरी गरिष्ठ चीज़ें ज़्यादा नहीं खाएं, बाहर की चीज़ें ज़्यादा नहीं खाएं जिसके, और यदि फल फ्रूट वगैरह लाते हैं तो अच्छे से धुलाई करके खाएं, और जो बाहर चाट पकौड़ी वगैरह इस तरह की चीज़ें मिलती है उसमें अपना ध्यान रखना है कि हमें नहीं खाना चाहिए ऐसी चीज़ें, क्योंकि इस मौसम में इन चीज़ों से कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। दूसरा, आँखों पर चश्मा लगाना, मास्क बांधना रोड पर, क्योंकि जो डस्ट उड़ती है कीचड़ वाली वो भी बीमारी का एक कारण बनती है प्रदूषण के साथ में, और वायरस के जो अन्य बीमारियां जैसे मैंने बताया कि बीमार व्यक्ति के संपर्क में नहीं जाना ज़्यादा, यदि संपर्क में जाना पड़े तो मास्क लगाना जरूरी है, और हाथों को बार बार साबुन पानी से धोते रहना ताकि हाथ हमारे बीमारी का सोर्स ना बन पाए। ये कुछ कॉमन चीज़ें हैं जिसे हमेशा ध्यान रखना है हमको। बच्चों को, बूढ़ों को ज़्यादा सतर्कता बरतने की जरूरत पड़ती है क्योंकि उनको तेजी से बीमारी होती है कोई भी, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी वीक होती है। डायबिटिक्स और हार्ट डिजीज वाले पेशेंट अपनी बीमारी कंट्रोल रखें और साथ में इन सब चीज़ों का भी पूरा पूरा ध्यान रखें, क्योंकि उनमें भी कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना ज़्यादा रहती है हमेशा।
0: धन्यवाद सर, हमें आपका कीमती समय देने के लिए।
1: धन्यवाद मैडम।
2: अभी आपने सुनी मौसमी बीमारियों से बचाव विषय पर डॉक्टर लोकेंद्र दवे से महक गुप्ता की बातचीत। आइए सुनते हैं अब ये प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, अब समय हो गया है हेल्थ एंड टेक्नोलॉजी का। आज हम बात करेंगे कंटिन्यूअस शुगर मॉनिटरिंग की। आज स्वास्थ्य के लिए नई नई तकनीकें आ गई हैं। इन्हीं में से एक है कंटिन्यूअस शुगर मॉनिटरिंग। ये एक छोटी सेंसर आधारित तकनीक है जो त्वचा के नीचे लगाई जाती है और रात दिन ब्लड शुगर का स्तर मापती रहती है। इससे कई बार उंगली में सुई चुभाने की जरूरत कम होती है और शुगर के स्तर में लगातार होने वाले उतार चढ़ावों का पता लग जाता है। यह जानकारी मोबाइल या रीडर पर आसानी से देखी जा सकती है, जिससे मरीज व डॉक्टर दोनों को बेहतर निर्णय लेने में मदद मिलती है। इसका सबसे बड़ा लाभ है समय पर सही कदम उठाना, दवा, भोजन और व्यायाम को बेहतर ढंग से नियंत्रित करना तथा डायबिटीज को सुरक्षित तरीके से संभालना। तो इस तरह की ये तकनीक डायबिटीज के मरीजों के इलाज में बेहद कारगर है। श्रोताओं।

श्रोताओं, बारिश का मौसम पूरी तरह शुरू हो चुका है। ऐसे में हम आपसे कुछ सेहत सूत्र साझा कर रहे हैं। इस मौसम में संक्रमण, सर्दी जुकाम, पेट की समस्याएं, मच्छरों से होने वाली बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बाहर का खुला और बासी खाना खाने से बचें। हमेशा ताज़ा और गर्म भोजन करें। पीने के लिए साफ, फिल्टर या उबले पानी का प्रयोग करें, ताकि पेट की बीमारियों से बचा जा सके। बारिश में भीगने पर तुरंत गीले कपड़े बदलें और शरीर को सुखाएं, क्योंकि गीले रहने से त्वचा संबंधित रोग और सर्दी जुकाम होने का खतरा बना रहता है। घर के आसपास गंदा पानी जमा होने से रोकें, जिससे बीमारियों से बचा जा सके। इस तरह आप मौसम का आनंद ले सकते हैं। श्रोताओं, उम्मीद है आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। प्रतिक्रिया हेतु पत्र अवश्य लिखें। पत्र व्यवहार के लिए हमारा पता है, कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पण, द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी, श्यामला हिल्स, भोपाल। पिन कोड है 462002। इसी के साथ मैं प्रेक्षा सक्सेना आपसे इजाजत लेती हूँ।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पण, प्रस्तुति आकाशवाणी भोपाल की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की

0: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा।
1: ऑफिस जाने की जल्दी, मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
2: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
0: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
1: आकाशवाणी है ना,
3: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
1: ऑफिस में थोड़ा

0: रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक।
1: शाम सुहानी हो,
2: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना।
0: घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन?
1: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
0: सफर में
1: आपके साथ
0: आकाशवाणी।

0: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। अब लीजिए सुनिए लोक संगीत का कार्यक्रम। हमारे आज के कलाकार हैं छगन लाल वर्मा और साथी। इनके स्वरों में आज हम आपको सुनवाएंगे कुछ बुंदेली लोकगीत। प्रस्तुति आकाशवाणी।

लोक संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे छगन लाल वर्मा और साथियों के गाए हुए कुछ बुंदेली लोकगीत। प्रस्तुति आकाशवाणी भोपाल की थी। इस वक्त आप हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश के साथ। सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज सुनिए असलम सावरी को। प्रस्तुति आकाशवाणी भोपाल की है।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे असलम साबरी और साथियों को। प्रस्तुति आकाशवाणी भोपाल की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हमारा अगला कार्यक्रम बस थोड़ी देर

इस वक्त आप हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश के साथ। लीजिए, प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में सबसे पहले आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर की आवाज में मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा हुआ गीत। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है, फिल्म का नाम है

कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाजों में। फिल्म का नाम है बहारों के सपने। गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार आर डी बर्मन।

0: आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भोपाल के सतगढ़ी में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क का भूमि पूजन एवं शिलान्यास किया। राष्ट्रवादी चिंतक और भारत के प्रथम उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने इंडस्ट्रियल पार्क की सौगात दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ये पार्क औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन को गति देगा। लगभग 173 एकड़ में विकसित होने वाला यह स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क भोपाल और आसपास के क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधियों के विस्तार का नया आधार माना जा रहा है, जिसमें आधुनिक औद्योगिक अधोसंरचना, आईटी एवं एआई आधारित सुविधाएं और लॉजिस्टिक एवं वेयर हाउसिंग कॉम्प्लेक्स विकसित किए जाएंगे। ये परियोजना वर्क लिव ग्रो मॉडल पर आधारित होगी, जिसमें उच्च मूल्य विनिर्माण, गारमेंट, टॉयज, आईटी और एआई से जुड़े उद्योग स्थापित किए जाएंगे।
1: सतगढ़ी में बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क रोजगार के लिए, जहाँ रहना, खाना, आराम करना, रोजगार पाना, समग्र रूप से भोपाल बदलते समय में एक अलग प्रकार की आर्थिक समृद्धशाली राजधानी बदलने के लिए जा रहा है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा इतना बड़ा कन्वेंशन सेंटर अगर कहीं बनेगा तो भोपाल में बनेगा, और रोजगार के लिए आज मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, पूरे देश के अंदर मध्य प्रदेश वो स्थान है जहाँ सबसे कम बेरोजगार की दर रही है।
0: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज ग्वालियर में संभाग स्तरीय उन्नत कृषक संवाद सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। ये आयोजन आज शाम राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय के सभागार में आयोजित होगा। डॉक्टर यादव किसानों से संवाद कर उनके प्राकृतिक खेती के संबंधित अनुभव भी सुनेंगे। मुख्यमंत्री हाईटेक नर्सरी एवं फ्लोरिकल्चर गार्डन का भूमि पूजन भी इसी कार्यक्रम के माध्यम से करेंगे। इस हाईटेक नर्सरी और फ्लोरिकल्चर गार्डन के प्रथम चरण के कार्य के लिए सरकार द्वारा 13 करोड़ रूपये की धनराशि मंजूर की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 जुलाई को इंडोनेशिया की आधिकारिक यात्रा के दौरान इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ योग्याकार्ता स्थित प्रतिष्ठित प्रम्बानंद मंदिर का दौरा करेंगे। ये यात्रा भारत और इंडोनेशिया के बीच 1000 वर्षों से चले आ रहे गहरे सामाजिक और सांस्कृतिक संबंधों को दर्शाती है। 9वीं शताब्दी में निर्मित प्रम्बानंद इंडोनेशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर है। मूल रूप से इस परिसर में ब्रह्मा, विष्णु और शिव को समर्पित 240 छोटे बड़े मंदिर थे, और ये भारत के बाहर भी भारतीय वास्तुकला के उत्कृष्ट उदाहरणों में से एक है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यूजी 2026 परीक्षा की फीस वापसी के लिए बैंक खाता विवरण अपडेट करने की समय सीमा 7 जुलाई तक बढ़ा दी है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में एनटीए ने सूचित किया कि जिन उम्मीदवारों ने अपने बैंक खातों के विवरण की पुष्टि कर दी है, उनके लिए रिफंड प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। एनटीए ने बताया कि अब तक केवल 8,29,510 उम्मीदवारों ने ही अपने बैंक विवरण में

सुधार या अपडेट किया है। प्रश्न पत्र लीक होने के आरोपों के बाद इस वर्ष 3 मई को आयोजित परीक्षा रद्द होने के बाद एनटीए द्वारा रिफंड प्रक्रिया चलाई जा रही है। अब रुख करते हैं मौसम का। प्रदेश में मानसून जमकर बरस रहा है। आज प्रदेश के 23 जिलों में अति भारी और भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम केंद्र के अनुसार आज सागर, दमोह, बैतूल, देवास, अलीराजपुर, उमरिया, सिवनी, छिंदवाड़ा और अनूपपुर में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। वहीं रतलाम, उज्जैन, धार, शाजापुर, सीहोर, विदिशा, गुना, नर्मदापुरम, नरसिंहपुर, जबलपुर, मंडला, बालाघाट, डिंडौरी और पन्ना में भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया और शिवपुरी सहित प्रदेश के बाकी जिलों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। प्रदेश में अब तक औसत 6.4 इंच बारिश हो चुकी है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आगरमालवा में कंठाल नदी पर सुसनेर बामनिया खेड़ी के बीच बनने वाले 50 मीटर लंबे पुल का भूमि पूजन कल सांसद रोडमल नागर ने किया। नर्मदापुरम में वन महोत्सव 2026 के तहत हर्बल पार्क से चौरे घाट तक वृहद पौधरोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय भोपाल में कल से 21 दिवसीय संस्कृत रूपक निर्देशन राष्ट्रीय कार्यशाला की शुरुआत हो रही है, जिसका उद्घाटन कल सुबह 10:30 बजे भवभूति सभागृह में किया जाएगा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए तो शाम

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। 2:15 होने वाले हैं। अब दोपहर समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना। उन्होंने कहा, यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और मजबूत होगा। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से सहकारिता आंदोलन विस्तार के नए चरण में प्रवेश कर रहा है। सरकार ने कहा, डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड आभा से जोड़े गए। मुंबई में तेज वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त, भूस्खलन से मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर यातायात बाधित, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा के लिए रेड अलर्ट। यूक्रेन की राजधानी कीव में रूस के बैलिस्टिक मिसाइल हमले में 10 लोगों की मौत और 46 से ज्यादा लोग घायल। फीफा विश्व कप में इंग्लैंड ने मेक्सिको को रोमांचक मुकाबले में 3-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। और विंबलडन टेनिस में नोवाक जोकोविच पुरुष सिंगल्स और नाओमी ओसाका महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर इंडोनेशिया जा रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है, जिसमें रक्षा सहयोग, व्यापार, निवेश और ऊर्जा सुरक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग पर खास ध्यान दिया जाएगा। जकार्ता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन होगा, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक प्रम्बनन मंदिर के दर्शन के लिए योग्यकर्ता जाएंगे। भारत इस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के जीर्णोद्धार के प्रयासों में सहयोग कर रहा है, जो दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों को रेखांकित करता है। जकार्ता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
1: इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। उनकी यात्रा से भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक भागीदारी और मजबूत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और मजबूत होगा। गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज कहा कि सहकारी आंदोलन सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से

0: विस्तार के नए चरण में प्रवेश कर रहा है। सहकारिता मंत्रालय के पांचवें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर की 9 प्रमुख सहकारी समिति बनाई गई हैं।
1: सहकारिता मंत्रालय के इनिशिएटिव से कुल 9 राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाली सहकारी समिति बनाकर देश से लेकर ग्राम तक ये 9 क्षेत्रों में सहकारिता मंत्रालय को एक माला में पिरोने का काम हमने किया है।
0: श्री शाह ने किसानों से जैविक कृषि उत्पादों का उत्पादन बढ़ाने और रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों का उपयोग कम करने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि सहकारिता मंत्रालय पिछले 5 वर्षों से सहकारिता के माध्यम से समृद्धि के मंत्र का पालन कर रहा है, जिससे मंत्रालय द्वारा लाखों लोगों के जीवन में बदलाव आया है। श्री शाह ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में सहकारी प्रणाली को आधुनिक, पारदर्शी, प्रौद्योगिकी सक्षम तथा प्रतिस्पर्धी बनाने की दिशा में सराहनीय कार्य किया गया है।
1: हमने कृषि ऋण, डेयरी, उर्वरक वितरण और ग्रामीण सेवाएं, ये सभी को प्राथमिक से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने का काम किया है। सेकेंडरी और टर्सरी क्षेत्रों में भी उसको जोड़ने का काम किया है। भंडारण, उत्पादन, एक्सपोर्ट, जैविक

0: लॉजिस्टिक और हरित ऊर्जा, ये सबको एक माला में पिरोने का काम ये 5 साल में किया है।
1: ब्रिक्स देशों के मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक आज गुवाहाटी में शुरू हो गई है। 2 दिन की इस बैठक का आयोजन गृह मंत्रालय के अंतर्गत स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने किया है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के महानिदेशक अनुराग गर्ग ने कहा कि ब्रिक्स के विस्तार ने मादक पदार्थों की तस्करी और मादक द्रव्यों के सेवन सहित वैश्विक चुनौतियों से निपटने की समूह की क्षमता को मजबूत किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड, 93 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आभा से जोड़े गए हैं। ये देश की एकीकृत डिजिटल सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति है। आभा आधार कार्ड की तरह 14 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या है, जो एक व्यक्ति को व्यापक स्वास्थ्य प्रणाली से सुरक्षित रूप से जोड़ती है। एक रिपोर्ट।
2: यह प्रणाली मरीजों को डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच प्रदान करती है। इस नेटवर्क के माध्यम से रोगी संपूर्ण चिकित्सा इतिहास के साथ बीमाकर्ताओं, स्वास्थ्य सुविधाओं, डॉक्टरों और अन्य सेवाओं से जुड़ सकते हैं। सरकार का लक्ष्य है कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के माध्यम से देश के सभी मरीजों और सभी स्वास्थ्य सुविधाओं को एक ही डिजिटल नेटवर्क से जोड़ा जाए। इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के लिए पूर्णतः डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड उपलब्ध कराना है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा NEET UG 2026 की आवेदन फीस वापसी के लिए बैंक खाता विवरण अपडेट करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जुलाई कर दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में NTA ने बताया कि जिन उम्मीदवारों ने अपने बैंक खाता विवरण की पुष्टि कर दी है, उनके लिए रिफंड प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब तक केवल 8,29,510 उम्मीदवारों ने ही अपने बैंक विवरण में सुधार या अपडेट किया है। निर्वाचन आयोग ने बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों के उपचुनावों के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। बिहार में बांकीपुर, गुजरात में मंजलपुर और मध्य प्रदेश में दतिया विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे। नामांकन पत्र 13 जुलाई तक भरे जाएंगे और 14 जुलाई को नामांकन पत्रों की जाँच होगी। मतदान 30 जुलाई को होगा। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा की है। ये सीटें राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर राय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिकबराई के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। अधिसूचना कल जारी की जाएगी, जबकि नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। नामांकन पत्रों की जाँच 15 जुलाई को होगी। मतदान 24 जुलाई को और मतगणना भी उसी दिन होगी। पुरी में विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा की तैयारी अंतिम चरण में है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी सभी विभागों को वार्षिक उत्सव के लिए सभी व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।
3: दुनिया भर में मशहूर पुरी की रथ यात्रा जल्द ही होने वाली है। इसे देखते हुए उड़ीसा सरकार ने पुरी में इस भव्य उत्सव के सुचारू आयोजन के लिए व्यापक प्रशासनिक इंतजाम किए हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने सभी विभागों को निर्देश दिया है कि वे विभागों के बीच बेहतरीन तालमेल और हर इंतजाम को बहुत सावधानी से लागू करके रथ यात्रा का बिना किसी गड़बड़ी सुरक्षित और घटना मुक्त बनाए। आज सुबह पुरी में रथ यात्रा समन्वय समिति की आखिरी बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री मांझी ने इस सालाना रथ उत्सव को उड़ीसा के समृद्ध आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का एक स्थायी प्रतीक बताया, जो दुनिया भर से लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। उन्होंने महिला श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सम्मान पर खास जोर दिया और भीड़ प्रबंधन, कई स्तरों वाली सुरक्षा, ट्रैफिक कंट्रोल और दूसरी जरूरी नागरिक सेवाओं की तैयारियों का जायजा लिया। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर। जगन्नाथ।
1: इस बीच रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि इस वर्ष भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए 300 से अधिक विशेष रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी।
4: पुरी में महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ यात्रा का पावन पर्व है, उसमें 300 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई और आने वाले समय में केरलम में ओनम के फेस्टिवल के उपलक्ष्य में 100 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी।
1: महाराष्ट्र के अधिकतर हिस्सों में लगातार वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त है। भूस्खलन से मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर यातायात बाधित है। मुंबई और कोंकण क्षेत्र में बाढ़ और भूस्खलन से इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। सड़क रेल और हवाई यातायात भी प्रभावित है। पूरे राज्य में अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं। अधिकारियों ने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने SDRF में स्थिति की समीक्षा की और सभी अधिकारियों को त्वरित समन्वित कार्रवाई के निर्देश दिए। मुंबई बृहन नगर पालिका की महापौर ऋतु तावरे ने बताया है कि मोबाइल मैसेज के माध्यम से सरकार समय समय पर अलर्ट जारी कर रही है।
5: बहुत ही बड़ी बारिश और उसके साथ में हवा का वेग जो है और उसी के साथ में समुन्द्र में जो हाई टाइड चल रही है, ये तीनों के वजह से रेड अलर्ट लोगों को दिया जा रहा है। आधे आधे घंटे में हम लोग पूरी इन्फॉर्मेशन मुंबई करके लोगों के मैसेज में भेजने का काम कर रहे हैं। 1916 की नंबर जो है उसको कार्यान्वित किया है।
1: उधर गुजरात में पिछले 24 घंटों में मूसलाधार वर्षा हुई है, जिससे सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात क्षेत्रों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तेज बारिश के कारण अधिकारियों ने 6 प्रमुख बांधों को हाई अलर्ट पर रखा है। बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। मछुआरों को 9 जुलाई तक अरब सागर में न जाने की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में भारी वर्षा और कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कहा है कि अगले 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर के कुछ हिस्सों में से गुजरात, हरियाणा और पंजाब के कुछ भागों के साथ राजस्थान में आगे बढ़ने की संभावना है। वहीं आज असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पश्चिम बंगाल में तेज वर्षा की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर आज सुबह रूस के बैलिस्टिक मिसाइल हमले में 10 लोग मारे गए और 46 घायल हुए हैं। ये हमला तुर्की में होने वाले महत्वपूर्ण नाटो शिखर सम्मेलन से एक दिन पहले हुआ है, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शामिल होने की उम्मीद है। यूक्रेन की वायुसेना ने कहा है कि रूस ने हमले में बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों और ड्रोन का इस्तेमाल किया। पोडोल्स्की जिले में एक आवासीय भवन ढह गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कल चेतावनी दी थी कि खुफिया जानकारी से संकेत मिले हैं कि रूस बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता अली खामनेई की अंतिम यात्रा राजधानी तेहरान में 2 दिवसीय सार्वजनिक अंतिम दर्शन के बाद शुरू हुई, जिसमें भारी जनसमूह उमड़ पड़ा। खामनेई और युद्ध में मारे गए उनके परिवार के अन्य सदस्यों के ताबूतों को एक ट्रक में ले जाया जा रहा है। फीफा विश्व कप में आज इंग्लैंड ने मेक्सिको को 3-2 से हरा दिया और क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली। ब्राजील के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी नेमार जूनियर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। 5 बार के विश्व चैंपियन ब्राजील की राउंड 16 में कल रात नॉर्वे से 2-1 से हार का सामना करना पड़ा। विंबलडन टेनिस में सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने रूस के रोमन सफ्योलिन को हराकर पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली है। इसके साथ जोकोविच ने ऑल इंग्लैंड क्लब में अपना 106वां सिंगल्स खिताब जीता है। क्वार्टर फाइनल में जोकोविच का सामना फेलिक्स आगर एलियासिमी या एलिजांड्रो डेविडोविच फोकिना से होगा। महिला सिंगल्स में करीना मुखोवा ने अपने करियर में 3री बार विंबलडन क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। एक अन्य मुकाबले में नाओमी ओसाका ने आरेना सबालेंका को हराकर ऑल इंग्लैंड क्लब में अपने पहले क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। समग्र राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना। उन्होंने कहा, यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और मजबूत होगा। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से सहकारिता आंदोलन विस्तार के नए चरण में प्रवेश कर रहा है। सरकार ने कहा, डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड आभा से जोड़े गए। मुंबई में तेज वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा के लिए रेड अलर्ट। और फीफा विश्व कप, इंग्लैंड ने मेक्सिको को रोमांचक मुकाबले में 3-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यह समाप्त हुआ। नमस्कार।

कार्यक्रम के सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं सुनीता सिंह। गुनगुनाती हुई आती हैं फलक से बूंदे, कोई बदली तेरी पाजेब से टकराई है। जी हाँ श्रोताओं, रिमझिम बारिश का मौसम आ चुका है, धरती की प्यास बुझ गई है, हर मन का इंतजार खत्म हुआ है और मन खुशियों के गीत गुनगुना रहा है। जिंदगी की तपिश मिट गई है, तो आइए ऐसे सुहाने से मौसम में आपके मन की बात कर लें। जी हाँ, आपके मन की बात यानी आपके मन के गीत, जिन्हें आपने लिख भेजा है खतों में। और ये पहला खत मेरे हाथ में है, धमतरी से आया हुआ, छत्तीसगढ़ से। लिखने वाले श्रोता हैं रामचंद्र माखीजा काफिर, सविता, बेबी स्वाति, माही, छुटकी, शरद कुमार और इनके परिवार के सभी सदस्य, ग्राम बगबुड़वा पथरिया से नरेंद्र नेताम, कुसुम नेताम, प्रोनिका, प्रोनामिका और उत्कर्ष नेताम, इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया। ये चिट्ठी आई है चार मीनार चौक गंडई पंडरिया से दरियानामल, पार्वती मोटवानी, राजेश, रेशम मोटवानी, मुकेश भावना, सोमेश्वर यशराज। और ये खत आया हुआ है पेंड्रा छत्तीसगढ़ से। लिखने वाले हमारे श्रोता हैं दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंसीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, दिशा और लवी श्रीवास्तव। तो आप सबकी फरमाइश पर आइए सुनते हैं देवदास फिल्म का गीत। आवाजें उदित नारायण और श्रेया घोषाल की हैं, संगीत इस्माइल दरबार का और गीतकार नुसरत बद्र। बेगाना वार ऐसे वो गुजरे करीब से, जैसे कि उनको मुझसे कोई वास्ता ही नहीं।

आपकी फरमाइश का अगला गीत हमारे इन श्रोताओं की पसंद पर है। महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश तारणी, सूरज ज्योति, रियांश और गुड़िया, भाटापारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झावेंद्र कुमार वर्मा, कमर कॉलोनी बड़वाह से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य, अदिति शिवानी और मीनूराज श्रीमाली, सारणी जिला बैतूल से अमित खातरकर, निहारिका खातरकर, शिवपाल यादव, अनामिका, अवंतिका, शिवालिका, पारस मणिबाग, पंजाब राव निम्बालकर और संदीप पाटिल। और ये चिट्ठी आई हुई है मुंगेली छत्तीसगढ़ से। लिखने वाले हमारे श्रोता हैं उत्तरा कुमार दिवाकर, परमेश्वरी, योगिता, नितिन, वंशिका और उनके परिवार के सभी सदस्य। और मोटका माफी जिला खंडवा से इसी गीत को पसंद करते हैं जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम ज्योति, ललित, मनीषा, शुभम, देवी किशन, भावना, कनिका, आदित्य, मानस पटेल और मन पटेल। आप सबकी फरमाइश पर आइए सुनते हैं तमाशा फिल्म का गीत। आवाजें अलका याग्निक और अरिजीत सिंह की हैं। गीतकार हैं इरशाद कामिल और संगीतकार AR रहमान। आज कैसी हवा चली कि फिराक आंखें बेख्तियार भर आईं,

अगला गीत हमारे इन श्रोताओं की पसंद पर है, आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा और सौरभ शर्मा, भिलाईगढ़ से जगदीश देवांगन, पुष्पांजलि, जया, जाह्नवी, तृप्तेश और इनके परिवार के सभी सदस्य, छत्तीसगढ़ से मुकेश शर्मा, सरिता शर्मा, गौरव और गरिमा शर्मा, राजकोट से मधुसूदन भट्ट, आरती, पूजा, जैस्मिन और प्रयागराज भट्ट, निभोरा से अशोक देशमुख, शरद देशमुख और बबन जोशी, और बुराला खुर्द से आदिनाथ वाघ और अमोल वाघ, और लछनपुर से रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी, शिवम, सतीश और मुकेश कुमार साहू। आप सबकी फरमाइश पर आइए सुनते हैं आतिफ असलम की आवाज में कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म का नाम है अजब प्रेम की गजब कहानी। बोल इरशाद कामिल के हैं और धुन प्रीतम की। एक अदना सा करिश्मा है ये उसके इश्क का, मर गया हूं और मरने का गुमान नहीं होता।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह है।

फिल्म का नाम है ओम शांति ओम। आवाजें सोनू निगम और श्रेया घोषाल की हैं। इस गीत को सुनना चाहा है गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले और आरती जोंधले ने। इसी गीत की फरमाइश की है नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा और मोनिका नूपुर ऋषिका रॉबिन ने। और अगली चिट्ठी है प्रमिलागंज आलोट जिला रतलाम से। लिखने वाले हमारे श्रोता हैं बलवंत कुमार वर्मा, राजू बाई, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल, ज्योति और अतुल। तो आप सबकी फरमाइश पर आइए सुनते हैं

0: सच है कुछ भी नहीं, तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ।
1: अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी फरमाइश, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 जुलाई को इंडोनेशिया की आधिकारिक यात्रा के दौरान इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ योग्यकार्ता स्थित प्रतिष्ठित ब्रह्मानन मंदिर का दौरा करेंगे। ये यात्रा भारत और इंडोनेशिया के बीच 1000 वर्षों से चले आ रहे गहरे सामाजिक और सांस्कृतिक संबंधों को दर्शाती है। केंद्र सरकार ने कहा है कि 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड, 93 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाते आभा से जोड़े गए हैं। ये देश की एकीकृत डिजिटल सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति है। आभा आधार कार्ड की तरह 14 अंकों की एक विशिष्ट पहचान है जो व्यक्तियों को व्यापक स्वास्थ्य प्रणाली से सुरक्षित रूप से जोड़ती है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज भोपाल के सतगढ़ी में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क का भूमि पूजन एवं शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह पार्क औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन को गति देगा। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा UG 2026 परीक्षा की फीस वापसी के लिए बैंक खाते विवरण अपडेट करने की समय सीमा को 7 जुलाई यानी कल तक बढ़ा दिया है। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय भोपाल में कल से 21 दिवसीय संस्कृत रूपक निर्देशन राष्ट्रीय कार्यशाला शुरू हो रही है, जिसका उद्घाटन सुबह 10:30 बजे भवभूति सभागृह में होगा। प्रदेश में मानसून जमकर बरस रहा है। मौसम केंद्र भोपाल के मुताबिक आज सागर, दमोह, बैतूल, देवास, अलीराजपुर, उमरिया, सिवनी, छिंदवाड़ा और अनूपपुर में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। और भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा T20 मुकाबला कल खेला जाएगा, जो मैच भारतीय समय के अनुसार 10:00 बजे टेंट ब्रिज में शुरू होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

आकाशवाणी का ये भोपाल केंद्र है। श्रोताओं, हम आपको याद दिला दें कि आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रमों के अंतर्गत आज शाम 5:02 पर युवा श्रोता सुनेंगे आकाशवाणी भोपाल द्वारा प्रस्तुत युववाणी कार्यक्रम। फिल्म संगीत का प्रसारण समय है शाम 5:33, 6:30 और रात 8:15। आज शाम 6 बजे होगा एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। कार्यक्रम आजकल का प्रसारण होगा शाम 6:45 पर। कार्यक्रम आजकल का प्रसारण होगा शाम 6:40 पर और 6:45 पर सुनिए प्रादेशिक समाचार दर्शन। रात 8 बजे होगा कार्यक्रम सुर्खियों में पब्लिक स्पीक। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे रात 9:30 पर। इसे हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे। रविवासरी अखिल भारतीय संगीत सभा आप सुन सकते हैं रात 10 बजे और आकाशवाणी भोपाल के प्रसारण के अंतर्गत शाम 7:21 पर ग्राम सभा कार्यक्रम का प्रसारण होगा। इसमें आज किसान भाई सुनेंगे लोकगीतों का फरमाइशी क्रम लोक राय। आपको हम एक बार फिर याद दिला दें, आज शाम 6:40 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आजकल और 6:45 पर होगा प्रादेशिक समाचार दर्शन। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 188.32 मीटर्स यानी 1593 किलोहर्ट्ज़, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल, वेब्स ओटीटी और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी भोपाल है। 3:02 हो चुके हैं। मीडियम वेव पर हमारी ये सभा अब संपन्न होती है। 5 बजे अपनी सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दें, नमस्कार। इस बीच प्रसारण

0: नमस्कार। मीडियम वेव 188.32 मीटर यानी 1593 किलोहर्ट्ज़, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज़ ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। शाम के 5 बजने वाले हैं। मीडियम वेव पर अब हमारा प्रसारण आरंभ होता है। थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर पहले इंडोनेशिया के जकार्ता

पहुंचे, जहां से उन्होंने अपने तीन देशों के हिंद प्रशांत दौरे की शुरुआत की। जकार्ता हवाई अड्डे पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने उनका व्यक्तिगत रूप से स्वागत किया। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारी आंदोलन सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से विस्तार के एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है। सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सहकारी बैंक आज लगभग 27 लाख करोड़ रुपए का कारोबार करते हैं, जो देश की अर्थव्यवस्था में इस क्षेत्र के बढ़ते योगदान को दर्शाता है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज ग्वालियर में संभाग स्तरीय उन्नत कृषक संवाद सम्मेलन में शामिल होंगे। ये आयोजन आज शाम राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय के सभागार में आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री हाईटेक नर्सरी एवं फ्लोरिकल्चर गार्डन का भूमि पूजन भी करेंगे। विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के लिए 17वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2024-25 का पुरस्कार वितरण समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा NEET UG 2026 परीक्षा की फीस वापसी के लिए बैंक खाता विवरण अपडेट करने की समय सीमा 7 जुलाई तक बढ़ा दी है। प्रदेश में मानसून जमकर बरस रहा है। मौसम केंद्र भोपाल के मुताबिक आज सागर, दमोह, बैतूल, देवास, अलीराजपुर, उमरिया, सिवनी, छिंदवाड़ा और अनूपपुर में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। और भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा T20 मुकाबला कल खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 10 बजे टेंट ब्रिज में शुरू होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

खुद को उम्मीदों से सजाना ज़रूरी है, ज़िंदगी खुशनुमा बनाना ज़रूरी है, हालात चाहे कुछ भी हो लेकिन हमेशा हंसना मुस्कुराना ज़रूरी है। नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका कार्यक्रम में युवाणी में। मैं हूँ आपकी अपनी रेडियो दोस्त पूजा पांडे। दोस्तों, आज के कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं वन महोत्सव सप्ताह और वर्ल्ड जूनोसस डे के बारे में। साथ ही जानेंगे क्या है फिन टॉक्सिसिटी और कैसे युवाओं को इससे बचना चाहिए, और साथ ही सुनेंगे आपके मनपसंदीदा फिल्मी गीत। आइए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत इस मज़ेदार से गीत के साथ।

दोस्तों आप सुन रहे थे गीत फिल्म प्रिंस से, जिसमें स्वर दिए थे आतिफ असलम और श्रेया घोषाल ने। गीतकार हैं समीर और संगीत है सचिन गुप्ता का। आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब बात वन महोत्सव की करते हैं। दोस्तों वन महोत्सव सप्ताह भारत का एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण राष्ट्रीय वृक्षारोपण उत्सव है। इसे हर साल 1 जुलाई से 7 जुलाई तक पूरे देश में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। वन महोत्सव का सीधा मतलब है पेड़ों का त्यौहार, जिसका मेन मोटिव लोगों को प्रकृति से जोड़ना और वनों की कटाई को रोककर ज़्यादा से ज़्यादा नए पौधे लगाना है। बात करें इसकी शुरुआत की तो साल 1947 में देश की आज़ादी के बाद भारत में बढ़ती आबादी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जंगलों को बहुत तेज़ी से काटा जा रहा था। पेड़ों की इस अंधाधुंध कटाई की वजह से ज़मीन का बंजर होना, समय पर बारिश नहीं होना, सूखा और खाने की कमी जैसी समस्याएं देश में होने लगी थी। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए साल 1950 में भारत की तत्कालीन केंद्रीय खाद्य और कृषि मंत्री डॉक्टर कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी जी ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया और 1950 के पहले सप्ताह में, जुलाई के पहले सप्ताह में दिल्ली में एक विशाल वृक्षारोपण अभियान का आयोजन किया और तभी से हर साल देश भर में 1 जुलाई से 7 जुलाई को एक पूरा सप्ताह एक त्यौहार की तरह मनाया जाने लगा। दोस्तों आइए अब जानते हैं कि भारत में वन महोत्सव सप्ताह कैसे सेलिब्रेट किया जाता है। बात करें एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की तो इस सप्ताह बच्चे अपनी स्कूल कैंपस में छोटे छोटे पौधे लगाते हैं। इसके अलावा पर्यावरण पर एक्ट, पोस्टर मेकिंग और एसी राइटिंग जैसे प्रोग्राम्स भी कंडक्ट किए जाते हैं। बात करें सरकारी विभागों की तो भारत सरकार और राज्य की वन विभाग द्वारा आम जनता को मुफ्त या फिर बहुत कम दामों पर पौधे बांटे जाते हैं। वन विभाग द्वारा बंजर जमीनों, पहाड़ी

भरपूर ऑक्सीजन दे सके। दूसरा है ग्लोबल वार्मिंग और तापमान को रोकना। वन महोत्सव के जरिए नए जंगल तैयार किए जाते हैं जो धरती को ठंडक देते हैं और मौसम के चक्र जैसे समय पर बारिश होना जैसे फेनोमेना को ठीक रखते हैं। दोस्तों इसमें अगला लेकिन सबसे जरूरी है जंगली जानवरों के घर को बचाना। इस उत्सव का एक मुख्य लक्ष्य वनों का दायरा बढ़ाना भी है ताकि वन्य जीवों को उनका प्राकृतिक घर और भोजन मिल सके और वो सुरक्षित रह सके। साथियों इस तरह हमने जाना वन महोत्सव सप्ताह के बारे में। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

दोस्तों आप सुन रहे थे फिल्म ड्रीम गर्ल से, जिसमें स्वर थे नक्काश अजीज़, जोनिता गांधी और मीट ब्रोस के। गीतकार हैं कुमार और संगीत भी है मीट ब्रोस का। दोस्तों क्या आप जानते हैं आज है वर्ल्ड ज़ूनोसिस डे। आइए पहले तो जानते हैं ज़ूनोसिस होता क्या है। दरअसल विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार इंसानों में होने वाले सभी संक्रामक रोगों में से लगभग 75% से ज़्यादा बीमारियां जानवरों से इंसानों के बीच में फैलती हैं, जैसे रेबीज, लाइम रोग, इबोला, सार्स। इसके अलावा ये गिनती WHO के अनुसार 200 से भी ज़्यादा है। ऐसे में फ्रांसीसी बायोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट लुई पास्चर ने एक महान खोज की थी। दरअसल 6 जुलाई 1985 को लुई पास्चर ने रेबीज वायरस से संक्रमित एक बच्चे को पहला सफल टीका यानी कि वैक्सीन लगाकर उसकी जान बचाई थी, जो कि जानवरों से इंसानों में फैलने वाली एक जानलेवा बीमारी

होती है। इसी ऐतिहासिक चिकित्सा सफलता की याद में और इंसानों, जानवरों और पर्यावरण के आपसी संबंधों को सुधारने के लिए ये दिन दुनिया भर में मनाया जाता है। बात करें इस दिन के उद्देश्य की, तो सबसे पहला तो है बीमारियों के प्रति जागरूकता बढ़ाना। आम जनता को जूनोटिक बीमारियों जैसे रेबीज, बर्ड फ्लू इत्यादि के खतरे और उनके लक्षणों के बारे में एजुकेट करना। दूसरा है वन हेल्थ दृष्टिकोण को बढ़ावा देना। इंसानों, जानवरों और पर्यावरण के स्वास्थ्य को एक दूसरे से जुड़ा मानकर सभी स्तरों पर मिलकर काम करने के महत्व को समझना और समझाना। तीसरा है बचाव और स्वच्छता सिखाना। जानवरों के संपर्क में आने के बाद सही तरीके से हाथ धोने और पालतू पशुओं को समय समय पर टीकाकरण के आदतों को बढ़ावा देना है। दोस्तों, इसी में अगला है महामारी को रोकना। शुरुआती स्तर पर ही जानवरों में फैलने वाले संक्रमणों की पहचान करना, ताकि उन्हें इंसानों में फैलने और बड़ी महामारी बनने से पहले ही रोका जा सके। साथियों, वक्त है अब रोजगार सूचना का। IBPS द्वारा प्रोबेशनरी ऑफिसर एवं मैनेजमेंट ट्रेनी के 6715 पद हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में किसी भी मान्यता प्राप्त महाविद्यालय से ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। आवेदन की अंतिम तिथि 21 जुलाई 2026 है और अधिक जानकारी के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

दोस्तों, अभी आपने सुना गीत फिल्म दगाबाज 2 से, जिसमें स्वर थे राहत फ़तेह अली खान और श्रेया घोषाल के। गीतकार हैं समीर अंजान और संगीत है साजिद वाजिद का। आइए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अब जानते हैं फिन टॉक्सिसिटी के बारे में। आखिर फिन टॉक्सिसिटी क्या है और इससे युवाओं को क्यों बचना चाहिए? एक्चुअली फिन या फिर फाइनेंशियल टॉक्सिसिटी उसे कहते हैं जब किसी इंसान या उसके परिवार को गंभीर बीमारी जैसे कैंसर या दिल की बीमारी जैसे रोग हो जाते हैं और उसकी इलाज की वजह से भारी आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है, यानी कि महंगी दवाओं, अस्पताल के खर्चे और बार बार डॉक्टर के पास जाने की वजह से पेशेंट की सारी सेविंग्स खत्म हो जाती हैं। वो कर्ज के जाल में फंसने लग जाते हैं, जिसे फाइनेंशियल ट्रैप भी कहते हैं। आसान शब्दों में कहें तो ये बीमारी के शारीरिक दर्द के साथ साथ मिलने वाला वो गहरा आर्थिक और मानसिक दर्द है जो पूरे परिवार के बजट और भविष्य को पूरी तरह तबाह कर देता है। दोस्तों, इस फाइनेंशियल ट्रैप से बचने के लिए युवा ये आसान तरीके अपना सकते हैं, जैसे सही हेल्थ इंश्योरेंस लें। बीमारी के खर्चे से बचने के लिए खुद का एक पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर लें। इससे बहुत कम पैसों में आपका टोटल बीमा बढ़कर 20 लाख तक पहुंच जाता है। खासकर युवा वर्ग, आप जितनी जल्दी हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, आगे चल के वो उतना ही ज़्यादा मददगार होता है। दूसरा है इमरजेंसी फंड बनाए रखना। अचानक आने वाली मुसीबत या फिर बीमारी के लिए अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा हमेशा अलग बचा कर रखें, ताकि ज़रूरत पड़ने पर इसे तुरंत निकाल कर अस्पताल या फिर दवाओं के खर्च में इस्तेमाल किया जा सके। दोस्तों, इसमें अगला है क्रिटिकल इलनेस कवर। कैंसर या फिर दिल की बीमारी जैसे गंभीर बीमारियों का इलाज बहुत लंबा और महंगा होता है। इसके लिए अपनी पॉलिसी के साथ क्रिटिकल इलनेस कवर ज़रूर लें। बीमारी का पता चलते ही बीमा कंपनी आपको एक बड़ा अमाउंट दे देती है, जिससे आप अस्पताल के साथ बाहर का खर्चा आराम से संभाल सकते हैं। वहीं सरकारी योजनाओं का इस्तेमाल करें। सरकार द्वारा चलाई जा रही स्वास्थ्य योजनाओं का सही जानकारी होना सबके लिए बहुत ज़रूरी है। आप हो सके तो सरकार द्वारा चलाई जा रही स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ उठाएं। साथ ही आप जन औषधि केंद्र से बेहद कम कीमत में दवाइयां ले सकते हैं। इसके अलावा कई राज्य स्तरीय योजनाओं का भी आप फायदा ले सकते हैं। साथियों, सुनेंगे कार्यक्रम का आखिरी गीत, लेकिन उससे पहले मैं आपको फिर एक बार रोजगार सूचना दे दूं। IBPS द्वारा प्रोबेशनरी ऑफिसर एवं मैनेजमेंट ट्रेनी के 6715 पद हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में किसी भी मान्यता प्राप्त महाविद्यालय से ग्रेजुएशन का होना अनिवार्य है। आवेदन की अंतिम तिथि 21 जुलाई 2026 है और अधिक जानकारी के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। वक्त हो चला है कार्यक्रम के आखिरी गीत का, जिसमें स्वर हैं अर्को के, गीतकार भी और संगीतकार भी हैं अर्को। आइए सुनते हैं।

दोस्तों, आपने सुना गीत फिल्म बार बार देखो से, जिसमें स्वर, गीतकार और संगीतकार हैं अर्को प्रावो मुखर्जी। साथियों, आज के कार्यक्रम में हमने जाना वन महोत्सव सप्ताह के बारे में, वर्ल्ड जूनोसिस डे के बारे में और साथ ही बात की फाइनेंशियल टॉक्सिसिटी की। उम्मीद है आपको कार्यक्रम पसंद आया होगा और काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला होगा। वक्त हो चला है आप सबसे विदा लेने का। मुलाकात होगी आपसे अगली बार। तब तक के लिए अपनी रेडियो दोस्त पूजा पांडे को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

युवा श्रोता सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युववाणी। हमारा आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति था। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है।

0: पुलिस?
1: मिस सीमा
0: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों? लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1,00,000 दो, बच जाओगे।
0: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
0: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: सुनते ही उफ, ये ट्रैफिक।
1: आकाशवाणी है ना,
2: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
1: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
0: शाम सुहानी हो,
3: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना।
1: घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
0: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
1: सफर में
0: आपके साथ
1: आकाशवाणी।
4: दूरदर्शन की डायरेक्ट टू होम सेवा,
5: डीडी डायरेक्ट,
4: निशुल्क, न केबल का झंझट, न बार बार हर महीने भुगतान की समस्या।
5: डायरेक्ट टू होम सेवा बिल्कुल मुफ्त है।
4: स्पष्ट आवाज, सुंदर तस्वीर,
5: साथ में आकाशवाणी के 10 लोकप्रिय चैनल।
4: आज ही करें कनेक्ट
5: दूरदर्शन की डीटीएस सेवा, डीडी डायरेक्ट।
6: कृषकों की खेती को उन्नतशील बनाने के लिए प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी सुनिए शाम 7:30 पर आकाशवाणी शिवपुरी से 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। इसमें हमारे कृषक भाई सुन पाएंगे नित नई बातचीत। तो सुनते रहिए किसान वाणी शाम 7:30 आकाशवाणी शिवपुरी से।

0: ये जवानी है दीवानी। आइए सुनते हैं इस फिल्म का गीत। विशाल दिल्लानी और रेखा भारद्वाज की आवाज़ है, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल हैं और तर्ज बनाई है प्रीतम ने।
1: साहेबान कदरदान मेहरबान, दिल थाम के बैठिए क्योंकि अब आपके सामने तशरीफ ला रही है आगरा की अजीम फनकारा मलिका हुस्न नूर नजर मोहतरमा मोहिनी।

अल्तमश फरीदी और शादा फरीदी की आवाज़ में आप सुन रहे थे मिकी वायरस फिल्म का ये प्यारा सा गीत। मनोज यादव की बोल थे और संगीत से सजाया था हनीफ शेख ने।

कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म जहर से। श्रेया घोषाल की प्यारी सी आवाज़ है, सईद कादरी के बोल हैं और तर्ज बनाई है रूप कुमार राठौर ने।

कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं देव कोहली का लिखा हुआ गीत, संगीत आनंद राज आनंद का है, फिल्म का नाम है किस्मत और खूबसूरत आवाज़ सुनिधि चौहान की।

खुशखबरी, जी हाँ, आकाशवाणी शिवपुरी हुई अब हाईटेक। जी हाँ, आप अब हमें सुन सकते हैं अपने एंड्रॉइड और आईफोन दोनों प्लेटफॉर्म पर एक साथ कहीं भी। प्रसारण के समय जब जी चाहे तब सुनिएगा। प्ले स्टोर से न्यूज ऑन AIR ऐप को डाउनलोड करें और रेडियो ऑप्शन में जाएं, मध्य प्रदेश में आकाशवाणी शिवपुरी यानी कि AIR शिवपुरी को सिलेक्ट करें और सुने अपने एंड्रॉइड पर पूरी दुनिया में जब चाहें उस वक्त।

0: दूरदर्शन की डायरेक्ट टू होम सेवा
1: डीडी डायरेक्ट
0: निशुल्क, न केबल का झंझट, न बार बार हर महीने भुगतान की समस्या।
1: डायरेक्ट टू होम सेवा बिल्कुल मुफ्त है।
0: स्पष्ट आवाज, सुंदर तस्वीर,
1: साथ में आकाशवाणी के 10 लोकप्रिय चैनल।
0: आज ही करें कनेक्ट
1: दूरदर्शन की डीटीएस सेवा डीडी डायरेक्ट।
2: कृषकों की खेती को उन्नतशील बनाने के लिए प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी सुनिए शाम 7:30 पर आकाशवाणी शिवपुरी से 100.2 मेगाहर्ट्ज पर। इसमें हमारे कृषक भाई सुन पाएंगे नित नई बातचीत। तो सुनते रहिए किसान वाणी शाम 7:30 आकाशवाणी शिवपुरी से।

0: सुनिए रोजाना सुबह 7:45 पर। इसमें आपको मिलेंगी समसामयिक जानकारी प्रतिदिन।
1: देश का प्रसारण है।

0: बधाई हो, आपकी बीवी प्रेग्नेंट है।
1: सच?
0: हाँ हाँ सच। लेकिन इस खुशखबरी के साथ एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है आपके कंधों पर। आपको माँ और उसके होने वाले बच्चे दोनों की सेहत का ख्याल रखना होगा और जल्दी से जल्दी HIV की जांच भी करवाना, क्योंकि HIV का संक्रमण गर्भ के दौरान माँ से बच्चे को भी हो सकता है।
1: डॉक्टर, अगर HIV पॉजिटिव आए
0: तो बिना कोई देरी किए ART केंद्र से ART ट्रीटमेंट लो, ताकि समय पर माँ और बच्चे दोनों को सही केयर दी जा सके।
1: डॉक्टर, हम आज ही जाकर HIV की जांच कराते हैं।
0: और इस बारे में अगर कोई भी जानकारी लेनी हो तो मुझे या फिर 1097 पर कॉल कर लेना।
2: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कुछ देर पहले इंडोनेशिया के जकार्ता पहुंचे हैं, जहां उन्होंने अपने तीन देशों के हिंद प्रशांत दौरे की शुरुआत की। जकार्ता हवाई अड्डे पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने उनका व्यक्तिगत रूप से स्वागत किया। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज राष्ट्रीय राजमार्ग माल परिवहन प्रबंधन लिमिटेड की समीक्षा की। बैठक में देशभर में बनाए जा रहे बहुमाध्यम माल परिवहन पार्क, रोपवे और राजमार्गों के किनारे यात्रियों के लिए विकसित की जा रही सुविधाओं की प्रगति की समीक्षा भी की गई। राज्य सरकार इसी माह समान नागरिक संहिता UCC लागू करने की दिशा में अग्रसर है। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने आज जनसंघ के संस्थापक और प्रखर राष्ट्रवादी चिंतक डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम के बाद कहा कि एक देश एक विधान एक निशान एक प्रधान के संकल्प को साकार करने का ये एक प्रयास है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा NEET UG 2026 की परीक्षा की फीस वापसी के लिए बैंक खातों का विवरण अपडेट करने की समय सीमा 7 जुलाई यानी कल तक बढ़ा दी है। शौर्य स्मारक भोपाल में कल आदिवासी क्रांतिवीर स्मृति महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में देश के 50 से ज्यादा वक्ता काव्य गोष्ठी के माध्यम से आदिवासी क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। और ब्राजील के विश्व कप से बाहर होने के बाद दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी नेमार जूनियर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। 5 बार के विश्व चैंपियन ब्राजील को कल रात नॉर्वे से 2-1 से हार का सामना करना पड़ा था। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। शाम के 6 बज चुके हैं। लीजिए अब सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में आज शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। स्थानीय इंडोनेशियाई समुदाय और प्रवासी भारतीय समुदाय ने प्रधानमंत्री मोदी का पारंपरिक भारतीय और इंडोनेशियाई प्रस्तुतियों के साथ भव्य और उत्साहपूर्ण स्वागत किया। प्रधानमंत्री श्री सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता गए हैं। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है। जकार्ता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन होगा, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक प्रम्बनन मंदिर के दर्शन के लिए योग्यकर्ता जाएंगे। संदीप दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ 3रे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा है कि तीनों देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से सहकारी आंदोलन एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है। सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में श्री शाह ने कहा कि प्रत्येक क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली 5 सहकारी समितियों को मान्यता देने के लिए एक रैंकिंग ढांचा घोषित किया गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज राष्ट्रीय राजमार्ग माल परिवहन प्रबंधन लिमिटेड की समीक्षा बैठक की। बैठक में देश भर में बनाए जा रहे बहुमाध्यम माल परिवहन पार्क, रोपवे और राजमार्गों के किनारे यात्रियों के लिए विकसित की जा रही सुविधाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। श्री गडकरी ने कहा कि इससे सड़क, रेल और अन्य परिवहन साधनों के बीच बेहतर संपर्क स्थापित होगा। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि तकनीक आधारित द्विभाषी प्रबंधन शिक्षा से देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच शिक्षा की दूरी कम करने में मदद मिलेगी। नई दिल्ली से भारतीय प्रबंध संस्थान उदयपुर के नए ऑनलाइन द्विभाषी व्यवसाय प्रशासन स्नातक पाठ्यक्रम के उद्घाटन समारोह में उन्होंने कहा कि द्विभाषी व्यवस्था के कारण भारतीय प्रबंध संस्थानों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचेगा। मौसम विभाग ने आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। आज असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पश्चिम बंगाल में तेज बारिश की संभावना है। पश्चिम बंगाल और सिक्किम में बिजली और तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। अगले 3 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर के कुछ हिस्सों से गुजरात, हरियाणा और पंजाब के कुछ भागों के साथ राजस्थान में आगे बढ़ने का अनुमान है। उधर महाराष्ट्र के अधिकतर हिस्सों में लगातार वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त है। मुंबई और कोंकण क्षेत्र में बाढ़ और भूस्खलन से इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई हैं तथा सड़क, रेल और हवाई परिवहन में भारी व्यवधान देखा जा रहा है। पूरे राज्य में अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं। बॉम्बे शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 521 अंक बढ़कर 78,285 पर बंद हुआ। निफ्टी 160 अंक की बढ़त के साथ 24,430 पर दर्ज हुआ। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में देर रात 12:30 बजे पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा। एक अन्य मुकाबले में सुबह 5:30 बजे अमेरिका का सामना बेल्जियम से होगा। इससे पहले इंग्लैंड ने मैक्सिको को और नॉर्वे ने ब्राजील को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: प्रेस वार्ता आयोजित की। इस दौरान ऊर्जा और ऑटोमोबाइल क्षेत्र के विशेषज्ञों ने E20 ईंधन से जुड़े सवालों का जवाब दिया। आज के कार्यक्रम में हम जानेंगे कि आखिर E20 ईंधन है क्या, इसे लेकर कौन कौन से भ्रम फैलाए जा रहे हैं और उनके पीछे का सच क्या है, और ये पहल भारत की ऊर्जा सुरक्षा रणनीति में किस तरह महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। श्रोताओं, हाल ही में E20 कार्यक्रम को लेकर एक दावा काफी चर्चा में रहा। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि सरकार ने उच्चतम न्यायालय में E20 कार्यक्रम को केवल एक प्रयोग बताया है और इसका असर अभी देखा जाना बाकी है, लेकिन बाद में भारत के अटॉर्नी जनरल के कार्यालय ने इस दावे को पूरी तरह गलत बताया और स्पष्ट किया कि उच्चतम न्यायालय में सरकार की ओर से ऐसा कोई बयान नहीं दिया गया था। अदालत में सुनवाई एथेनॉल के आवंटन से जुड़े मामलों के हस्तांतरण पर हुई थी, जो अलग अलग उच्च न्यायालयों में लंबित है, न कि E20 कार्यक्रम की उपयोगिता या उसकी सफलता पर। श्रोताओं, ये मामला इकलौता नहीं है, ऐसे कई दावे और भ्रामक खबरें खूब सुर्खियां बटोर रही हैं। तो आखिर E20 को लेकर फैले इन दावों में कितनी सच्चाई है, आइए एक एक करके इन मिथकों और उनके पीछे के तथ्यों को समझते हैं।
1: सबसे पहले बात माइलेज की। अक्सर कहा जाता है कि E20 से गाड़ी का माइलेज 30% तक कम हो जाता है, लेकिन विशेषज्ञों के अनुसार ये बात सही नहीं है। असल में माइलेज इस बात पर ज्यादा निर्भर करता है कि गाड़ी कैसे चलाई जा रही है और वाहन का रख रखाव कैसा है। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि E20 इस्तेमाल करने पर वाहन की वारंटी खत्म हो जाएगी और बीमा का दावा स्वीकार नहीं होगा, लेकिन वाहन कंपनियों और बीमा क्षेत्र ने स्पष्ट किया है कि तय मानकों के अनुसार E20 का इस्तेमाल करने से वारंटी या बीमा पर कोई असर नहीं पड़ता। सोशल मीडिया पर यह दावा भी किया जाता है कि गन्ने का रस सीधे पेट्रोल में मिला दिया जाता है, लेकिन ये पूरी तरह गलत है। ईंधन में इस्तेमाल होने वाला एथेनॉल सीधे गन्ने का रस नहीं होता, इसे गन्ने के रस, शीरे, टूटे हुए चावल और मक्का जैसे कच्चे पदार्थों के औद्योगिक प्रक्रिया के बाद तैयार किया जाता है। इसके बाद गुणवत्ता जाँच पूरी होने पर ही इसे पेट्रोल में मिलाया जाता है। एक और दावा है कि 1 लीटर एथेनॉल बनाने में 10,000 लीटर पानी खर्च होता है। विशेषज्ञों के अनुसार ये भी सही नहीं है। एथेनॉल संयंत्र में 1 लीटर एथेनॉल बनाने के लिए केवल लगभग 3 से 5 लीटर प्रसंस्कृत पानी का उपयोग होता है। हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो भी वायरल हुए जिनमें दावा किया गया कि E20 में चीनी होने के कारण चींटियां और मधुमक्खियां वाहन के फ्यूल टैंक के पास जमा हो जाती हैं। लेकिन विशेषज्ञों ने इसे भी गलत बताया है। उनका कहना है कि ईंधन में इस्तेमाल होने वाले इथेनॉल में कोई चीनी नहीं बचती, इसे पूरी तरह शुद्ध करने के बाद ही पेट्रोल में मिलाया जाता है, इसलिए E20 और चींटियों या दूसरे कीड़ों के बीच किसी तरह का वैज्ञानिक संबंध नहीं है। एक और भ्रम यह है कि इथेनॉल पानी सोख लेता है, जिससे ईंधन और फ्यूल टैंक खराब हो जाते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि किसी भी वाहन के फ्यूल टैंक में पानी जाना ठीक नहीं होता, चाहे उसमें सामान्य पेट्रोल हो या E20। आधुनिक वाहन में इसे रोकने के लिए पहले से ही डिजाइन और सुरक्षा प्रबंध किए जाते हैं।
0: श्रोताओं, E20 को लेकर सबसे बड़ा सवाल पुराने वाहनों को लेकर उठाया जाता है। कई लोगों के मन में ये आशंका रहती है कि क्या 2023 से पहले बनी गाड़ियों में E20 ईंधन का इस्तेमाल सुरक्षित है। हाल ही में आयोजित प्रेस वार्ता में मारुति सुजुकी के कॉरपोरेट मामले के वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी राहुल भारती ने इसी सवाल का जवाब दिया। उन्होंने बताया कि E20 लागू करने से पहले पुराने वाहनों पर भी व्यापक परीक्षण किए गए थे। आइए सुनते हैं कि उन्होंने क्या बताया।
2: इंडिया मैंडेटेड, भारत में वर्ष 2023 से E20 ईंधन को ध्यान में रखकर गाड़ियों के निर्माण की व्यवस्था लागू की गई। उससे पहले E10 के हिसाब से गाड़ियां बनती थी, इसलिए 2023 के बाद बनी नई गाड़ियों और E20 ईंधन को लेकर किसी तरह की चिंता की बात नहीं है। लोगों के मन में सवाल ज्यादा उन गाड़ियों को लेकर है जो 2023 से पहले बनी थी। क्या उनमें E20 ईंधन इस्तेमाल किया जा सकता है? इसका सीधा जवाब है कि वाहन बनाने वाली कंपनियां अपनी गाड़ियों की हर स्तर पर अच्छी तरह जांच और परीक्षण करती हैं। गाड़ियों को इस तरह बनाया जाता है कि उनमें सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाए। हमने 2023 से पहले बनी E10 गाड़ियों पर भी E20 ईंधन के साथ सभी जरूरी परीक्षण किए हैं। इन परीक्षणों में इंजन पुर्जों की घिसाई, जंग लगने या गाड़ी की उम्र पर किसी तरह का नुकसान नहीं पाया गया, इसलिए हमारे परीक्षणों में ऐसी कोई बात सामने नहीं आई जिससे चिंता की जरूरत हो।
0: श्रोताओं, आज के समय में ऊर्जा सुरक्षा किसी भी देश की आर्थिक और रणनीतिक मजबूती का महत्वपूर्ण

0: आधार बन चुकी है। हाल के पश्चिम एशिया संकट के दौरान भी दुनिया के कई देशों में पेट्रोल और ईंधन की कीमतों में तेज बढ़ोतरी देखने को मिली, लेकिन भारत में पेट्रोल की कीमतों में बहुत बड़ी उथल पुथल नहीं हुई। इसका एक बड़ा कारण ये रहा कि भारत ने पिछले कुछ वर्षों में ऊर्जा के क्षेत्र में केवल आयात पर निर्भर रहने के बजाय ऊर्जा के स्रोतों में विविधता लाने और आत्मनिर्भरता बढ़ाने की दिशा में लगातार काम किया। पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण भी इसी व्यापक रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम यानी EBP को आइए हम विस्तार से समझते हैं।
1: भारत अपनी जरूरत का लगभग 88.5% कच्चा तेल विदेशों से आयात करता है। ऐसे में दुनिया में कहीं भी युद्ध, तनाव या आपूर्ति में रुकावट का असर भारत पर भी पड़ सकता है। यही कारण है कि ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए भारत ने एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को अपनी रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया है। इस कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 2003 में हुई। वर्ष 2013-14 में पेट्रोल में एथेनॉल की हिस्सेदारी 1.5% से भी कम थी, जो वैज्ञानिक परीक्षणों के बाद वर्ष 2025-26 में बढ़कर 20% पहुँच गई है। इस अवधि में एथेनॉल की खरीद करीब 38 करोड़ लीटर से बढ़कर 1200 करोड़ लीटर से अधिक होने का अनुमान है। वहीं देश की उत्पादन क्षमता वर्ष 2014 के 421 करोड़ लीटर से बढ़कर वर्ष 2026 में लगभग 2000 करोड़ लीटर हो गई है। वर्ष 2014-15 से मई 2026 तक इस कार्यक्रम से देश ने 1,90,000 करोड़ रुपए से अधिक की विदेशी मुद्रा बचाई है। साथ ही 310 लाख मीट्रिक टन से अधिक कच्चे तेल की जरूरत कम हुई, लगभग 930 लाख मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी आई और गन्ना, मक्का तथा चावल से बनने वाले एथेनॉल की बढ़ती मांग से किसानों के लिए भी आय के नए अवसर बने हैं। भारत इस दिशा में अकेला नहीं है। अमेरिका, ब्राजील, जापान, कनाडा, थाईलैंड और यूरोपीय देश भी वर्षों से एथेनॉल मिश्रित ईंधन का उपयोग कर रहे हैं। जापान ने भी चरणबद्ध तरीके से एथेनॉल मिश्रित ईंधन को अपनाया है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: श्रोताओं, भारत में एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को केवल एक वैकल्पिक ईंधन के रूप में नहीं, बल्कि ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम करने की दीर्घकालिक रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। इन्हीं विषयों पर हाल ही में आयोजित प्रेस वार्ता में ऊर्जा क्षेत्र की विशेषज्ञ और इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक वर्तिका शुक्ला ने विस्तार से जानकारी दी। आइए सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा।
2: एथेनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल।
3: पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने का फैसला एक दिन में नहीं लिया गया, इसे सोच समझकर वैज्ञानिक तरीके और चरणबद्ध ढंग से आगे बढ़ाया गया। साल 2013-14 में पेट्रोल में करीब 1.5% एथेनॉल मिलाया जाता था। इसके बाद धीरे धीरे इसे बढ़ाकर 20% तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया, जो दिसंबर 2025 में पूरा हुआ। खासकर 2018 के बाद इस कार्यक्रम को तय योजना के तहत आगे बढ़ाया गया। इस पर सभी संबंधित पक्षों से चर्चा की गई। ऑटोमोबाइल कंपनियों और जांच करने वाली संस्थाओं ने इसकी अच्छी तरह जांच और परीक्षण किए। दुनिया के कई देश भी कार्बन उत्सर्जन कम करने और ईंधन को ज्यादा पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए इसी तरह के कदम उठा रहे हैं। हाल में पश्चिम एशिया में आए संकट के दौरान भी इसका फायदा देखने को मिला। पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने से कच्चे तेल के आयात की जरूरत कुछ कम हुई और देश भर में लोगों को ईंधन की उपलब्धता बनाए रखने में मदद मिली।
0: एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम केवल पेट्रोल में एक नया ईंधन मिलाने की पहल नहीं है, ये कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम करने, ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत बनाने, प्रदूषण घटाने और किसानों के लिए नए अवसर तैयार करने की दिशा में भारत की एक दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा है। श्रोताओं, आज के विश्लेषण में बस इतना ही। नमस्कार। इस कार्यक्रम को तैयार किया था हमारे सहयोगी अनिकेत ने, तकनीकी सहयोग अरुणदीप सिंह।
4: इयम् आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वस्य त्रिदेशीय हिंद प्रशांत प्रवासस्य प्रथमे चरणे इंडोनेशिया देशस्य जकार्तायां सम्प्राप्तवान्। केन्द्रीय गृह सहकारिता मंत्री अमित शाह अवदत् यत् सहकार आंदोलनं

0: आइए सुनते हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत से सजा हुआ गीत, बोल हैं आनंद बख्शी के, आवाज मोहम्मद रफी की और फिल्म का नाम महबूब की मेहंदी।
1: जो चिलमन है

0: आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम आजकल।
1: प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी भोपाल के कार्यक्रम आजकल में आज का विषय है ड्रग माफिया पर त्रिस्तरीय वार, पहचान, प्रहार और पूर्ण सफाया। आलेख डॉक्टर मयंक चतुर्वेदी का है। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का।

0: भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का सपना तभी साकार हो सकता है जब देश की युवा शक्ति सुरक्षित, स्वस्थ और उत्पादक बनी रहे। यही कारण है कि केंद्र सरकार ने अब नशे के खिलाफ लड़ाई को केवल कानून व्यवस्था का विषय न मानकर राष्ट्रीय सुरक्षा, सामाजिक स्थिरता और भविष्य की पीढ़ियों की रक्षा का अभियान बना दिया है। इसी सोच के साथ जारी मादक पदार्थ नियंत्रण विजन डॉक्यूमेंट 2026-29 ये संकेत देता है कि अब कार्रवाई का लक्ष्य पूरे नार्को इकोसिस्टम को जड़ से खत्म करना है। पिछले कुछ वर्षों में ये साफ हुआ है कि ड्रग्स कारोबार के तार आतंकवाद, हवाला, संगठित अपराध, सीमा पार तस्करी और डिजिटल अपराधों से जुड़ चुके हैं। ऐसे में यदि कार्रवाई केवल छोटे तस्करों तक सीमित रहे तो समस्या का समाधान संभव नहीं है। सरकार ने इसी कमजोरी को पहचानते हुए अब डिटेक्ट, डिसरप्ट और डिस्ट्रॉय का नया मंत्र दिया है। मोदी सरकार की ये कार्यप्रणाली बताती है कि पहले पूरे नेटवर्क की पहचान होगी, फिर उसकी सप्लाई चेन और वित्तीय तंत्र को तोड़ा जाएगा और अंततः पूरे कार्टेल का स्थायी खात्मा किया जाएगा। इस नई नीति की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें अपराधियों के साथ साथ उनके आर्थिक ढांचे को भी निशाना बनाया गया है। वस्तुतः अब केवल मादक पदार्थ जब्त कर लेना पर्याप्त नहीं माना जाएगा, हवाला नेटवर्क, क्रिप्टो करेंसी के जरिए होने वाले लेन देन और डार्क नेट पर संचालित कारोबार, बैंक खातों तथा अवैध संपत्तियों तक कार्रवाई का दायरा बढ़ाया गया है। आज ड्रग तस्करी का स्वरूप भी तेजी से बदल रहा है। ड्रोन के माध्यम से सीमा पार खेप पहुंचाना, समुद्री मार्गों का इस्तेमाल, कंटेनर तस्करी, ऑनलाइन नेटवर्क और डार्क वेब के जरिए अवैध व्यापार जैसी चुनौतियां पारंपरिक पुलिस व्यवस्था से नहीं सुलझ सकती हैं। इसलिए विजन डॉक्यूमेंट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रियल टाइम डेटा शेयरिंग, तकनीकी खुफिया तंत्र, अपराध मानचित्रण और आधुनिक निगरानी प्रणाली को विशेष महत्व दिया गया है। इस अभियान में केवल सख्ती नहीं, संवेदनशीलता भी दिखाई देती है। गृहमंत्री अमित शाह ने स्पष्ट किया है कि ड्रग माफिया के खिलाफ कार्रवाई पूरी तरह से कठोर होगी, किंतु नशे की लत के शिकार युवाओं को अपराधी न मानकर उन्हें पीड़ित मानकर उनके पुनर्वास पर बराबर ध्यान दिया जाएगा। राज्यों की भूमिका को लेकर भी सरकार ने स्पष्ट संदेश दिया है कि ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई केवल केंद्र सरकार नहीं जीत सकती। एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स को अधिक संसाधन, एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय, मजबूत चार्जशीट और जवाबदेह व्यवस्था पर जोर बताता है कि अब परिणाम आधारित कार्य संस्कृति विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। यदि राज्यों में यह व्यवस्था प्रभावी ढंग से लागू होती है तो ड्रग्स नेटवर्क पर लगातार दबाव बनाए रखना संभव होगा। विशेष एनडीपीएस अदालतों के गठन पर दिया गया जोर भी स्वागत योग्य है। अक्सर वर्षों तक मुकदमे लंबित रहने से अपराधियों का मनोबल बढ़ता है। यदि जांच के साथ त्वरित सुनवाई और शीघ्र सजा सुनिश्चित होती है तो इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी व्यापक होगा और ड्रग्स कारोबार में शामिल लोगों के लिए कानून का डर बढ़ेगा। सरकार ने सीमावर्ती गांव, बंदरगाह, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और संवेदनशील जिलों में तकनीकी निगरानी तथा कम्युनिटी पुलिसिंग का विस्तार किया है। इसके साथ ही अवैध अफीम और अन्य मादक फसलों की खेती के खिलाफ बढ़ती कार्रवाई ये दर्शाती है कि सरकार उत्पादन के स्रोत पर भी समान सख्ती बरत रही है। ड्रग्स के खिलाफ समाज की भागीदारी को अभियान का आधार बनाना भी दूरदर्शी कदम है। माता पिता, शिक्षक, शिक्षण संस्थान, युवा संगठन और सामाजिक संस्थाएं यदि इस लड़ाई में सक्रिय भूमिका निभाते हैं तो नशे की मांग स्वतः घटेगी। इस संबंध में पिछले वर्षों के आंकड़े बताते हैं कि कार्रवाई का दायरा लगातार बढ़ा है। रिकॉर्ड मात्रा में मादक पदार्थों की जब्ती, लाखों मामलों का पंजीकरण, बड़ी संख्या में गिरफ्तारियां और अवैध खेती का विनाश तथा हजारों करोड़ रुपए मूल्य के ड्रग्स का नष्ट किया जाना ये संकेत देता है कि सरकार ने इस चुनौती को प्राथमिकता दी है। अब 6000 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के मादक पदार्थों के नष्ट करने का नया अभियान इस प्रतिबद्धता को और मजबूत करता है। निसंदेह नशा मुक्त भारत बनाने के लिए कानून, तकनीकी, न्याय व्यवस्था, सामाजिक जागरूकता और जन सहभागिता से लेकर वे तमाम उपाय एक साथ हर मोर्चे पर करने होंगे जो इसे रोकने के लिए आवश्यक है। डिटेक्ट, डिसरप्ट और डिस्ट्रॉय की नई रणनीति इसी समग्र सोच का परिचायक है। यदि इस रोडमैप को पूरी प्रतिबद्धता और समन्वय के साथ लागू किया गया तो भारत ड्रग्स माफिया के खिलाफ निर्णायक बढ़त हासिल करेगा। तभी हम सही मायनों में विकसित भारत के संकल्प को भी एक मजबूत सामाजिक आधार प्रदान कर पाएंगे। आजकल में आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आजकल। विषय था ड्रग्स माफिया पर त्रिस्तरीय वार, पहचान, प्रहार और पूर्ण सफाया। आलेख डॉक्टर मयंक चतुर्वेदी का था और वाचन स्वर अभिषेक कटियार का। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है और अब समय है प्रादेशिक समाचार दर्शन का।

नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार दर्शन। मैं हूं नवनीत चौबे। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं प्रदेश के विभिन्न जिलों

0: की समसामयिक गतिविधियों पर अपनी विशेष रिपोर्ट। तो आइए अब हम शुरुआत करते हैं प्रादेशिक समाचार दर्शन की। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए हमारी पहली रिपोर्ट है अनूपपुर जिले से, जहां ग्राम पंचायत बदरा में वीबी जी रामजी मिशन का जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। पेश है अनूपपुर से हमारे संवाददाता अजीत मिश्रा की यह रिपोर्ट।
1: वीवी रामजी मिशन का जिला स्तरीय शुभारंभ अनूपपुर जनपद के बदरा ग्राम में हुआ। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती प्रीति रमेश सिंह ने कहा कि विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण एक अत्यंत प्रशासनिक एवं दूरदर्शी पहल है। उन्होंने कहा कि आज का दिन देश, प्रदेश, जिले तथा विशेष रूप से ग्रामीण भारत के लिए स्वर्णिम अध्याय के रूप में इतिहास में दर्ज होगा। गाँव की समृद्धि ही राष्ट्र के प्रगति का आधार है और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए भारत सरकार द्वारा विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण का शुभारंभ किया गया है। जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती प्रीति रमेश सिंह ग्राम पंचायत बदरा में आयोजित विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन के जिला स्तरीय शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित कर रही थी। जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करना है। इस लक्ष्य की प्राप्ति का मार्ग ग्रामीण भारत के समग्र विकास से होकर गुजरता है। इसके लिए यह मिशन महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए अनूपपुर से मैं अजीत मिश्रा।
0: हमारी दूसरी खबर है उमरिया जिले से, जहां साइबर जागरूकता के तहत 24 जून से 8 जुलाई तक सेफ क्लिक 2.0 अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत आम नागरिकों को सुरक्षित वेबसाइट पर क्लिक करने, मोबाइल ओटीपी, यूपीआई पिन आदि किसी दूसरे व्यक्ति से साझा नहीं करने की सलाह दी जा रही है। अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे उमरिया संवाददाता अरुण कुमार त्रिपाठी।
2: उमरिया जिले में पुलिस अधीक्षक विजय भागवानी के निर्देशन में साइबर जागरूकता के तहत सेफ क्लिक चलाया जा रहा है। अभियान का शुभारम्भ 24 जून 2026 से किया गया है, जो 8 जुलाई तक चलेगा। इस अभियान के तहत आम नागरिकों को सुरक्षित वेबसाइट पर क्लिक करने, मोबाइल ओटीपी, यूपीआई पिन आदि किसी दूसरे व्यक्ति से साझा नहीं करने की सलाह दी जा रही है। अभियान में पुलिस अधीक्षक से लेकर आरक्षक तक हिस्सा ले रहे हैं। नागरिकों को साइबर ठगी से बचाने के लिए जिले भर के स्कूल, कॉलेजों और सार्वजनिक जगहों पर पुलिस लोगों को जागरूक करने की सलाह दे रही है। इसके अलावा डिजिटल अरेस्ट या किसी भी तरह के फ्रॉड होने की संभावना पर नजदीकी पुलिस स्टेशन से संपर्क करने की सलाह दी जा रही है। इस बारे में और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं उमरिया के एसडीओपी बीएल परस्ती।
3: मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा सेफ क्लिक साइबर जागरूकता का कार्यक्रम लगातार चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में उमरिया पुलिस के द्वारा भी लोगों को लगातार साइबर जागरूकता के प्रति, साइबर अपराधों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। वाकई में आज के डिजिटल युग में साइबर अपराधी बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, इसलिए प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह सतर्क रहे, जागरूक रहे। कभी भी यदि कोई अनजान व्यक्ति आपसे ATM डिटेल, खाता डिटेल, UPI पिन या आपकी निजी जानकारी मांगता है तो बिल्कुल कभी उसके साथ शेयर न करें, आप धोखाधड़ी का शिकार हो सकते हैं।
2: समाचार दर्शन के लिए उमरिया से मैं अरुण कुमार त्रिपाठी।
0: हमारी अगली खबर है सीधी से, जहां एक बगिया माँ के नाम अभियान के माध्यम से जिला प्रशासन द्वारा पर्यावरण संरक्षण के साथ महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देने की दिशा में उल्लेखनीय कार्य किया जा रहा है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं सीधी से हमारे संवाददाता सचिंद्र मिश्र।
4: सीधी जिले में मुख्यमंत्री मोहन यादव की पहल पर संचालित एक बगिया माँ के नाम अभियान के माध्यम से जिला प्रशासन सीधी द्वारा पर्यावरण संरक्षण के साथ महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देने की दिशा में उल्लेखनीय कार्य किया जा रहा है। अभियान के तहत जिले की सभी जनपद पंचायतों में स्व सहायता समूहों की महिलाओं की निजी भूमि पर मनरेगा के माध्यम से फलदार पौधों का रोपण कराया जा रहा है, जिससे आने वाले वर्षों में महिलाओं की आय बढ़ेगी और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकेंगी। जिला पंचायत सीधी के सीओ शैलेंद्र सिंह सोलंकी ने बताया है कि जिले में 500 परियोजनाओं का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। प्रत्येक परियोजनाओं में लगभग 100 पौधे लगाने के मान से कुल 50,000 पौधे के रोपण का लक्ष्य तय किया जा रहा है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने निर्धारित लक्ष्य से अधिक कार्य करते हुए 520 परियोजनाओं की स्वीकृति की है, जिनके लिए लगभग 9,48,00,000 रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। इन स्वीकृत परियोजनाओं में अब तक 411 स्थलों पर फेंसिंग और पौधारोपण का कार्य पूरा किया जा चुका है, जबकि शेष परियोजनाओं में फेंसिंग का कार्य तेजी से जारी है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए सीधी से मैं सचिंद्र मिश्र।
0: प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए हमारी अगली खबर है श्योपुर जिले से, जहां स्व सहायता समूह से जुड़ी महिला सदस्यों के खेतों में फलोद्यान विकसित किए जाने की दृष्टि से प्रारंभ की गई। माँ की बगिया योजना छोटे किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। यह योजना नगद कमाई का साधन भी बनी हुई है। विस्तार से बता रहे हैं श्योपुर से हमारे संवाददाता अश्विनी बालोठिया।
5: स्व सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं सदस्यों के खेतों में फलोद्यान विकसित किए जाने की दृष्टि से प्रारंभ की गई माँ की बगिया छोटे किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। योजना के अंतर्गत लगाए गए पौधों में अच्छी वृद्धि देखने को मिल रही है। किसानों द्वारा पौधों के बीच में हरी सब्जियां, मूंग इत्यादि की खेती की जा रही है, जिससे उन्हें गर्मियों के इस मौसम में नगद कमाई भी हो रही है। स्व सहायता समूह से जुड़ी दीदियों के खेत में योजना अंतर्गत समस्त कार्य है, जमीन का चिन्हांकन, हितग्राहियों संबंधित परिवार की जानकारी सीप्री ऐप के माध्यम से कृषि सखियों द्वारा दी जा रही है। माँ की बगिया योजना अंतर्गत लगभग एक एक एकड़ भूमि पर फलोद्यान के पौधे रोपित किए गए हैं, जिसमें अमरूद, आम, नींबू, कटहल के पौधे दीदियों द्वारा लगाए गए तथा ये पौधे अब अच्छे बढ़ने लगे हैं। साथ ही जिन हितग्राही द्वारा पौधों की नियमित रूप से देखभाल की जा रही है, योजना के अंतर्गत हितग्राही द्वारा माँ की बगिया में पौध के बीच में खाली जगह पर सब्जी की खेती भी की जा रही है, जिसमें समूह की दीदी द्वारा ककड़ी, भिंडी, लौकी, कद्दू इत्यादि की खेती की जा रही है तथा सब्जी बेचकर लगभग अतिरिक्त आय अर्जित की जा रही है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए श्योपुर से अश्विनी कुमार बालोठिया।
0: हमारी अगली खबर है शहडोल जिले से, जहां धान उत्पादन क्षमता प्रदेश की औसत उत्पादन क्षमता से अधिक है। जिले में इस खरीफ सीजन में धान का उत्पादन लक्ष्य बढ़ाया गया है। पेश है शहडोल से हमारे संवाददाता अरविंद पांडे की यह रिपोर्ट।
6: शहडोल जिले की धान उत्पादन क्षमता 4,058 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो गई है। फिलहाल मध्य प्रदेश की औसत उत्पादन क्षमता 3,551 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। वहीं राष्ट्रीय औसत 2,825 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। उन्नत बीज, सिंचाई सुविधा और किसानों के प्रशिक्षण से यह संभव हुआ है। कृषि विभाग ने खरीफ 2026 के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया है। जिले में इस बार 6,73,729 मीट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन का अनुमान रखा गया है, जो गत वर्ष की तुलना में 1,787 टन अधिक है। मानसून की सामान्य वर्षा और कृषि की आधुनिक तकनीक के सहारे यह लक्ष्य हासिल करने की तैयारी है। खरीफ की मुख्य फसल धान का उत्पादन लक्ष्य 5,82,323 मीट्रिक टन रखा गया है। बीते साल यह लक्ष्य 5,78,000 मीट्रिक टन था। इस सीजन जिले में कोदो, कुटकी, अरहर और तिल की पैदावार बढ़ने की संभावना है। सरकार द्वारा मोटे अनाज को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इससे किसानों की आय बढ़ने के साथ पोषण सुरक्षा भी बेहतर होगी। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए शहडोल से मैं अरविंद पांडे।
0: अब हम रुख करते हैं आगरमालवा जिले की तरफ, जहां सोयाबीन फसल की बुवाई शुरू हो गई है। इस बार कृषि विभाग बदलते मौसम के अनुरूप खेती की तकनीक बदलने पर जोर दे रहा है। किसानों को पारंपरिक समतल बुआई छोड़कर रेज्ड बेड, ब्रॉड बेड फरो और रिज एंड फरो जैसी वैज्ञानिक पद्धतियां अपनाने की सलाह दी जा रही है। अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे आगरमालवा संवाददाता महेश शर्मा।
7: खरीफ सीजन 2026 के तहत सोयाबीन फसल की बुआई आगरमालवा जिले में भी शुरू हो गई है। इस बार कृषि विभाग बदलते मौसम के अनुरूप खेती की तकनीक बदलने पर जोर दे रहा है। किसानों को पारंपरिक समतल बुआई छोड़कर रेज्ड बेड, ऊंची क्यारी, ब्रॉड बेड फरो BBF और रिज एंड फरो जैसी वैज्ञानिक पद्धतियां अपनाने की सलाह दी जा रही है। इस बारे में और अधिक जानकारी दे रहे हैं कृषि विभाग की वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी किरण ठाकुर।
8: जब हम बोने की विधि या अन्य तकनीकों के बारे में प्लानिंग करते हैं, तो इस बार बुआई के लिए प्लानिंग जो है, अगर BBF मेथड से करें बुआई, तो ये होता है ब्रॉडबेड एंड फरो, जिसमें क्यारियां चौड़ी होती हैं और क्यारियों के साथ नाली बनी हुई होती है आउट साइड में। तो जब ये मेथड से अगर अपन बुआई करते हैं, तो इसके तीन मुख्यतः फायदे हो जाएंगे। पहला है, अतिवृष्टि से बचाव हो जाएगा। जब पानी अधिक होता है, खेत से पानी बाहर निकालना होता है, तो जो आउट साइड की नालियाँ होती हैं वो बहुत मददगार होती हैं, पौधे गलने से बच जाते हैं। और जैसे कि सूखा पड़ता है, अगर कभी तो सूखा पड़ेगा, तो नालियों से सिंचाई देने के लिए भी यह मेथड उपयुक्त रहेगी।
7: प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए आगर मालवा से मैं महेश शर्मा।
0: प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए हमारी अगली खबर है शिवपुरी जिले से, जहां 1 जून से 30 जून तक खेत बचाओ अभियान चलाया गया। अभियान के तहत कृषि वैज्ञानिक और विभाग के अधिकारी गांव-गांव पहुंचे और किसानों को आधुनिक व वैज्ञानिक खेती के लिए जागरूक किया। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं शिवपुरी से हमारे संवाददाता रंजीत गुप्ता।
9: केंद्र सरकार की पहल पर शिवपुरी जिले में कृषि विज्ञान केंद्र और कृषि विभाग के संयुक्त तत्वावधान में 1 जून से 30 जून तक खेत बचाओ अभियान चलाया गया। अभियान के तहत कृषि वैज्ञानिक और विभाग के अधिकारी गांव-गांव पहुंचे और किसानों को आधुनिक व वैज्ञानिक खेती की जानकारी दी। अभियान के दौरान आयोजित जागरूकता एवं
10: दूरदर्शन की डायरेक्ट टू होम सेवा,
11: डीडी डायरेक्ट,
10: निःशुल्क न केबल का झंझट।

0: न बार बार हर महीने भुगतान की समस्या।
1: डायरेक्ट टू होम सेवा बिल्कुल मुफ्त है।
0: स्पष्ट आवाज, सुंदर तस्वीर,
1: साथ में आकाशवाणी के 10 लोकप्रिय चैनल।
0: आज ही करें कनेक्ट
1: दूरदर्शन की डीटीएस सेवा डीडी डायरेक्ट।
2: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर

कृषकों की खेती को उन्नतशील बनाने के लिए प्रायोजित कार्यक्रम किसानवाणी सुनिए शाम 7:30 पर आकाशवाणी शिवपुरी से 100.2 मेगाहर्ट्ज पर। इसमें हमारे कृषक भाई सुन पाएंगे नित नई बातचीत। तो सुनते रहिए किसानवाणी शाम 7:30 आकाशवाणी शिवपुरी से।

आकाशवाणी शिवपुरी का प्रातःकालीन सूचना पर दैनिक कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी सुनिए रोजाना सुबह 7:45 पर। इसमें आपको मिलेंगी समसामयिक जानकारी प्रतिदिन। तो सुनते रहिए हर सुबह 7:45 पर सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी आकाशवाणी शिवपुरी से। खुशखबरी, जी हां, आकाशवाणी शिवपुरी हुई अब हाईटेक। जी हाँ, आप अब हमें सुन सकते हैं अपने एंड्रॉइड और आईफोन दोनों प्लेटफॉर्म पर एक साथ कहीं भी। प्रसारण के समय जब जी चाहे तब सुनिएगा। प्ले स्टोर से न्यूज ऑन AIR ऐप को डाउनलोड करें और रेडियो ऑप्शन में जाएं। मध्य प्रदेश में आकाशवाणी शिवपुरी यानी कि AIR शिवपुरी को सिलेक्ट करें और सुने अपने एंड्रॉइड पर पूरी दुनिया में जब चाहे उस वक्त।

0: दूरदर्शन की डायरेक्ट टू होम सेवा
1: डीडी डायरेक्ट
0: निशुल्क, न केबल का झंझट, न बार बार हर महीने भुगतान की समस्या।
1: डायरेक्ट टू होम सेवा बिल्कुल मुफ्त है।
0: स्पष्ट आवाज, सुंदर तस्वीर,
1: साथ में आकाशवाणी के 10 लोकप्रिय चैनल।
0: आज ही करें कनेक्ट
1: दूरदर्शन की डीटीएस सेवा डीडी डायरेक्ट।
2: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक सपनों को दें।
1: साथ बजने वाले हैं कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में आज शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। स्थानीय इंडोनेशियाई समुदाय और प्रवासी भारतीय समुदाय ने प्रधानमंत्री मोदी का पारंपरिक

0: भारतीय और इंडोनेशियाई प्रस्तुतियों के साथ भव्य और उत्साहपूर्ण स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी श्री सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता गए हैं। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है। जकार्ता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन होगा, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक प्रम्बानन मंदिर के दर्शन के लिए योग्यकार्ता जाएंगे। संदीप दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीस के साथ तीसरे भारतीय ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि तीनों देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से सहकारी आंदोलन एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है। सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में श्री शाह ने कहा कि प्रत्येक क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली 5 सहकारी समितियों को मान्यता देने के लिए एक रैंकिंग ढांचा घोषित किया गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज राष्ट्रीय राजमार्ग माल परिवहन प्रबंधन लिमिटेड की समीक्षा बैठक की। बैठक में देशभर में बनाए जा रहे बहु माध्यम माल परिवहन पार्क, रोपवे और राजमार्गों के किनारे यात्रियों के लिए विकसित की जा रही सुविधाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। श्री गडकरी ने कहा कि इससे सड़क, रेल और अन्य परिवहन साधनों के बीच बेहतर संपर्क स्थापित होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि तकनीक आधारित द्विभाषी प्रबंधन शिक्षा से देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच शिक्षा की दूरी कम करने में मदद मिलेगी। नई दिल्ली में भारतीय प्रबंधन संस्थान उदयपुर के नए ऑनलाइन द्विभाषीय व्यवसाय प्रशासन स्नातक पाठ्यक्रम के उद्घाटन समारोह में उन्होंने कहा कि द्विभाषीय व्यवस्था के कारण भारतीय प्रबंधन संस्थाओं की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचेगा। सरकार ने कहा कि 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड, 93 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आभा से जोड़े गए हैं। यह देश की एकीकृत डिजिटल सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति है। आभा आधार कार्ड की तरह 14 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या है, जो एक व्यक्ति को व्यापक स्वास्थ्य प्रणाली से सुरक्षित रूप से जोड़ती है। मौसम विभाग ने कहा कि अगले 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के उत्तरी अरब सागर के कुछ हिस्सों से गुजरात, हरियाणा और पंजाब के कुछ भागों के साथ राजस्थान में आगे बढ़ सकता है। उधर महाराष्ट्र के अधिकतर हिस्सों में लगातार वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त है। मुंबई और कोंकण क्षेत्र में बाढ़ और भूस्खलन से इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई हैं तथा सड़क, रेल और हवाई परिवहन में भारी व्यवधान देखा जा रहा है। पूरे राज्य में अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी विरोध प्रदर्शन के बीच लोगों ने भारत सरकार से सहायता की अपील की है। पिछले 1 महीने से क्षेत्र में प्रदर्शन जारी है। लोगों ने भारत से दवाइयां और जरूरी खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में देर रात 12:30 बजे पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा। और इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: सुबह 8:30 पर आप सुनिएगा फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सवेरा। 9:15 पर होगा सुगम संगीत का कार्यक्रम, जिसमें हम आपको सुनवाएंगे अश्विनी भिड़े की गाये चंद भजन। सुबह 9:30 पर शब्द सागर कार्यक्रम में सुनेगा वाणी शर्मा की वार्ता, भारतीय शास्त्रीय नृत्य और वैश्विक मंच, और मेहरुन्निसा परवेज की कहानी क्यों नहीं। सुबह 10:00 होगी जिले की चिट्ठी और 10:05 पर पेश करेंगे फिल्म संगीत का विशेष कार्यक्रम गीत सागर। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम रागमाला में सुबह 10:30 पर सुनेगा अभय पगरे का बांसुरी वादन, राग होगा जौनपुरी। आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण में 11:00 सुनेगा फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे आपकी फरमाइश। ये कार्यक्रम पेश करेंगे दिन में 12:00 और 2:30 पर। दिन में 12:30 पर कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत होगा धारावाहिक हंसना मना है का 6वां भाग। दिन में 1:00 होगा महिला कार्यक्रम, 1:30 पर सुनेगा लोक संगीत का कार्यक्रम और 1:45 पर पेश करेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम। ये तीनों कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति होंगे। सांध्यकालीन सभा में 5:02 पर युवा श्रोता सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल का योगदान होगा। फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकते हैं शाम 5:33 पर, रात्रि 8:15 पर और रात्रि 10:00। शाम 6:00 होगा एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम, 6:30 पर सुनेगा चित्रपट संगीत। सात बजकर 21 पर कार्यक्रम ग्राम सभा में आप सुनेगा भेंट वार्ता, खरीफ दलहनी फसलों की उन्नत खेती, जानकारी देंगे डॉक्टर सुरेंद्र कौशिक। ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति होगा। रात्रि 8:00 होगा कार्यक्रम सुर्खियों में। 9:30 पर पेश करेंगे उर्दू प्रोग्राम कहकशा, जिसमें आप सुनेगा कव्वालियों पर केंद्रित कार्यक्रम महफिले समा। रात्रि 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में हम आपको सुनवाएंगे पंडित जगन्नाथ और पार्टी का शहनाई वादन, राग होगा मधु कौस। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही आरपीएलआई, इससे बेहतर कुछ नहीं।
2: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस आरपीएलआई की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
3: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस के यात्रियों
4: तुम्हें मोबाइल चार्ज करना,
5: दिमाग चार्ज करना।
6: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
5: देखा,

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में भव्य स्वागत। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय चर्चा और आपसी साझेदारी में हुई प्रगति की होगी समीक्षा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल के सतगड़ी में स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क की आधारशिला रखी। कहा, बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश भी मध्य प्रदेश में कर रहे निवेश। ज्ञान भारतम ऐप पर दुर्लभ प्राचीन पांडुलिपियों को सहेजने और संरक्षित करने में देश में प्रथम मध्य प्रदेश। और प्रदेश में मानसून पूरी तरह सक्रिय, आज 23 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर बाद इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे, जहां से उन्होंने अपने तीन देशों के हिंद प्रशांत दौरे की शुरुआत की। जकार्ता हवाई अड्डे पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने उनका व्यक्तिगत रूप से स्वागत किया। स्थानीय इंडोनेशियाई समुदाय और भारतीय प्रवासी समुदाय ने प्रधानमंत्री श्री मोदी का भव्य और उत्साहपूर्ण स्वागत किया, जिसमें पारंपरिक भारतीय और इंडोनेशियाई सांस्कृतिक प्रस्तुतियां शामिल थीं। ये प्रधानमंत्री श्री मोदी की इंडोनेशिया की चौथी यात्रा है और मई 2018 में भारत इंडोनेशिया संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक उन्नत किए जाने के बाद उनकी पहली द्विपक्षीय यात्रा है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है। जकार्ता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन होगा, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक प्रम्बनन मंदिर के दर्शन के लिए योग्यकार्ता जाएंगे। संदीप दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: अपनी यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया की यात्रा करेंगे। वहीं तीसरे और अंतिम चरण में श्री मोदी 10 जुलाई को न्यूजीलैंड पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भोपाल के सतगड़ी में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क का भूमि पूजन एवं शिलान्यास किया। राष्ट्रवादी चिंतक और भारत के प्रथम उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने इंडस्ट्रियल पार्क की सौगात दी। लगभग 173 एकड़ में विकसित होने वाला यह स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क भोपाल और आसपास के क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधियों के विस्तार का नया आधार माना जा रहा है। इसमें आधुनिक औद्योगिक अधोसंरचना, आईटी एवं एआई आधारित सुविधाएं और लॉजिस्टिक तथा वेयर हाउसिंग कॉम्प्लेक्स विकसित किए जाएंगे। ये परियोजना वर्क लिव ग्रो मॉडल पर आधारित होगी, जिसमें उच्च मूल्य विनिर्माण, गारमेंट, टॉयज, आईटी और एआई से जुड़े उद्योग स्थापित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने यहां कहा कि अमेरिका, इंग्लैंड, जापान जैसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश मध्य प्रदेश में 10,000 करोड़ से अधिक का निवेश कर रहे हैं।
2: विश्व के बड़े बड़े देश अब हमारे साथ काम कर रहे हैं। अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, जापान, कोरिया, ऐसी बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्था 10,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश हमारे अपने राज्य में लगा रहे थे। ये है हमारे काम करने का तरीका। छोटे मझोले उद्योग जो काम करने आ रहे हैं, उनका अगर कोई देनदारी है तो ये हमने गए महीने तक की देनदारी पूरी कर दी।
0: मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव की मौजूदगी में आज भोपाल में कुवैत की अग्रणी मत्स्य कंपनी और कामदार्स केयर इंदौर के बीच 7,430 करोड़ रुपए के निवेश और बायबैक एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हुए। ये एग्रीमेंट मध्य प्रदेश एकीकृत मत्स्य उद्योग नीति 2026 के अंतर्गत हुआ है। इस करार के तहत कुवैत की कंपनी इंदिरा सागर, बर्गी, बाणसागर और बारना जलाशय में इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करेगी, जिससे 35,000 रोजगार सृजित होंगे। इस करार से प्रदेश के लगभग 6,000 करोड़ रुपए के मत्स्य निर्यात का अनुमान है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज ग्वालियर में संभाग स्तरीय उन्नत कृषक संवाद सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में उन्होंने किसानों से संवाद कर उनके प्राकृतिक खेती से संबंधित अनुभव भी सुने। मुख्यमंत्री ने यहां से हाईटेक नर्सरी और फ्लोरिकल्चर गार्डन का भूमि पूजन भी किया। इस नर्सरी और फ्लोरिकल्चर गार्डन के प्रथम चरण के कार्य के लिए सरकार द्वारा 13 करोड़ रुपए की धनराशि मंजूर की गई है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर एआईआर न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। भारत सरकार की डिजिटल पहल ज्ञान भारतम ऐप के अनुसार दुर्लभ प्राचीन पांडुलिपियों की सूचना दर्ज करने और उनके संरक्षण के मामले में मध्य प्रदेश पूरे देश में प्रथम स्थान पर है। ज्ञान भारतम ऐप के माध्यम से

जुलाई 2026 को मध्य प्रदेश ने अब तक कुल 34,45,439 पांडुलिपियों के पन्नों का पंजीकरण किया है। 12,13,127 पांडुलिपियों का ज्ञान भारतम द्वारा सफलतापूर्वक सत्यापन हुआ है। शेष सत्यापन की प्रक्रिया में है, जिनका चरणबद्ध तरीके से परीक्षण एवं प्रमाणीकरण किया जा रहा है। अपर मुख्य सचिव संस्कृति धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग शिव शेखर शुक्ला ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि आज भी विश्वभर के मंदिरों, मठों, पुस्तकालयों और संग्रहालयों में संरक्षित भारतीय पांडुलिपियां हमारी समृद्ध ज्ञान परंपरा की अमूल्य धरोहर हैं। अब रुख करते हैं मानसून का। प्रदेश में मानसून जमकर बरस रहा है। आज प्रदेश के 23 जिलों में अति भारी और भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम केंद्र भोपाल के मुताबिक आज सागर, दमोह, बैतूल, देवास, अलीराजपुर, उमरिया, सिवनी, छिंदवाड़ा और अनूपपुर में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं रतलाम, उज्जैन, धार, शाजापुर, सीहोर, विदिशा, गुना, नर्मदापुरम, नरसिंहपुर, जबलपुर, मंडला, बालाघाट, डिंडौरी और पन्ना में भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया और शिवपुरी सहित प्रदेश के बाकी जिलों में भी कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। मंडला शहर में आज शाम 4 बजे से शुरू हुई बारिश लगभग 2 घंटे तक लगातार होती रही। वहीं छिंदवाड़ा में बीते 24 घंटों के दौरान 24.2 मिलीमीटर औसत बारिश दर्ज की गई है। इंदौर जिले में इस सत्र में अब तक 314.3 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यूजी 2026 प्रवेश परीक्षा की फीस वापसी के लिए बैंक खाता विवरण अपडेट करने की समय सीमा 7 जुलाई यानी कल तक बढ़ा दी है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में एनटीए ने सूचित किया कि जिन उम्मीदवारों ने अपने बैंक खाते विवरण की पुष्टि की है उनके लिए रिफंड की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत कल नीमच जिले के हरकिया खाल स्थित श्री बालाजी मंदिर पहुंचेंगे और वहां पर पूजा अर्चना करेंगे। छतरपुर के निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का अपर मुख्य सचिव अशोक वर्णवाल ने औचक निरीक्षण कर निर्माण कार्यों की प्रगति का जायजा लेते हुए आवश्यक निर्देश दिए। छिंदवाड़ा में मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के स्थापना दिवस पर वन स्टॉप सेंटर में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत पौधरोपण किया गया। शहडोल के सरहट की आजीविका हल्दी प्रसंस्करण इकाई से जुड़े 135 किसानों ने रिकॉर्ड 130 मीट्रिक टन हल्दी का उत्पादन किया है। बैतूल विद्युत वितरण कंपनी द्वारा 8 जुलाई को टैगोर वार्ड के आंगनवाड़ी केंद्र में विशेष शिविर में बिजली संबंधी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। सीहोर जिले के आष्टा पचोर शुजालपुर मार्ग पर एक कार और ट्रक की टक्कर में 5 लोगों की मौत हो गई जबकि 4 यात्री घायल हो गए हैं। खंडवा में 7 दिवसीय सिविल डिफेंस स्वयंसेवक प्रशिक्षण का आज शुभारंभ किया गया। कटनी पुलिस द्वारा सेफ क्लिक 2.0 साइबर जागरूकता अभियान के तहत मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। अशोकनगर पुलिस ने 88,000 रूपये के नकली नोटों के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। शौर्य स्मारक भोपाल में कल आदिवासी क्रांतिवीर स्मृति महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में देश के 50 से ज्यादा वक्ता काव्य गोष्ठी के माध्यम से आदिवासी क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में भव्य स्वागत। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय चर्चा और आपसी साझेदारी में हुई प्रगति की होगी समीक्षा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल के सतगढ़ी में स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क की आधारशिला रखी। कहा, बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश भी मध्य प्रदेश में कर रहे निवेश। ज्ञान भारतम ऐप पर दुर्लभ प्राचीन पांडुलिपियों को सहेजने और संरक्षित करने में देश में प्रथम मध्य प्रदेश। और प्रदेश में मानसून पूरी तरह सक्रिय, आज 23 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: दी।
1: हाँ,
0: ये देख कैसे।
1: हैप्पी बर्थडे भाई।
0: दिखा?
2: हाँ, मेरा फेवरेट कलर हमेशा शॉपिंग।
3: आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट?
4: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
5: आई नो बा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
3: आई नो ना।
5: RBI कहता है,
6: तरो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, कुछ ही पलों में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से लीजिए सुनिए कार्यक्रम ग्राम सभा।
7: ये आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है। शाम के 7:20 हुए हैं। ग्रामीण श्रोताओं के लिए प्रस्तुत है दैनिक कार्यक्रम चौपाल।

0: जय जवान जय किसान चौपाल कार्यक्रम में बैठे और सुनन बारे अपे सभी भैया बहन काजे शिल्पा बहन की राम राम। और सुनाओ भैया बहन, कैसे हो आप सब? उम्मीद है भैया कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, है ना। और अब हम आपसे कछु ज़रूरी बात करें। देखो भैया, हम आपके लाने समय समय पर बहुत सारी योजनाओं के बारे में बताते हैं और आप इनसे लाभ भी लेते रहते हो। तो भैया, आज भी हम आपके लाने एक ऐसी ही योजना के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जिसको नाम है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। भैया, ये योजना भारत सरकार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है जिसके तहत पात्र के किसानों के खातों में, बैंक खातों में सीधे तौर पर प्रतिवर्ष 6,000 की वित्तीय सहायता जो है वह दी जाती है और ये राशि हर 4-4 महीने के अंतर से 3 बार भैया के खातों में 2,000 रुपए के रूप में दी जाते हैं। भैया, ये योजना को उद्देश्य यही है कि छोटे और सीमांत किसानों को उनको सहायता प्रदान करने, ताकि वे अपनी जो खेतों में जो ज़रूरतें हैं, जो उनके खर्चा हैं, वह आसानी से भैया पूरे कर सकें। और भैया, इस योजना में वे सभी किसान भैया परिवार पात्र हैं जिनके पास की कृषि योग्य भूमि है। तो भैया, इस योजना को सुचारू रूप से चालू रखने के लाने जिन भैया इसके पात्र हैं, वे इसमें को EKYC ज़रूर करवाएं ताकि आपकी ये योजना रुके नहीं और वह चलत रहें। और जो भैया इस योजना को लाभ लेना चाह रहे हैं तो वह जाकर के इस उसके ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर के इस योजना में अपना नाम ज़रूर जुड़वा लें। तो भैया देखो, हमारे भैया को कितने अच्छी ये योजना को लाभ जो भैया ले रहे हैं, उनके जो काम धंधो है वह सुचारू रूप से चल सके, इसके लिए ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना बहुत ही अच्छी योजना है। और अब भैया बात करते हैं जल संरक्षण पर। भैया देखो, बारिश को मौसम है ना, इस समय आप देख रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से बारिश होनी चाहिए वह अभी तक नहीं हुई है और तनिक तनिक रुक रुक के पानी जो है बरस रहा है। तो भैया देखो, जैसे जैसे पानी बरस रहा है और हम देखा जा रहे हैं कि और जैसे कि इस जिस तरीके से पानी की जो हमें ज़रूरत है वह दिन पर दिन जो है सभी को लाने होते हैं। तो भैया देखो, हमें तो यही कोशिश करनी है कि अपन पानी की बर्बादी को बिल्कुल भी नहीं होने दें, उसकी बर्बादी को रोकें और भविष्य के लिए इसे सुरक्षित रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि भैया, पृथ्वी पर पीने के योग्य पानी मात्र 3% ही रह गए है, इसलिए इसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम से, पानी को पुनर्चक्रण से और दैनिक जीवन में समझदारी से इस्तेमाल करके बचाएं। और ये सब हम सभी को ये नैतिक कर्तव्य है। भैया, पृथ्वी पर भैया उपलब्ध कुल जल को 97% भाग जो है वह जो कैसो है, खारू है, यानी कि पीने के लाने पर पानी हमारे लिए बिल्कुल नहीं है। हमारे लिए जो उपयोगी मीठो जल है वह केवल 3% ही है, जो ग्लेशियरों और भूजल के रूप में हमें मौजूद होते हैं। और हम देख रहे हैं भैया कि लगातार घटन वाले भूजल स्तर और बारिश की अनिश्चितता के कारण आगे आने वाले समय में गंभीर पेयजल संकट को खतरा जो है वह हम देख रहे हैं कि दिन पर दिन मंडरा रहा है। तो भैया, जो हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, हमें तो जितने पानी मिल रहा है तो ठीक है, लेकिन जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उनके लिए भी तो हमें कुछ छोड़ के जाने हैं, है नहीं। तो अभी से अगर हम पानी की बूंद बूंद बचाएंगे तभी हम पानी की जो बर्बादी है उसे हम रोक पाएंगे। और भैया, ये तो हम सभी जानते हैं कि जल ही जीवन को आधार है, लेकिन इसको कहन से कुछ नहीं होगा भैया, इसको हम सभी को अपने जीवन में उतारने हैं। पानी की कमी से पारिस्थितिकी तंत्र और वन्य जीव को जीवन भी खतरे में पड़ जाते हैं। पानी को पंप करके घरों तक पहुंचाने और उसे शुद्ध करने में पानी बिजली भी खर्च होते हैं, पानी बचाओ से ऊर्जा की भी बचत होते हैं। भैया, ये ले पानी को बर्बाद होने से रोकें और छतों पर गिरने वाले बारिश के पानी को पाइप के जरिए टैंक या भूमिगत गड्ढों में इकट्ठा करें। इससे क्या होगा भैया, जो हमारे घर के आसपास जो जल स्रोत हैं उनमें पानी का स्तर बढ़ेगा, है ना। और पानी का जब स्तर बढ़ेगा तो हमें पानी भी मिलेगा। तो भैया, जिस तरीके से हम अपने को यही कहेंगे कि हम सभी भैया बहनों को ये कर्तव्य अपनों अपने कर्तव्य हमें समझत दें, किसी से ना कहें भैया हम खुद अपने आप को ये समझाएं कि हमें पानी की बचत करनी है। अब क्या होता है, अब घरों में देखें भैया, बहुत से भैया होते हैं देखो कोई भी काम करें, अगर ब्रश कर रहे हैं सुबह के समय तो वो खड़े हो गए और उन्होंने नल चला दो और कर रहे हैं पानी, ब्रश कर रहे हैं और पानी बह रहा है। तो सोचो भैया अपन को जो काम अगर हम एक डब्बा में एक मग्गा में लेकर के कर सकते उसमें अपन ने कितने सारू पानी बहा दो। तो ये सब थोड़ी थोड़ी सी बातें हैं, जैसे कि अब भैया लोग अपे दाढ़ी बना रहे हैं तो बेबी क्या करे, तो उन्होंने जितने देर उन्होंने बनाई उतने देर नल जो है वह चालू रहते हैं। तो सोचो भैया इससे कितने पानी की बर्बादी होते हैं। तो अपे यही बात को छोटी छोटी रोजमर्रा की अगर हम अपे आदतों में अगर हम सुधार कर लें तो हम पानी की बहुत हद तक बचत कर सकते हैं। यही हम सब कहेंगे कि भैया पानी को बचावें। अब देखो भैया गाड़ी धोन में या फर्श धोन के लिए भी पाइप की जगह हम बाल्टी या मग को इस्तेमाल करें तो उसमें भी पानी की बचत कर सकते हैं। घर के जो नल होते हैं उनमें बहुत से घर भैया देखो कि उनमें पानी जो है टोटियाँ ही नहीं होते, पानी अगर आ रहा हो तो वह बहत रहते। तो अगर यही पानी अगर हम उनमें टोटी लगा दें तो वही पानी को प्रेशर भी बढ़ जाए और पानी सभी को मिल जाए। तो इस तरीके से अगर हम छोटी छोटी बातों को अगर हम ध्यान रखें तो ये पानी की बचत कर सकते हैं। अब कृषि क्षेत्र में भी यह बात करें उसमें भी अपन टपक और फुब्बारा विधि से अगर हम अपना लें तो उससे भी बहुत हद तक पानी की बचत हो जाते हैं। और इससे अपन जो कृषि है वो भी जो बाग बगीचे हैं उनमें भी पानी जो है बहुत अच्छी तरीके से लग जाते और अपनों बगीचा भी हरो भरो रहते। इसी तरीके से भैया हर घर में अपन देखें जो वाटर प्योरीफायर यानी आरओ जो है वो लगे रहते हैं उसमें जो जो ख़राब पानी है वह भी निकलत रहे तो उस पानी को भी हम इकट्ठा कर लें। उसमें अगर हम इकट्ठा करके अपने घर के साफ सफाई में सब्जियों को धोने में घर के घर पेड़ों में इन सब में अगर हम इस्तेमाल करें तो उस पानी की भी हम बचत कर सकते हैं। तो कहने को मतलब भैया यही है कि हम किसी भी तरीका से पानी की बचत ज़रूर करें, पानी की बर्बादी बिल्कुल भी नहीं होने दें। क्योंकि आज जितने पानी हमें मिल रहा है उतने हो सकता है कि हमारी आने वाली पीढ़ियों को पानी नहीं मिले। तो हमें अभी से अपनी बूंद बूंद बचाने और अपने आगे आने वाली पीढ़ियों के लाने कुछ अच्छों देकर जाने हैं। तो इस बात के संगे हम देते इस चर्चा को यहीं पर विराम और सुनते हैं ये कुछ ज़रूरी संदेश।
1: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं, खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए सतर्क रहिए।
0: और अब भैया हम आपके लाने करसुर मनोरंजन कर दें तो चलो सुन लेते हैं विष्णु पटेरिया और साथियों को गाओ ये प्यारो सो लोग।

0: भैया अभी अपन सुन रहे थे विष्णु पटेरिया और साथियों को गाए ये प्यारो सो लोकगीत। और अब भैया आपके लाने सुनवाते हैं एक भेंट वार्ता जिसको विषय है शिवपुरी जिले में आयुष विभाग की सुविधाएं। और इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर अनिल वर्मा और इनसे बातचीत कर रहे हैं अपने भैया समर्थ अग्रवाल। तो चलो भैया सुनते हैं पुनः प्रसारित ये भेंट वार्ता।
1: नमस्कार। प्रत्येक इंसान की ये चाहत होती है कि वो लगातार तरक्की करे, दिनों दिन प्रगति करे और अपने परिवार को खुशहाल रखे। खुशहाल रहने के लिए सर्वप्रथम जो सबसे ज्यादा बेसिक नीड्स होती है कि वो आमदनी करे और स्वस्थ रहे। स्वस्थ रहने के लिए जरूरी है कि उसे जरूरत पड़ने पर स्वास्थ्य विभाग की इलाज मिल सके। और इलाज की बेहतरी के लिए भारत सरकार और राज्य शासन तमाम तरह के प्रबंधन किए हुए हैं। उन्हीं में एक विधा है जिसे हम आयुष कह सकते हैं। तो आयुष क्या है, शिवपुरी जिले में आयुष विभाग की क्या सुविधाएं हैं, इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज डॉक्टर अनिल वर्मा हैं। आप जिला आयुष अधिकारी हैं। डॉक्टर साहब सुनने वालों के मध्य आपका स्वागत है। नमस्कार।
2: नमस्कार जी सभी श्रोताओं को।
1: डॉक्टर साहब जो पहला प्रश्न है वो ये है कि आयुष विभाग अन्य जो हमारी थेरेपी है जिसे हम एलोपैथी कहते हैं, इससे कैसे अलग है और ये कब अस्तित्व में आया और इस आयुष में क्या क्या आता है?
2: देखिए आयुष विभाग बनना और आयुर्वेद कब अस्तित्व में आया दोनों अलग अलग प्रश्न है। आयुष विभाग अस्तित्व में आया है वर्ष 2006-07। इससे पहले आयुर्वेद होम्योपैथी यूनानी विधाएं जो थी वो लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के साथ ही उसके अंतर्गत ही समाहित थी। सरकार को इसकी पृथक से आवश्यकता महसूस हुई, इसके महत्व को जाना, तो 2006-07 में शासन ने आयुष विभाग को पृथक से एक विभाग बनाया और उसमें आयुर्वेद होम्योपैथी यूनानी योगा और सिद्धा इन सभी को समायोजित किया। और आयुर्वेद कब से आया तो इसका कोई जवाब नहीं दिया जा सकता, क्योंकि जैसा कि हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं देखते आ रहे हैं, आयुर्वेद हर घर में होता है, हर जगह उपस्थित होता है, हर किचन को ये अगर ये कह लें कि हमारा एक आयुर्वेद का मेडिकल स्टोर है तो ये गलत नहीं होगा। क्योंकि हम जब भी स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार होने से पहले की जमाने में की बात करें तो जब भी व्यक्ति बीमार होता था तो शायद उसकी सभी बीमारियों का इलाज उसकी किचन में मिल जाता था। अधिकतर, संपूर्ण तो नहीं लेकिन अधिकतर बीमारियों का इलाज उस किचन में मिल जाता था।
1: जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, धन्वंतरी के युग से और चरक के युग से आयुर्वेद समाज में भारतीय संस्कृति में घुला मिला है और मसालेदानी अपने आप में एक आयुर्वेद का खजाना है जिसमें हल्दी का नाम लिया जा सकता है। अब हम अपने जिले की बात करते हैं और आयुष विभाग की सुविधाओं की बात करते हैं। शिवपुरी जिला एक वृहद जिला है जिसमें एक और उत्तर प्रदेश को शिवपुरी जिले की सीमाएं लगती हैं, एक और राजस्थान जिले को शिवपुरी जिले की सीमाएं लगती हैं। लंबाई चौड़ाई काफी ज्यादा है, हमारे जिले के सारे श्रोता इस वक्त सुन रहे हैं, तो शिवपुरी जिले में आयुष विभाग की सुविधाएं क्या हैं, मतलब किस थेरेपी के लिए किस किस जगह पर कितनी कितनी ब्रांचेज हैं, कहां कहां पर हॉस्पिटल हैं जहां पर हमारा बीमार व्यक्ति जाकर सुविधा का लाभ ले सकता है?
2: देखिए वर्तमान में शिवपुरी जिले में आयुष विभाग के अंतर्गत 40 औषधालय हैं, जिनमें से 32 औषधालय आयुर्वेद के हैं, 6 होम्योपैथी के हैं, 1 यूनानी का है और 1 जिला आयुर्वेद चिकित्सालय है। इसके अलावा 1 यूनिट हमारी जिला चिकित्सालय जो एलोपैथी विभाग का रहता है उसमें भी संचालित है और PHC-CHC पर हमारी 5 यूनिट्स अलग से संचालित हैं, जहां पर या तो आयुर्वेद के चिकित्सक पदस्थ हैं या होम्योपैथी के, एक ही जगह पर दोनों विधाओं के चिकित्सक अभी तक तो पदस्थ नहीं है। तो कुल मिलाकर 32 आयुर्वेदिक औषधालय हैं और 6 होम्योपैथिक औषधालय हैं जो सभी ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित किए थे।
1: यानी कि आप लगभग 5 विधानसभाओं की अगर हम बात करें कि कोलारस है, पिछोर है, करेरा है, शिवपुरी है और पोहरी है, 5 विधानसभाओं में पूरा शिवपुरी जिला कवर हो जाता है, तो 5 विधानसभाओं में आपकी कोई ना कोई यूनिट कहीं ना कहीं काम कर रही है?
2: सभी ब्लॉक में, सभी विधानसभा क्षेत्रों में हमारी आयुर्वेद और होम्योपैथिक यूनिट स्थापित है।
1: तो यहाँ पर योग्य चिकित्सक हैं कि जैसे हम SR और GR जो मेडिकल कॉलेज की भाषा है वहाँ पर जूनियर डॉक्टर्स काम कर रहे हैं कि बकायदा पूरे जो BAMS जिसके लिए आयुर्वेद होता है तो उस तरह की उन्होंने उपाधि ली है और काम कर रहे हैं?
2: देखिए हमारे यहाँ पे सभी औषधालयों में, चिकित्सालय में आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी, होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी के ही पद हैं, सभी स्नातक उपाधि धारक चिकित्सक हैं। इसके अलावा जो PHC और CHC पे जो चिकित्सक पदस्थ हैं वो भी BAMS, BHMS की डिग्री वाले योग्य चिकित्सा धारक हैं, लेकिन वो संविदा सेवा के अंतर्गत अभी सेवाएं दे रहे हैं।
1: जी इन औषधालयों के समय चक्र क्या रहते हैं?
2: जो औषधालय PHC-CHC के भवन में संचालित हैं उनका समय जो स्वास्थ्य विभाग निर्धारित करता है उसी के अकॉर्डिंग रहता है, जैसे कि अभी सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक और शाम को 4 बजे से लेकर 6 बजे तक उनका समय है। और जो हमारे आयुर्वेद होम्योपैथी के औषधालय हैं उनका समय वर्तमान में सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक है, जिसमें दोपहर में 1:30 बजे से लेकर 2:15 तक लंच का समय रहता है।
1: इन औषधालयों में चाहे वो किसी भी गांव का हो, जैसे आजकल जिला चिकित्सालय में या मेडिकल कॉलेज में दवाओं की सुविधा भी निःशुल्क उपलब्ध है, तो यहाँ पर क्या दवा भी दी जाती है कि सिर्फ चिकित्सक परामर्श देता है?
2: नहीं, सभी औषधालयों में निशुल्क पर्चे बनते हैं और निशुल्क ही दवाइयों का वितरण किया जाता है। सिर्फ अंतर इतना आता है कि औषधालयों में जो सप्लाई दवाइयों की होती है वो लिमिटेशन उसकी ज्यादा है, मतलब कम मात्रा में सप्लाई होती है, और जिला चिकित्सालय आयुष विंग है वहाँ पर दवाइयों की संख्या तुलनात्मक रूप से थोड़ी अधिक होती है। तो अगर ऐसी स्थिति निर्मित होती है तो वहाँ के चिकित्सक जिला आयुर्वेद चिकित्सालय और आयुष विंग में पेशेंट को रेफर करते हैं।
1: यानी कि रेफरल प्रणाली इसमें भी कहीं ना कहीं पर आ जाती है।
2: जी बिल्कुल।
1: डॉक्टर साहब, अगर कुछ गांवों के नाम आपको पता हो, मतलब आपको स्मृति में आ रहे हैं, तो उन गांवों का जिक्र करें कि इस गांव में ये है और इस गांव में ये है।
2: देखिए, यूनानी औषधालय तो पूरे जिले में एक ही है, जो थनरा गांव है करेरा ब्लॉक में।
1: जी,
2: उसमें है। होम्योपैथी के 6 औषधालय हैं, एक शिवपुरी शहर में है लोकल में, वार्ड क्रमांक 11 में। इसके अलावा दुल्हारा पोहरी ब्लॉक में, जरिया खुर्द पोहरी ब्लॉक में, पिछोर CHC पर संचालित है, पिछोर प्रॉपर तहसील पर, दिनारा तहसील में होम्योपैथिक औषधालय है। और इसी तरह आयुर्वेद की अगर मैं बात करूं तो जैसे कि पौरी ब्लॉक से चलें अपन, तो ककरहुआ जो शिवपुरी का आखिरी बॉर्डर है, ककरहुआ में औषधालय है, धौरिया में औषधालय है, भटनावर में औषधालय है, एंचवाड़ा गांव में औषधालय है। इधर करेरा ब्लॉक की बात करें तो शिलानगर में है, नरवर ब्लॉक में मगरौनी में है, खरे भद्रवास में है, अटलपुर कोलारस के पास में राई गाँव में है, कोलारस प्रॉपर में है। इस तरह से 32 मतलब टोटल 40 यूनिट्स शिवपुरी जिले में हमारी विभिन्न अलग अलग जगहों पर संचालित हो रही है।
1: सर्वाधिक आयुर्वेद की है।
2: सर्वाधिक आयुर्वेद
1: 32 आपने बताई ना, 32 यूनिट आपकी आयुर्वेद की काम कर रही है, यूनानी की 1 कर रही है, होम्योपैथी की 6 कर रही है और 1 सिद्धा की काम कर वर्क कर रही है। लेकिन इस आयुष में आपने योग का भी जिक्र किया था कि योग आता है, योग की क्लासेस या योग का औषधालय के तौर पर कहीं पर इस्तेमाल नहीं हो रहा है?
2: योग पृथक से अलग से किसी जगह पे भी ऐसे सेंटर अभी तक तो स्थापित नहीं किए गए हैं, लेकिन वर्ष 2022 से हमारे कुछ औषधालयों का नाम परिवर्तित करके राष्ट्रीय जो योजना है आयुष्मान आरोग्य मंदिर में परिवर्तित कर दिए गए हैं, वहां पर योग की सुविधा अलग से उपलब्ध कराई है। तो शिवपुरी जिले में वर्तमान में 16 औषधालय ऐसे हैं जिनको आयुष्मान आरोग्य मंदिर नाम दे दिया गया है। वहां पर प्रतिदिन सुबह योग प्रशिक्षक और सहायक की नियुक्ति की गई है, जो प्रतिदिन सुबह योग करवाते हैं,
1: क्लासेज लेते हैं योग की, जनता जा सकती है और उनको फॉलो कर सकती है। योग की बात आई है तो क्या योग बेटर लिविंग के लिए काम फेवरेबल है?
2: देखिए, योग इतनी बड़ी विधा है जो अभी तक बहुत एक्सप्लोर नहीं हो पाई। आयुर्वेद 2 मुख्य सिद्धांतों पर कार्य करता है कि रोगों से बचाव कैसे हो, मतलब रोग शरीर में आए ही ना, और दूसरा अगर रोग आ गया है तो फिर उसका इलाज। तो इलाज के लिए तो बहुत सारी जैसे कि एलोपैथी पद्धति जो बनी है वो पूर्णतः रोग हो जाने के बाद में कारगर है
1: जी।
2: लेकिन आयुर्वेद ही एकमात्र विधा ऐसी है जो रोग ना हो उसके लिए क्या तैयारी आपको करनी है ये बताती है। आयुर्वेद सिर्फ और सिर्फ मेडिकल साइंस नहीं है, आयुर्वेद है पूरे जीवन का, प्रतिदिन का, प्रति मौसम के हिसाब से अपनी लाइफस्टाइल को समझाने वाली एक साइंस है। मतलब अगर कोई व्यक्ति आयुर्वेद के सिद्धांतों का पालन करता है तो उसमें शुरुआत होती है कि हमारी दिनचर्या कैसी हो, हमारे उठने का समय क्या हो, हमारे नहाने का समय क्या हो, हमारा व्यायाम कितना करना है, हमें तेल की मालिश करनी है कहाँ करनी है, क्या कानों में तेल डालना है, जो कई तरह के मिथ्स हैं कि तेल डालना फायदेमंद होता है, कई जगह आता है कि नुकसानदायक होता है, तो क्या कानों में तेल डालना है, क्या पैर के तलवों में तेल लगाना है, क्या बालों में तेल लगाना है, अगर उपवास करना है तो वो भी आयुर्वेद का एक पार्ट है कि उपवास करना है तो किस व्यक्ति को करना है, किस व्यक्ति को नहीं करना है, मतलब सुबह से लेकर शाम तक हमें क्या करना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या अपनी जो लाइफ स्टाइल है उसको बताने का पूरा काम आयुर्वेद में बहुत अच्छे सिद्धांतों से बताया गया है।
1: यानी कि कैसे दैनिक जीवन को जिया जाए ये आयुष विभाग और आयुर्वेद बिल्कुल क्लियर बताते हैं कि अगर हम इस तरह से अपने दैनिक जीवन को चलाएंगे तो हमें दवाओं की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हम वैसे भी स्वस्थ रह सकते हैं।
2: जी जी बिल्कुल।
1: एक संकट है या एक सहज प्रश्न है, कई बार ऐसी भयावह स्थिति आती है व्यक्ति के शरीर में कि अचानक उसे साइलेंट कई सारी प्रॉब्लम होती है, अब ऐसे में तत्काल वो एलोपैथी की ओर भागता है। एलोपैथी भी कारगर है लेकिन अन्य चीजें शायद उतनी कारगर नहीं है या लोग उनसे जानते नहीं है, तो क्या आयुर्वेद में या होम्योपैथी में क्या इस तरह की दवाएं या इस तरह का चिकित्सा विज्ञान है कि सडन स्थितियां जब आती हैं, कहते हैं हार्ट फेल्यूर हो रहा है या उसे कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो कुछ दवाएं ऐसी हों जो इंस्टेंट रिलीफ देती हैं?
2: देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अचानक से इमरजेंसी केसेस जो बनते हैं उसमें एलोपैथी की आवश्यकता शरीर को पड़ती है। तो प्रथमतः जो इमीडिएट और ऐसी कोई समस्या आती है जो लाइफ थ्रेटनिंग है, तो वहाँ पर एलोपैथी का सहारा बिल्कुल लिया जाना चाहिए। आयुर्वेद में भी ऐसी दवाइयाँ हैं, लेकिन तुलनात्मक रूप से उतनी तेजी से काम नहीं करती हैं जितनी की एलोपैथी में कर रही हैं। पहले के जमाने में लड़ाइयाँ होती थी, युद्ध होते थे, तब एलोपैथी थी ही नहीं, तब भी उन पे होने वाले जो बीमारियां लगती थी या इमीडिएट कोई एक्सीडेंटल रिजल्ट्स उनकी बॉडी में आते थे, तो उसका नियंत्रण भी आयुर्वेद से किया जाता था
1: जी।
2: लेकिन उसका समय, ठीक करने का समय और एलोपैथी के द्वारा ठीक करने के समय में अंतर है। तो एलोपैथी इमीडिएट कंडीशन में बहुत अच्छा काम करती है, इसमें कोई दो राय।
1: लेकिन आयुर्वेद भी कमजोर नहीं है
2: जी,
1: लेकिन त्वरित जिसे कहते हैं फास्ट रिलीफ चाहिए तो हमें एलोपैथी से संपर्क करना होगा। लेकिन आयुष विभाग की जो पांच चीजें आपने बताई, आयुर्वेद, होम्योपैथी, योग, सिद्धा और यूनानी, ये भी पूरी तरह से कारगर है जो इलाज कर रही है। अब एक प्रश्न है जिससे इसके बाद हम लोगों के जो संशय है वो भी दूर होंगे, इन अगर पूरी 40 का आपके पास डाटा आता हो तो 40 पर लगभग कितने लोगों की प्रतिदिन ओपीडी है एक नॉर्मल?
2: जी, प्रतिदिन की ओपीडी का जो है एनालिसिस हमारे प्रत्येक महीने की बैठक में शासन स्तर से किया जाता है। हमारे जिला चिकित्सालय में प्रति माह की ओपीडी 1300 से ज़्यादा है, मतलब प्रतिदिन का अगर हम एवरेज निकालें तो छुट्टियों को हटा दें तो 50 पेशेंट से ज़्यादा का जिला चिकित्सालय में रहता है। आयुष विंग में भी लगभग 50 से ज़्यादा पेशेंटों का रहता है और ग्रामीण स्तर पर 30 से 40 पेशेंट प्रत्येक औषधालय में प्रतिदिन स्वास्थ्य लाभ लेते हैं।
1: तो आपने जो 1300 बताया ये एक दिन का एवरेज बताया है आपने,
2: मासिक
1: एवरेज बताया, मतलब 40 की 40 ओपीडी पर लगभग 40 पूरे एक माह में 1300 व्यक्ति एक
2: आप नहीं समझे, 1300 जो मैं बता रहा हूँ जिला आयुर्वेद चिकित्सालय जो हमारा है उसमें
1: मैं पूरे 40 का टोटल लेना चाह रहा हूँ एक अंदाज,
2: लगभग 15,000 से ज्यादा की ओपीडी हमारी मासिक रहती है।
1: हाँ, ये तो 15,000 जब आदमी जा रहे हैं तो आदमी विश्वास कर रहा है, कहने का तात्पर्य ये है। तो जैसे मान लीजिए मेरे मन में कोई संशय है या हमारा कोई श्रोता सुन रहा है उसके मन में संशय है, पता नहीं वो काम करेगी, लेकिन जब 15,000 व्यक्ति प्रतिमाह जा रहे हैं, जिला यूनिट पर आपके 1300 व्यक्ति आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रभावशील है, इस बात को माना जा सकता है। और ये जो आयुष विभाग है ये भारत सरकार के नेतृत्व में वर्क कर रहा है कि राज्य शासन के नेतृत्व में वर्क कर रहा है?
2: भारत शासन में भी आयुष विभाग है, मध्य प्रदेश शासन में भी है। तो जो औषधालयों में सीधा नियंत्रण है वो राज्य शासन का होता है। जैसा कि मैंने बताया आयुष्मान आरोग्य मंदिर जो निर्मित किए गए हैं वो केंद्र शासन की योजना है,
1: लेकिन गाइडलाइन केंद्र की है, कंट्रोल राज्य सरकार का है। डॉक्टर साहब, आयुर्वेद में पंचकर्म का नाम भी लिया जाता है जो शायद मालिश, तेल का उपयोग, कई सारी चीजों का मिला जुला स्वरूप है, पंच है यानी पांच चीजें हैं, ये क्या है और इसकी सुविधा क्या शिवपुरी में कहीं उपलब्ध है?
2: देखिए, पंचकर्म आयुर्वेद की बहुत फेमस विधा है और इंडिया के मेडिकल टूरिज्म में पंचकर्म बहुत बड़ा
1: योगदान निभा रहा है,
2: योगदान दे रहा है। पंचकर्म पांच ऐसे कर्मों का कॉम्बिनेशन है, पांच ऐसी मेडिकल प्रोसीजर्स हैं जिसके द्वारा हम बॉडी को, शरीर को रोगों से लड़ने के लिए सक्षम बनाते हैं। अकॉर्डिंग टू डिसीज, मतलब बीमारी के अनुसार ये निर्भर करता है हमें किस पेशेंट को कौन सा पंचकर्म दिया जाना है। अगर स्वस्थ पेशेंट होता है और उसको अपनी बॉडी को एक तरह से बिल्कुल नए की तरह बनाना हो तो उसको सारे पांचों कर्मों को एक बार में करा दिया जाता है, जिसमें लगभग 45 दिन का एक लंबा समय लगता है। तो उस प्रोसेस को कर देने के बाद में शरीर में जो 3 दोषों के आधार पर रोगों का जो निर्माण होता है, रोग शरीर में बनते हैं, वो 3 दोषों के सिद्धांत पर ही आयुर्वेद पूरा बना हुआ है, वात, पित्त और कफ। इन्हीं दोषों के कॉम्बिनेशन की वजह से ही, कॉम्बिनेशन बिगड़ने की वजह से रोगों का निर्माण होता है। तो पंचकर्म में बीमारी के हिसाब से किस बीमारी में कौन सा पंचकर्म फायदेमंद होता है, अगर हम पहले उस पंचकर्म को करा लें तो हमारी दवाइयों की कार्यक्षमता जो है, उस बीमारी पे काम करने की क्षमता जो है तुलनात्मक रूप से अधिक हो जाती है और रोग हमें जल्दी खत्म करने में उससे सहयोग मिलता है। पंचकर्म बेसिकली पांच कर्म जो है, बमन, विरेचन, दो तरह की बस्तियां, आस्थापन, निरु और नस्य। तो नस्य को मैं थोड़ा सा, सभी लोग थोड़े बहुत परिचित होंगे कि जब कभी भी जैसे कि नाक में से खून आता है तो गांव में क्या कहते हैं, कच्चे दूध की 2-2 बूंद नाक में डाल लिया जाए, तो नाक में ड्रॉप डालना ही नस्य होता है। इसी तरह से बमन, विरेचन, वो कफ की अगर कफ से संबंधित बीमारियां हैं तो बमन करवाया जाता है, पित्त से संबंधित बीमारियां हैं तो विरेचन करवाया जाता है, वात से संबंधित बीमारियां हैं तो दो तरह की बस्तियां रहती हैं, एक काढ़े की बस्ती, मतलब इनीमा के फॉर्म में काढ़ा बना के के दिया जाता है और एक तेल की बस्ती जिसे अनुवासन कहते हैं, तो वो ये चार कर्म और पांचवा गर्दन से ऊपर की सारी बीमारियों के लिए नशे कर्म कराया जाता है। तो इससे पहले जिले में ये सुविधा उपलब्ध नहीं थी, लेकिन वर्तमान में जिला आयुर्वेद चिकित्सालय पुरानी शिवपुरी में पंचकर्म की सुविधा उपलब्ध है।
1: एक प्रश्न और, भारत डायबिटीज का गढ़ बनता जा रहा है, आंकड़े कह रहे हैं, क्या इस आयुष में और खासतौर पर आयुर्वेद में या होम्योपैथी में डायबिटीज पर भी नियंत्रण करने की संभावना?
2: देखिए, आयुर्वेद के बारे में मैं इससे पहले एक लाइन में और बताना चाहूंगा कि आयुर्वेद एकमात्र ऐसी विधा है जहां किसी भी बीमारी को होने से पहले उसके क्या सिम्टम्स होते हैं उनको मेंशन किया।
1: अब मेरे को हो गया, सपोज अब क्या करें?
2: देखिए, दोनों तरह की चीजें हैं, वही मैं बताने चाह रहा था। मैं पूर्व रूप से स्टार्ट कर रहा था, मतलब बीमारी होने के पहले आपको कौन से सिम्टम्स आएंगे, बीमारी हो जाने के बाद में जो सिम्टम्स आएंगे वो तो सभी जगह है, लेकिन उससे पहले क्या सिम्टम्स आएंगे वो भी आयुर्वेद में मेंशन है। जैसे कि डायबिटीज के बारे में ही एक पूर्व रूप बताया है, सुश्रुत ने अपनी बुक में मेंशन किया हुआ है कि ऐसे स्वस्थ व्यक्ति जिनको दौड़ने से अच्छा खड़े होना पसंद होता है, अगर खड़े होंगे तो उनको ये ज्यादा अच्छा लगता है कि थोड़ा सा बैठ लिया जाए, अगर बैठे होंगे तो उन्हें ये लगेगा कि लेट लिया जाए, और अगर लेटे होंगे तो ये सोचेंगे मुझे सोने का मन है, थोड़ा सा सो लेता हूं।
1: ये
2: डायबिटीज का पूर्व रूप है। अगर आप समझ लीजिए आपको ये, आप सुबह सुबह वॉक पर गए, दोस्तों के साथ में चल रहे हैं, वो आपके साथ में वॉक कर रहे हैं, लेकिन आपका मन करने लगे कि यार थोड़ा सा रेस्ट कर लिया जाए, मतलब डायबिटीज आपके बॉडी में होने के
1: संभावना
2: है, आपको संभावना है, तो उस समय नियंत्रण कैसे किया जाएगा वो आहार विहार का वर्णन अलग है कि आप किस तरह का खान पीन में परिवर्तन कर लेना है ताकि वो रूप में मतलब बीमारी में कन्वर्ट ना हो। उस समय भी इनकी चिकित्सा की जा सकती है और रूप जब डेवलप हो गए तब उसकी चिकित्सा की जा सकती है। बहुत तरह की दवाइयां हैं, जैसे आप हल्दी का नाम ले रहे थे, हल्दी बहुत अच्छी दवाई है, करेला जो है हमारा बड़ा अच्छा डायबिटीज को कंट्रोल करने की दवाई है, जामुन की गुठली जो है डायबिटीज को कंट्रोल करने की बहुत अच्छी दवाई है, सब्जी आती है परवल वो डायबिटीज को कंट्रोल करने की बड़ी अच्छी दवाई है, मेथी डायबिटीज को कंट्रोल करने की बड़ी अच्छी दवाई है, पनीर के फूल जो आते हैं वो गलाकर अगर लिए जाए,
1: पनीर तो दूध का पदार्थ है, उसके फूल,
2: पनीर के फूल सामान्य भाषा में एक पौधा होता है जिसको पनीर कहा जाता है और उसके फूल आते हैं, तो वो आपको किसी भी ऐसे दवाइयों की दुकान जहाँ पंसारी की दुकान है जिन्हें कहते हैं, यहाँ पे रॉ मटेरियल मिलता है, उनके यहाँ पे मिल जाएंगे। 7 से 8 फूल डेली आप रात को पानी में गला दें, सुबह उनको मसल कर उस पानी को पी लें तो डायबिटीज को काफी हद तक ये कंट्रोल करता है। लेकिन लिमिटेशन हर चीज की होती है, ओरल मेडिसिन की भी लिमिटेशन होती है, बहुत ज्यादा अगर शुगर बढ़ी हुई है तो एकदम कंट्रोल में ना ला करके सपोर्टिव थेरेपी के रूप में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
1: यानी कि डायबिटीज पर भी कंट्रोल है, हर बीमारी पर कंट्रोल है, लेकिन आहार विहार आयुर्वेद का पहला फार्मूला है कि आहार विहार पर हम अपने पर जोर ध्यान दें तो हम सुरक्षित रह सकते हैं। पंचकर्म का भी आपने सिद्धांत बताया और आयुर्वेद कई चीजों की जननी भी है, ये भी हम सब जानते हैं। सुश्रुत का आपने नाम लिया, चरक है, धन्वंतरी है। तो डॉक्टर अनिल वर्मा जी, आप हमारे श्रोताओं के बीच में आए और शिवपुरी जिले में आयुष विभाग की सुविधाएं और यहाँ से कैसे लाभ लिया जा सकता है, हमारे श्रोताओं के मन में कई संशय, कई जिज्ञासाएं, कई विचार जो उमड़ते रहते हैं और जिनसे वो खुद निजात नहीं पा पाते, आज जिम्मेदार व्यक्ति जिला आयुष अधिकारी डॉक्टर अनिल वर्मा जी स्वयं जवाब दे रहे हैं। तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई संशय की जरूरत नहीं है। डॉक्टर साहब, मैं सही कह रहा हूँ
2: जी?
1: मतलब जनता और श्रोता निष्फिक्र होकर जा सकते हैं?
2: जी, हमारे जितने भी औषधालय प्रतिदिन खुलते हैं, अवकाश के दिनों को छोड़कर आप वहाँ पर जाकर स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं।
1: तो डॉक्टर अनिल वर्मा जी, जिला आयुष अधिकारी, हमारे श्रोताओं के बीच में आप रहे, आपने जानकारी दी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
0: भैया, अभी अपन सुन रहे थे शिवपुरी जिले में आयुष विभाग की सुविधाएं और इस विषय पर जानकारी दे रहे थे डॉक्टर अनिल वर्मा और इनसे बातचीत कर रहे थे अपन भैया समर्थ अग्रवाल। और अब आपको सुनाते हैं कुछ जरूरी संदेश।
3: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
4: आरबीआई कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: भैया अब आपको सुनवाते हैं एक और लोकगीत जिसे गाओ है सुधीर बाबू पांडे ने। तो चलो सुनते हैं प्यारो सो लोकगीत।

भैया अभी अपन सुन रहे थे सुधीर बाबू पांडे को गाओ ये लोकगीत। और अब बात कर रहे थे भैया आज के मौसम की। आज शिवपुरी जिला को अधिकतम तापमान रहो 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम रहो 26 डिग्री सेल्सियस। मौसम में आर्द्रता यानी नमी रही 64%। और हवा की भैया बात करें तो वह रही 11 किलोमीटर प्रति घंटा। और अब भैया चलत चलत आपको कल के कार्यक्रम चौपाल में चर्चा को विषय बता दें। कल चौपाल में चर्चा रहेगी सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़ें सब बढ़ें, और अपने पंचायतों को समृद्ध बनाने हेतु सामूहिक उत्तरदायित्व। और किसानवाड़ी में चर्चा रहेगी प्राकृतिक खेती, खुशहाल किसान, और प्राथमिकता दें खरीफ फसलों में मिलेट्स को। और इसी के संग कार्यक्रम चौपाल को समय अब यहीं पर समाप्त होते हैं। अपने वैन शिल्पा को आज्ञा दो। राम राम, जय जवान

0: सुर्खियों में
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए प्रधानमंत्री की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा और इसके रणनीतिक महत्व पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार प्रोफेसर राहुल मिश्रा। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं श्रेया पाठक।
2: नमस्कार, सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के अंक में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिवसीय यात्रा पर। इस यात्रा का उद्देश्य तीनों देशों के साथ भारत के संबंधों को नई मजबूती देना है। व्यापार हो, निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, शिक्षा, नई तकनीक और भारतीय समुदाय जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी बातचीत होगी। साथ ही यह यात्रा

0: भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी, महासागर विजन और फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रीजन के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को भी आगे बढ़ाने वाली मानी जा रही है। इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ प्रोफेसर राहुल मिश्रा। प्रोफेसर राहुल मिश्रा जी, आपका हमारे कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: सबसे पहला प्रश्न जो मैं आपसे करना चाहूंगी वो ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो ये यात्रा है इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की, यह तीनों देशों की यात्रा भारत के लिए कितनी महत्वपूर्ण है और आप इस दौरे को किस नजरिए से देखते हैं?
1: देखिए, तीनों ही देश और खास तौर से जो प्रधानमंत्री मोदी जी की यात्रा का जो पहला चरण है इंडोनेशिया की यात्रा, ये मुझे लगता है कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसके कई वजह हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इंडोनेशिया आसियान क्षेत्र का, दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा देश है, जनसंख्या के मामले में भी, अपनी आर्थिक शक्ति के मामले में भी, और उसकी जो सामरिक जो महत्व है उसका दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्र में वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए इंडोनेशिया केंद्रीय स्थान रखता है भारत की एक्ट ईस्ट नीति में। साथ ही साथ भारत और इंडोनेशिया के बीच में, खासतौर से प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति प्रबोवो के बीच में जो संबंध है, उनकी जो पर्सनल डिप्लोमेसी है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। 2018 में जब कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दोनों देशों के बीच में साइन हुई थी, तब से लेकर के अभी तक खासी प्रगति दोनों देशों के बीच में हुई है। हमें मालूम है कि पिछले ही साल 2025 में राष्ट्रपति प्रबोवो हमारे भारत के गणतंत्र दिवस पर गेस्ट ऑफ ऑनर थे और राष्ट्रपति प्रबोवो की प्रधानमंत्री मोदी की लगातार बैठकें होती रही हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि दोनों ही देशों के नेता अपने संबंधों को लेकर के सजग हैं और संबंधों को आगे की दिशा में बढ़ाना चाहते हैं। इंडोनेशिया की जहां तक आर्थिक रूप से उसकी जहां तक महत्ता है, वो ये है कि 25 बिलियन का व्यापार दोनों देशों के बीच में है, जिसे इनफॉर्मल अगर हम ट्रेड जोड़े तो वो उससे भी ज्यादा होता है। दोनों ही देशों की इंडो पैसिफिक को लेकर के अपनी एक जो नीति है उसमें समानताएं बहुत सारी हैं। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को लेकर के इंडोनेशिया भारत से सीखना चाहता है। भारत ब्रिक्स प्रेसिडेंसी में इंडोनेशिया का महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि इंडोनेशिया ब्रिक्स में शामिल होकर के और अपना योगदान देना चाहता है। इसके पहले हमने देखा कि इंडोनेशिया और भारत दोनों ही देशों ने G20 की अध्यक्षता की और किस तरह उन्होंने तमाम जो देश हैं जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को लेकर के ग्लोबल साउथ के विकासशील जो देश हैं वो कैसे अपनी विदेश नीति और सामरिक नीति को आगे बढ़ा रहे हैं। तो मुझे लगता है इंडोनेशिया की यात्रा इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। ऑस्ट्रेलिया की प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा वहां के प्रधानमंत्री अल्बनीजी के निमंत्रण पर है। ऑस्ट्रेलिया, जैसा कि हमें पता है कि भारत का एक बहुत महत्वपूर्ण साझेदार है ओशानिया या पैसिफिक आइलैंड के क्षेत्र में, दक्षिण इंडियन ओशन के क्षेत्र में, और वहां पर एक दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ऑस्ट्रेलिया और भारत दोनों ही क्वाड के सदस्य देश हैं और इस लिहाज से क्षेत्रीय संतुलन को लेकर के, क्षेत्रीय सामरिक संतुलन को लेकर के दोनों ही देश का जो नजरिया है वो एक जैसा है और दोनों ही देश चाहते हैं कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में रूल्स बेस्ड ऑर्डर बना रहे और इस बात को लेकर के दोनों ही देशों में डिफेंस को लेकर के, सुरक्षा और सामरिक मुद्दों को लेकर के दोनों देशों के बीच में लगातार डायलॉग्स और एक्सचेंजेस भी होते रहे। क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर के, सप्लाई चेन रेजिलियंस को लेकर भारत, ऑस्ट्रेलिया दोनों ही देश कनाडा के साथ भी और जापान के साथ भी मिलकर के तमाम तरीके के ट्राइलैटरल मैकेनिज्म्स की भी बात कर रहे हैं। तो इस लिहाज से ऑस्ट्रेलिया का दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में व्यापार समझौता होने के बारे में भी काफी बातें चल रही हैं, तो उसको नतीजे तक पहुंचाने के लिए मुझे लगता है कि ये कोशिश होगी। और तीसरा देश है न्यूजीलैंड, जहां पर पिछले साल हमने देखा था कि न्यूजीलैंड की तरफ से भारत की यात्रा हुई थी 2025 मार्च में। न्यूजीलैंड की यात्रा जो है वो इस लिहाज से महत्वपूर्ण है क्योंकि दोनों देशों के संबंधों को एक नई दिशा, एक नई गति देनी है। वैसे भी भारत के प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड की ये 40 सालों में पहली यात्रा है, तो इस लिहाज से जो कूटनीतिक संबंध दोनों देशों के बीच में है उनको भी आगे बढ़ाने के लिए न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा महत्वपूर्ण है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच में व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर हो चुके हैं लेकिन उस अभी तक रेटिफिकेशन, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। तो कौन से वो मुद्दे हैं, लेबर मोबिलिटी या एग्रीकल्चर सेक्टर या फार्मास्यूटिकल्स, कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें हम अपनी शुरुआत पहले करें और कौन से वो क्षेत्र हैं जिनमें हमें संभल कर और समझबूझ से चलना है, ये सभी मुद्दे भी भारत और न्यूजीलैंड के संबंधों में आएंगे। पिछले कुछ वर्षों में देखा है कि भारतीयों का न्यूजीलैंड जाना, सर्विसेज के लिहाज से, एग्रीकल्चर के लिहाज से, वहां पर जाकर छोटे मोटे व्यवसाय या स्टार्टअप्स खोलने के लिहाज से न्यूजीलैंड एक बड़ा आकर्षण का केंद्र रहा है। तो भारतीयों और भारतवर्षियों की भी वहां पर जो मौजूदगी है उस हिसाब से भी न्यूजीलैंड की यात्रा प्रधानमंत्री की बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर हम देखें इस पूरी तीनों देशों की यात्रा को अगर हम पिछली जो यात्राएं हुई हैं प्रधानमंत्री की उनसे अगर हम जोड़ के देखें और साथ जापान की प्रधानमंत्री सनाई ताकायची की भारत यात्रा से जोड़कर देखें तो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में तमाम जो उभरती हुई शक्तियां हैं और तमाम जो मिडिल पावर्स हैं, भारत जैसे राइजिंग पावर्स और ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड, इंडोनेशिया जैसे जो मिडिल पावर्स हैं, ये सभी साथ मिलकर अपनी ऊर्जाओं को, अपनी जो चिंताएं हैं सामरिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, उनको मिलकर साझा करना चाहते हैं, उनको मिलकर बैठकर उनको साझा करना चाहते हैं और उनको बात के मद्देनजर कि चीन और अमेरिका के जो दोनों ही देशों की जो विदेश और सामरिक नीतियां हैं वो इंडो पैसिफिक के छोटे और मझोले देशों के हितों में नहीं है, तो कैसे उन चिंताओं को ध्यान में रखते हुए ये देश इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपनी विदेश और सामरिक नीति को आगे बढ़ाए, ये मुझे लगता है कि एक बड़ा
0: जी
1: कनेक्टिंग फैक्टर है प्रधानमंत्री मोदी की पिछली यात्राओं की और साथ में इन तीन देशों की यात्रा के साथ।
0: प्रोफेसर मिश्रा, जैसा आपने अभी बताया कि इंडो पैसिफिक का कितना महत्वपूर्ण एक मुद्दा है, तो प्रधानमंत्री ने ये भी कहा है कि ये यात्रा भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी, महासागर विजन और मुक्त एवं खुले हिंद प्रशांत यानी कि फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को और मजबूत करेगी। तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं?
1: देखिए, इंडो पैसिफिक जो क्षेत्र है उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कभी भी भारत ने किसी दूसरे देश को नहीं दी, इंडोनेशिया ने भी किसी दूसरी महाशक्ति को नहीं दी। इंडो पैसिफिक का जो क्षेत्र है उसके कई महत्वपूर्ण पहलू हैं, कई डिफाइनिंग फीचर्स हैं। उसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है अमेरिका और चीन के बीच में सामरिक जो रस्साकशी है, लेकिन इसके साथ ही दो और महत्वपूर्ण पहलू हैं। पहला, भारत की और भारत के साथ जापान की, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, इन तमाम देशों की इंडो पैसिफिक को लेकर के एक बड़ी ही मुखर और बहुत ही स्पष्ट नीति का होना कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में हम किन्हीं भी दूसरे देशों को हम इंडो पैसिफिक क्षेत्र की सुरक्षा या रूल्स बेस्ड ऑर्डर से खिलवाड़ करने नहीं देंगे। तो इस लिहाज से हम देखते हैं कि भारत की नीतियों में और ऑस्ट्रेलिया, जापान या इंडोनेशिया की जो खुले और मुक्त इंडो पैसिफिक क्षेत्र की जो नीति है उसमें बड़ी समानताएं हैं, और इन्हीं समानताओं के चलते आसियान की भी अपनी एक इंडो पैसिफिक का आउटलुक है, आसियान आउटलुक ऑन इंडो पैसिफिक, जिसमें बहुत सारी समानताएं भारत के इंडो पैसिफिक विजन से या महासागर विजन से। तो क्योंकि इन तमाम देशों की इंडो पैसिफिक को लेकर के उनकी चिंताएं, उनकी आकांक्षाएं और उनके हित आपस में जुड़े हुए हैं, तो इसलिए ये देश चाहते हैं कि इंडो पैसिफिक को लेकर के एक बड़े लेवल पर एक कंसेंसस रहे और इस कंसेंसस के साथ साथ इन देशों के बीच में आपसी सामंजस्य बढ़े, और यही मुझे लगता है इंडो पैसिफिक क्षेत्र को सुरक्षित और स्थिर और शांतिपूर्ण बनाने में मदद करेगा, और यही इन देशों की भूमिका है इंडो पैसिफिक को लेकर।
0: इस दौरे में व्यापार, निवेश, शिक्षा या फिर नवाचार और कई सारी नई तकनीकों पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है। इन क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने से भारत को क्या प्रमुख लाभ मिल सकते हैं, इस पर आप हमारे श्रोताओं को थोड़ा समझाएं।
1: देखिए, भारत के साथ तमाम देशों के, भारत के साथ इंडोनेशिया का जहां तक सवाल है व्यापार और निवेश का, ऊर्जा के क्षेत्र में, नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में आपसी व्यापार को खास तौर पर मैन्युफैक्चरिंग गुड्स के क्षेत्र में आगे बढ़ाना और सर्विसेज सेक्टर में भारत की अपनी जो क्वालिटीज हैं उसको इंडोनेशिया तक पहुंचाना और भारत और इंडोनेशिया के व्यापार को आगे आने वाले वर्षों में 50 बिलियन तक पहुंचाने की कोशिश ये दोनों देश कर रहे हैं। तो भारत और इंडोनेशिया के बीच में व्यापार को लेकर के बहुत सारी कॉम्प्लीमेंटैरिटीज है, लेकिन दोनों देशों के बीच में कॉम्पिटिशन भी बहुत ज्यादा है, और यही भारत और इंडोनेशिया दोनों ही देश ये कोशिश कर रहे हैं कि कैसे अपनी कॉम्प्लीमेंटैरिटीज को आगे बढ़ाते हुए कंपटीशन को कम से कम रखा जाए, आपसी सामंजस्य से ये दोनों अर्थव्यवस्थाएं तेजी से आगे बढ़े। जैसे लेबर मोबिलिटी एक बहुत बड़ा उसका पहलू है, जिसमें हम देखते हैं कि दक्षिण पूर्व एशिया में इंडोनेशिया का ब्लू कॉलर जो लेबर है वो तमाम देशों, चाहे वो सिंगापुर हो, चाहे मलेशिया हो, ब्रुनेई हो, वहां मौजूद होता है। भारत की भी लेबर मोबिलिटी को लेकर के, आउटबाउंड लेबर मोबिलिटी को लेकर के बड़ा दखल रहा है, और भारतीय आमतौर पर ब्लू कॉलर जॉब्स में भी और व्हाइट कॉलर सर्विसेज सेक्टर में भी भारत से बाहर जाते रहे हैं, और दक्षिण पूर्व एशिया एक बड़ा आकर्षण का केंद्र रहा है। तो इस लिहाज से दोनों देशों के बीच में आर्थिक कॉम्प्लीमेंटैरिटी को कैसे बढ़ा जाए ये महत्वपूर्ण है। इंडोनेशिया में कोयले को लेकर के और ऑयल और गैस को लेकर के तमाम बातचीत चल रही है, अभी कोई इस संदर्भ में तार्किक परिणति तक कोई अग्रीमेंट पहुंचा नहीं है, लेकिन इस पर मुझे लगता है काफी बातचीत हो।
2: होगी?
1: ऑस्ट्रेलिया के साथ, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप या आरसीईपी जिसे हम कहते हैं उसका एक हिस्सा है। अगले साल आरसीईपी के 10 साल भी पूरे हो रहे हैं, तो ये कोशिश जरूर होगी कि भारत को आरसीईपी में लाया जाए और ऑस्ट्रेलिया के साथ जो व्यापार समझौता है उसके तहत भी ऑस्ट्रेलिया ये कोशिश जरूर करेगा कि भारत एक क्षेत्रीय आर्थिक इकोसिस्टम का भी हिस्सा बने। ऑस्ट्रेलिया के साथ जहां तक संबंधों का सवाल है, भारत की नीति ये रही है कि ऑस्ट्रेलिया से क्रिटिकल मिनरल्स, यूरेनियम जिस पर एग्रीमेंट हो चुका है, और तमाम ये इस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं उसको इंपोर्ट किया जाए। एग्रीकल्चर सेक्टर में, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अपने आप में एक बड़ी शक्ति है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर को आप

0: कोशिश की है कि न्यूजीलैंड का भारत में निवेश हो, निवेश भारत में हुआ भी है, उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए। दोनों देशों के बीच में व्यापार अभी $3 बिलियन भी नहीं पहुंचा है, तो मुझे लगता है उस क्षेत्र में कैसे दोनों देशों के व्यापार को आगे बढ़ाया जाए, ये भारत की कोशिश है और मुझे लगता है इस पर भी काम इस यात्रा के दौरान होगा।
1: प्रधानमंत्री की जो ये तीनों देशों की यात्रा है, इसमें उन्होंने भारतीय समुदाय से भी मुलाकात करने की बात कही है। विदेशों में रहने वाले जो भारतीय हैं, जो भारत की अर्थव्यवस्था, निवेश, संस्कृति और वैश्विक छवि को मजबूत करने में किस तरह से योगदान देते हैं, और आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री की जो ये समुदाय से जो उनका ये मुलाकात होगा वो किस तरीके से महत्वपूर्ण है?
0: देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी की विदेश नीति में भारतीयों का और भारतवंशियों का, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं NRIs, नॉन रेजिडेंट इंडियंस, और PIOs, पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, दोनों पर बहुत खास ध्यान रहा है। तो भारतीयों और भारतवंशियों से हमेशा अपनी हर यात्रा के दौरान उन्होंने उनके साथ बातचीत की है, उनके साथ मुलाकात की है, उनको संबोधित किया है और उनके दुख दर्द को जानने की कोशिश की है, उनकी इच्छाओं आकांक्षाओं को भी समझने की कोशिश की है। इंडोनेशिया में भी भारतीयों के साथ मुलाकात, भारतवंशियों के साथ मुलाकात होगी। ऑस्ट्रेलिया में बड़े स्तर पर होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में लाखों की संख्या में भारतीय और भारतवंशी रहते हैं। भारतीयों के तौर पर ज्यादातर भारतीय विद्यार्थी जो वहाँ हायर एजुकेशन में जाते हैं, टर्शरी एजुकेशन में, MA या प्रोफेशनल कोर्सेज या PhD के लिए जाते हैं, और जो वहाँ पे सर्विसेज सेक्टर में भारत के प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स वहाँ पे मौजूद हैं, और साथ ही साथ डायस्पोरा के जो तमाम लोग हैं जिनकी एक अच्छी खासी संख्या ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त है। न्यूजीलैंड में भी अब भारतीयों और भारतवंशियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि न्यूजीलैंड में भी सर्विसेज सेक्टर में भारत एक बड़ी शक्ति के तौर पर उभरा है। भारतवंशियों की भी अब संख्या बढ़ रही है, क्योंकि तमाम भारतीयों, खासतौर से पंजाब जैसे प्रदेश देशों से तमाम भारतीय न्यूजीलैंड में जाकर माइग्रेट हो गए हैं और वहां सेटल हो गए हैं, तो उनको भी समझने और उनके साथ भी बातचीत करने की कोशिश होगी। डायस्पोरा हमेशा से प्रधानमंत्री मोदी जी की विदेश नीति में एक बहुत अहम स्तंभ रहा है, और इसको इम्पोर्टेंस इस भारतीय विदेश नीति में आज दी जा रही है, ये मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के तमाम इन तीनों देशों में जो संबोधन होंगे उनसे ये ज्यादा स्पष्ट होगा।
1: प्रोफेसर राहुल मिश्रा जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहुत ही सरल भाषा में आपने हमारे श्रोताओं को समझाया कि यह प्रधानमंत्री की जो यात्रा है तीनों देशों की, यह कितनी महत्वपूर्ण है और ये विकसित भारत का लक्ष्य पाने में कितनी मदद करेगी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: सुर्खियों में
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुर्खियों में, यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है।

लीजिए, एक बार फिर हाजिर हैं आपका अपना कार्यक्रम फिल्म संगीत लेकर। कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म कयामत से कयामत तक का बहुत ही प्यारा सा गीत, अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज़ में। मजरू सुल्तानपुरी के बोल हैं और धुन बनाई है आनंद मिलंद ने।

फिल्म संगीत के कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं कव्वाली, जिसे हमने लिया है फिल्म ये दिल आशिकाना से। आवाजें हैं साबरी बोस, सोनू निगम, अलका याग्निक, तौसीफ अख्तर और साथियों की। समीर के बोल हैं और संगीत से सजाया है नदीम श्रवण ने।

इस खूबसूरत कव्वाली के बाद कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं महबूब का लिखा हुआ गीत। इस्माइल दरबार का संगीत है, फिल्म का नाम है हम दिल दे चुके सनम, और आवाजें हरिहरन, कविता कृष्णमूर्ति और साथियों की।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में अगला प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से होगा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे के पहले चरण में जकार्ता पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी 125वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी। कहा, उनका दृष्टिकोण आधुनिक भारत का मार्गदर्शन करता रहेगा। राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार किया। कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव नियुक्त किया गया। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित। कल कच्छ, सौराष्ट्र, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में तेज बारिश का रेड अलर्ट। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई को अंतिम विदाई देने के लिए तेहरान में बड़ी संख्या में लोग जमा हुए। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात राउंड ऑफ 16 में पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में आज शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया ने 2018 में अपने संबंधों का स्तर बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचाया, जिससे लोगों को लाभ हुआ है। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए पारंपरिक इंडोनेशियाई और भारतीय नृत्य प्रस्तुतियों वाला एक शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह दोनों देशों के बीच गहरे सभ्यतागत और सांस्कृतिक संबंधों को

0: दर्शाता है। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वार्ता में व्यापार, निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, डिजिटल तकनीक और सांस्कृतिक आदान प्रदान के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इससे भारत और इंडोनेशिया के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होगी। आकाशवाणी से बात करते हुए भारतीय समुदाय के सदस्यों ने प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर उत्साह व्यक्त किया और भरोसा जताया कि इससे द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे तथा व्यापार और निवेश के लिए नए अवसर सृजित होंगे। जकार्ता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि तीनों देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी के विचारों ने आधुनिक भारत को नई दिशा दी।
2: आज देश की धरती, पश्चिम बंगाल की धरती, अपने एक महान सपूत, एक महान देशभक्त, भारत की अखंडता के लिए समर्पित एक युगद्रष्टा को श्रद्धा पूर्वक स्मरण कर रही है। मैं डॉक्टर मुखर्जी की 125वीं जन्म जयंती के अवसर पर उन्हें नमन करता हूं, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।
1: श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार उनकी जयंती के उपलक्ष्य में 2 वर्ष तक चलने वाला राष्ट्रीय समारोह आयोजित कर रही है। उन्होंने बताया कि ये समारोह पिछले वर्ष 6 जुलाई से शुरू हुआ था और अगले वर्ष 6 जुलाई तक चलेगा। गृहमंत्री ने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।
2: श्यामा प्रसाद मुखर्जी अगर न होते तो आज कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं होता। यही वो महापुरुष थे जिन्होंने एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान नहीं चल सकते। न केवल वो आंदोलन की शुरुआत की, इसके लिए अपने प्राण भी नौछावर कर दिए।
1: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भोपाल के सतगढ़ी में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मार्ट औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखी। मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य डॉ. अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। दोनों ने राम मंदिर में दान राशि में कथित गड़बड़ी के मामले में नाम सामने आने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। आज शाम अयोध्या में हुई बैठक के बाद ट्रस्ट ने नए महासचिव की नियुक्ति तक कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव बनाया है। ट्रस्ट ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति का भी फैसला किया है। इसके लिए 3 सदस्यीय समिति बनाई गई है जो उपयुक्त नामों की सिफारिश करेगी। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने कहा कि पूरे मामले में किसी साजिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ट्रस्ट ने कहा कि दान में मिली सभी वस्तुएं सुरक्षित हैं।
3: अनेक अच्छे अच्छे पदार्थ जो दिए गए, अनेक वस्तुएं जो प्रदान की गई, वे भी कहाँ गुल हो गई, वे कहाँ चली गई। उन सारी वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों ने आपके सामने आपको दिखाने के लिए लाया है। हम आपको दिखाएंगे और वे सारी वस्तुएं जिनका वर्णन आता है, इन सब को हम आज आपके सामने यहाँ पर रख करके दिखाने वाले हैं। किस प्रकार की 2800 वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों के पास उपलब्ध है और वे सारी वस्तुएं सुरक्षित है।
1: रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि इस वर्ष भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए 300 से अधिक विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी। ये नियमित रूप से चलाई जा रही 800 से अधिक ट्रेनों के अतिरिक्त हैं। नई दिल्ली में श्री वैष्णव ने कहा कि पुरी रेलवे स्टेशन पर 30,000 यात्रियों के लिए अस्थायी व्यवस्था की जाएगी।
4: पुरी में महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ यात्रा का पावन पर्व है, उसमें 300 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई और आने वाले समय में केरलम में ओणम के फेस्टिवल के उपलक्ष्य में

0: 100 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी।
1: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज उत्तराखंड के टनकपुर और महाराष्ट्र के नांदेड़ स्थित हजूर साहिब के बीच नई रेल सेवा का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया। उन्होंने टनकपुर पीलीभीत रेल सेवा का विस्तार शाहजहांपुर तक करने की भी शुरुआत की। श्री वैष्णव ने कहा कि नई रेल सेवा उत्तराखंड के तराई क्षेत्र के लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरा करेगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज राष्ट्रीय राजमार्ग माल परिवहन प्रबंधन लिमिटेड की समीक्षा बैठक की। बैठक में देश भर में बनाए जा रहे बहुमाध्य माल परिवहन पार्क, रोपवे और राजमार्गों के किनारे यात्रियों के लिए विकसित की जा रही सुविधाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। श्री गडकरी ने कहा कि इससे सड़क, रेल और अन्य परिवहन साधनों के बीच बेहतर संपर्क स्थापित होगा। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि तकनीक आधारित द्विभाषी प्रबंधन शिक्षा से देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच शिक्षा की दूरी कम करने में मदद मिलेगी। नई दिल्ली से भारतीय प्रबंध संस्थान उदयपुर के नए ऑनलाइन द्विभाषी व्यवसाय प्रशासन स्नातक पाठ्यक्रम के उद्घाटन समारोह में उन्होंने कहा कि ये पाठ्यक्रम एक अनूठी पहल है जो सरल और आसानी से समझ में आने वाली भाषा में प्रबंधन शिक्षा उपलब्ध कराएगा।
2: इससे मैनेजमेंट एजुकेशन बाइलिंगुअल होने के कारण सरल भाषा में लोगों तक पहुंचे। उम्मीद करता हूं कि इसमें जो भाषा होगी वो ऐसी रखी जाएगी कि सभी को आसानी से समझ में आए, और साथ ही साथ ऑनलाइन होने के कारण काफी व्यापक प्रभाव इसका देखने को मिल सकता है।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। झारखंड से हमारे संवाददाता ने बताया है कि कई शहरी और ग्रामीण इलाकों में जलभराव हो गया है।
3: रांची सहित झारखंड के कई जिलों में पिछले दो दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जल जमाव की स्थिति बन गई है, जिससे लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के लिए राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश, 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं और वज्रपात की आशंका जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
1: महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे और मुंबई गोवा हाईवे पर हुए भूस्खलन का मलबा तुरंत हटाकर यातायात सामान्य करने के निर्देश दिए हैं। एक रिपोर्ट।
4: मुंबई और तटीय महाराष्ट्र के कई इलाकों में आज भी मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी रहा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एसडीआरएफ के अधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा की। उधर पुणे जिले के मावल तालुका के पाटन गांव में भूस्खलन की चपेट में आने से एक घर दब गया, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई। इस बीच आईएमडी ने मंगलवार के लिए पालघर, रायगढ़ और नासिक और पुणे के घाट क्षेत्र में रेड अलर्ट जारी किया है। नासिक जिले में बादल फटने जैसे भारी बारिश की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। जिले के संवेदनशील इलाकों में स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: मौसम विभाग ने गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में कल मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और कर्नाटक में भी मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरलम, माहे, ओडिशा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भी अगले 3 से 4 दिन तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। विदेश मंत्री एस जयशंकर कतर की यात्रा समाप्त करने के बाद पश्चिम एशिया यात्रा के दूसरे चरण में बहरीन पहुंच गए हैं। डॉक्टर जयशंकर ने मनामा में बहरीन के विदेश मंत्री डॉक्टर अब्दुल लतीफ बिन राशिद अल जायनी से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने भारतीय समुदाय का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए बहरीन के विदेश मंत्री की सराहना की। ईरान की राजधानी तेहरान में आज सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई की अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। खामनेई और उनके परिवार के सदस्यों का पार्थिव शरीर एक विशेष वाहन पर रखा गया है। इन लोगों की 28 फरवरी को इसराइल और अमेरिका की ओर से किए गए हमलों में मृत्यु हो गई थी। ये शोक शनिवार से शुरू हुआ है और बृहस्पतिवार तक जारी रहे।

0: ईगा आयतुल्ला अली खामनी को उनके जन्म स्थान मशहद स्थित इमाम रजा की दरगाह में सुपुर्द खाक किया जाएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच लोगों ने भारत सरकार से सहायता की अपील की है। पिछले एक महीने से क्षेत्र में प्रदर्शन जारी है। लोगों ने भारत से दवाइयां और जरूरी खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। पिछले 20 दिन से इस क्षेत्र में राशन और दवाइयों की आपूर्ति रोक दी गई है। बॉम्बे शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 521 अंक बढ़कर 78,285 पर बंद हुआ। निफ्टी 160 अंक की बढ़त के साथ 24,430 पर दर्ज हुआ। जिम्बाब्वे दौरे के लिए भारतीय क्रिकेट टीम की घोषणा कर दी गई है। भारत 23, 25 और 26 जुलाई में 3 T20 मैच खेलेगा। श्रेयस अय्यर कप्तान और तिलक वर्मा उपकप्तान होंगे। 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी, रिंकू सिंह, प्रिंस यादव, यश ठाकुर और अशोक शर्मा भी टीम में शामिल हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में देर रात 12:30 बजे पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा। एक अन्य मुकाबले में सुबह 5:30 बजे अमेरिका का सामना बेल्जियम से होगा। इससे पहले इंग्लैंड ने मैक्सिको को और नॉर्वे ने ब्राजील को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में डिजिटल इंडिया प्रौद्योगिकी के माध्यम से नागरिकों का सशक्तिकरण विषय पर राष्ट्रीय गवर्नेंस डिवीजन के अध्यक्ष मुख्य कार्यकारी अधिकारी नंद कुमारम और पूर्व राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक डॉक्टर गुलशन राय के साथ परिचर्चा प्रसारित करेगा। श्रोता स्टूडियो में उपस्थित हमारे विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। आप अपने सवाल #askar के साथ एक्स पर भी पोस्ट कर सकते हैं। भारतीय नौसेना शनिवार को विशाखापट्टनम में प्रोजेक्ट 17A के छठे स्वदेशी स्टील फ्रिगेट युद्धपोत महेंद्रगिरी को अपने बेड़े में शामिल करेगी। इस आधुनिक युद्धपोत की रूपरेखा भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो ने तैयार किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे के पहले चरण में जकार्ता पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी 125वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी। कहा, उनका दृष्टिकोण आधुनिक भारत का मार्गदर्शन करता रहेगा। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार किया। कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव नियुक्त किया गया। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित। कल कच्छ, सौराष्ट्र, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में तेज बारिश का रेड अलर्ट। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात राउंड ऑफ 16 में पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi arrives in Jakarta on the first leg of his three-nation tour to Indonesia, Australia and New Zealand. Prime Minister Modi pays tributes to Dr. Shyama Prasad Mukherjee on his 125th birth anniversary, says his vision continues to guide modern India. Ram Janmabhoomi Tirth Trust accepts resignations of General Secretary Champat Rai and Trust member Dr. Anil Mishra, appointed Krishna Mohan as Interim General Secretary. Heavy downpour affects normal life in Maharashtra, Gujarat and Jharkhand. Red alert issued for heavy rainfall in Kutch, Saurashtra, Madhya Maharashtra and coastal Karnataka tomorrow. Huge crowd gathers in Tehran to bid farewell to Iran's late Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei. And in FIFA World Cup, Portugal to take on Spain in round of 16 match at Arlington in US tonight. Prime Minister Narendra Modi arrived in Jakarta today on the first leg of his high-stake three-nation Indo-Pacific tour to Indonesia, Australia and New Zealand. Upon arrival at the Jakarta airport, Mr. Modi was personally received by Indonesian President Prabowo Subianto. Prime Minister Modi was accorded a grand and enthusiastic welcome from the local Indonesian community and the Indian diaspora. In a social media post, Mr. Modi said that India and Indonesia elevated the relations to a comprehensive strategic partnership in 2018, which has benefited the people. A report from a correspondent from Jakarta.

0: In FIFA World Cup, Portugal will take on Spain in a round of 16 match at Arlington in US tonight. In another match of 16 match, co-host US will face Belgium in Seattle tomorrow morning. England, Norway, Morocco and France have already entered the quarterfinals. England stormed into the quarterfinals with a dramatic 3-2 victory over co-host Mexico in the round of 16 match this morning. In the Wimbledon tennis, 9 seed Flavio Cobolli of Italy has entered the men's singles quarterfinal. He defeated 5th seed Alex de Minaur of Australia in straight set 7-5, 7-6, 6-3 this evening. World number 1 and defending champion Yannick Sinner will face Jan-Lennard Struff of Germany in the quarterfinal match tomorrow. In another quarterfinal fixture, Serbia's Novak Djokovic will take on Canadian player Felix Auger-Aliassime. In the women's singles quarterfinals, American Jessica Pegula will clash with compatriot Coco Gauff, while Czech player Karolina Muchova will take on Japan's Naomi Osaka tomorrow. In a bilingual live phone-in program, Public Speak tonight, we will bring discussion on Digital India, Empowering Citizens Through Technology. President and CEO, National E-Governance Department, Nand Kumaram, and former National Cybersecurity Coordinator, Dr. Gulshan Rai, will be present in our studios to answer the queries of listeners. And you can ask questions on the subject on telephone number 011-2331-0481, 2371-7117, 2371-7106, and 2331-4444 from 9:30 p.m. onwards. And now, before we end the bulletin, here are the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi arrives in Jakarta on the first leg of his three-nation tour to Indonesia, Australia and New Zealand. Prime Minister Modi pays tributes to Dr. Shyama Prasad Mukherjee on his 125th birth anniversary, says his vision continues to guide modern India. Ram Janmabhoomi Tirth Trust accepts resignations of General Secretary Champat Rai and Trust Member Dr. Anil Mishra, appointed Krishna Mohan as Interim General Secretary. Heavy downpour affects normal life in Maharashtra, Gujarat and Jharkhand. Red alert issued for heavy rainfall in Kutch, Saurashtra, Madhya Maharashtra and coastal Karnataka tomorrow. And in FIFA World Cup, Portugal to take on Spain in the round of 16 match at Arlington in US tonight. And that is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं शबाना बेगम। वजीर आजम नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के तीन मुल्कों के अपने दौरे के पहले मरहले में जकार्ता पहुंच गए हैं। वजीर आजम मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी 125वीं सालगिरह के मौके पर खराज अकीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि उनका तसव्वुर नए भारत की रहनुमाई करता रहेगा। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने जनरल सेक्रेटरी चंपत राय और ट्रस्ट के मेंबर डॉक्टर अनिल मिश्रा के इस्तीफे मंजूर कर लिए हैं और कृष्ण मोहन को उबूरी जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर किया है। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में बहुत तेज बारिश के सबब मामूल की जिंदगी मुतासिर हुई है। कच्छ, सौराष्ट्र, मध्य प्रदेश और साहिली कर्नाटक में कल बहुत तेज बारिश के सिलसिले में रेड अलर्ट जारी किया गया है। ईरान के आजानी आला रहनुमा आयतुल्ला अली खामनई को अलविदा कहने के लिए तेहरान में लोग बहुत बड़ी तादाद में जमा हुए। फीफा वर्ल्ड कप में आज रात अमरीका में पुर्तगाल और स्पेन का मुकाबला राउंड ऑफ 16 के मैच में होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के दो रोजा सरकारी दौरे पर आज शाम जकार्ता पहुंचे। जकार्ता हवाई अड्डे पर इंडोनेशिया के सदर प्राबोवो सुबियांतो ने वजीर आजम का इस्तकबाल किया। नेज इंडोनेशिया के सीनियर वुजरा, इंडोनेशिया में भारतीय सफीर और भारतीय बिरादरी के अरकान ने जनाब मोदी का पुरजोश खैर मकदम किया। सोशल मीडिया पर जारी एक पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया ने 2018 में अपने ताल्लुकात को बुलंदी अता करके उसे जामे कलीदी शराकतदारी का दर्जा दिया था, जिससे अवाम को बहुत फायदा पहुंचा। पेश है एक रिपोर्ट।
2: वज़ीर-ए-आज़म मोदी के इस्तकबाल में इंडोनेशिया और भारत के रिवायती रक्स पेश किए गए, जिससे दोनों मुल्कों के दरमियान गहरे तहजीबी और सकाफती रिश्ते की अक्कासी होती है। इस मौके पर भारतीय बिरादरी ने जनाब मोदी का पुरजोश अंदाज में खैर मकदम किया। अपने दौरे में वजीर आजम मोदी इंडोनेशिया के सदर प्राबोवो सुबियांतो के साथ दो तरफा बातचीत करेंगे। तवक्को है कि बातचीत के दौरान तिजारत, सरमायाकारी, दिफा, बहरी सलामती, डिजिटल टेक्नोलॉजी और सकाफती तबादले को मरकजी हैसियत हासिल रहेगी। जिसे भारत

0: इंडोनेशिया के दरमियान जामे करीदी शराकत दारी को मजीद तकवीत मिलेगी। आकाशवाणी से बात करते हुए भारतीय बिरादरी के अराकीन ने वजीर आजम के दौरे से मुतालिक अपने जोश व जज्बे का इजहार किया और एतमाद जाहिर किया कि ये दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करेगा और तिजारत और सरमायाकारी के लिए नए इम्कान पैदा करेगा। भारतीय बिरादरी ने इंडोनेशिया में कारोबार करने में आसानी से मुतालिक भी मुस्बत ख्याल का इजहार किया और कहा कि भारतीय बिरादरी इंडोनेशिया के साजगार माहौल में अपनी सकाफती पहचान बरकरार रखते हुए इंडोनेशिया में रच बस गई है। इंडोनेशिया के जकार्ता से संदीपोन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए जमीर रजवी।
1: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक अजीम मुहिब वतन और भारत की सालमियत के लिए वक्फ एक दूरंदेश शख्सियत थे। डॉक्टर मुखर्जी की 125वें यौम पैदाइश के मौके पर अपने एक वीडियो पैगाम में जनाब मोदी ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी के ख्यालात नए भारत के लिए रहनुमाई फराहम करने में अहम रोल अदा कर रहे हैं।
2: आज देश की धरती, पश्चिम बंगाल की धरती, अपने एक महान सपूत, एक महान देशभक्त, भारत की अखंडता के लिए समर्पित एक युगद्रष्टा को श्रद्धा पूर्वक स्मरण कर रही है। आज हम उस विचार बीज का गुणगान कर रहे हैं जो आधुनिक भारत को दिशा देने में बड़ी भूमिका निभा रहा है। मैं डॉक्टर मुखर्जी की 125वीं जन्म जयंती के अवसर पर उन्हें नमन करता हूं, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।
1: उन्होंने कहा कि हुकूमत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं सालगिरह को 2 साल कौमी जश्न के तौर पर मना रही है। वजीर आजम ने कहा कि इन तकरीबात का आगाज पिछले बरस 6 जुलाई को हुआ था और ये अगले बरस 6 जुलाई तक जारी रहेंगी। उन्होंने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी की जिंदगी एक तरगीब है जो बताती है कि किस तरह एक तसव्वुर एक अवामी तहरीक के तौर पर अपनी तकमील को पहुंचता है। जनाब मोदी ने कहा कि बंगाल में बीजेपी हुकूमत की तश्कील के साथ रियासत इस कौमी एजाज के तई जोश व खरोश में मजीद इजाफा कर रही है और तहरीक देने वाली इस शख्सियत को याद कर रही है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती तकरीबात में शिरकत की। वजीर दाखिला ने आज कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आबाई घर का दौरा किया और उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। इससे पहले उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के 125 फीट ऊंचे मुजस्मे का संगे बुनियाद रखे जाने की तकरीब में शिरकत की। इन तकरीबात में मगरी बंगाल के वजीर आला शुभेंदु अधिकारी, मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत, राज्यसभा के रुकन शमक भट्टाचार्य और दीगर मौजूद शख्सियात ने शिरकत की। इससे पहले सुबह में वजीर आला शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता की रेड रोड पर हुई तकरीब में शिरकत की, जहां वजीर आला और दीगर मौजूद शख्सियात ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के मुजस्मे पर गुलहाय अकीदत पेश किए। मध्य प्रदेश के वजीर आला डॉक्टर मोहन यादव ने आज भोपाल के सदगढ़ी में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क का संगे बुनियाद रखा। 200 से ज्यादा सरकर्दा सनतकार और सरमायाकारों ने इस तकरीब में शिरकत की। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने आज जनरल सेक्रेटरी चंपत राय और ट्रस्ट के मेंबर डॉक्टर अनिल मिश्रा के इस्तीफे मंजूर कर लिए। दोनों लोगों ने राम मंदिर को दिए गए दान में खुर्द बुर्द के मुबैना मामले में अपने नाम आने के बाद अपने ओहदों से इस्तीफे दे दिए थे। कृष्ण मोहन को उस वक्त तक के लिए उबूरी जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया है जब तक कोई नया जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर नहीं हो जाता। उनकी शिकायत उस एफआईआर की बुनियाद बनी थी जिसके तहत दान में दी गई चीजों के सिलसिले में मुबैना बेजाब्तगियों का मामला दर्ज किया गया और जिसके बाद 8 लोगों को हिरासत में लिया गया। ट्रस्ट ने एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की तकरूरी का भी फैसला किया है। 3 मेंबरों पर मुश्तमिल एक कमेटी तश्कील दी गई है ताकि वो तकरूरी के लिए मुनासिब नाम तजवीज करे। मीटिंग के दौरान गोपाल नागरकोटे का नाम भी ट्रस्ट के खसूसी मदुईन की फहरिस्त से निकाल दिया गया। मीडिया से बात करते हुए ट्रस्ट के खजांची गोविंद देवगिरी ने बताया कि पूरे मामले के पीछे किसी साजिश के इम्कान को खारिज नहीं किया जा सकता। ट्रस्ट ने दान में दिए गए जेवरात और दीगर कीमती अशिया को दिखाया और वजाहत की कि दान में दी गई तमाम अशिया महफूज हैं और उनका बाकायदा हिसाब किताब रखा गया है। उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी शख्स दान में दी गई अशिया की तफसीलात ट्रस्ट से हासिल कर सकता है। कृष्ण मोहन ने एतराज किया कि इस तनाजे की वजह से ट्रस्ट की छवि को नुकसान पहुंचा है। अलबत्ता अपनी बाकायदा प्रेस रिलीज में ट्रस्ट ने कहा है कि राम के करोड़ों अकीदतमंद अब भी राम मंदिर में ऐसा यकीन रखते हैं जिसमें कोई तजलजल नहीं है और ये भी दान की अशिया में मुबैना खुर्दबुर्द का मामला सामने आने के बाद से राम मंदिर में आने वाले अकीदतमंदों की तादाद में कोई कमी नहीं आई है।

0: ये आकाशवाणी है। वजीर खारजा डॉक्टर जयशंकर कतर का अपना दौरा मुकम्मल करने के बाद मगरबी एशिया के अपने दौरे के दूसरे मरहले में आज बहरीन पहुंचे हैं। डॉक्टर जयशंकर ने मनामा में बहरीन के अपने हमनसब डॉक्टर अब्दुल लतीफ बिन राशिद अल ज़ियानी से मुलाकात की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि मीटिंग के दौरान उन्होंने भारतीय बिरादरी की खुशहाली को यकीनी बनाने के लिए बहरीन के अपने हमनसब की इंतहाई सताइश की। दोनों बुजुर्गों ने बाहमी तआवुन को मजीद बढ़ाने और खित्ते में जारी अहम वाकयात के तनाजुर में तबादला ख्याल भी किया। डॉक्टर जयशंकर मगरबी एशिया के अपने दौरे के हिस्से के तौर पर कुवैत और ओमान भी जाएंगे। रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि इस साल भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए 300 से ज्यादा खसूसी रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी। ये मामूल की 800 से ज्यादा रेलगाड़ियों के अलावा होंगी। आज नई दिल्ली में सहाफियों से बात करते हुए जनाब वैष्णव ने कहा कि अकीदतमंदों के लिए बिला रुकावट सफर को यकीनी बनाने के गरज से आने वाली रथ यात्रा के लिए रेलवे की वजारत ने आज तैयारियों का जायजा लिया।
1: पुरी में महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ यात्रा का पावन पर्व है, उसमें 300 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई और आने वाले समय में केरलम में ओनम के फेस्टिवल के उपलक्ष्य में 100 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी।
0: जनाब वैष्णव ने मजीद बताया कि इस साल ओनम त्योहार के दौरान 100 से ज्यादा खसूसी रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी। दो जबानों में नशर होने वाले हमारे लाइव फोन इन प्रोग्राम पब्लिक स्पीक में आज रात डिजिटल इंडिया टेक्नोलॉजी के जरिए भारत को बाख्तियार बनाने के मौजू पर तबादला ख्याल होगा। कौमी ई गवर्नेंस महकमे के सदर और सीईओ नंद कुमारम और कौमी साइबर सिक्योरिटी के साबिक कोऑर्डिनेटर डॉक्टर गुलशन राय हमारे सामईन के सवालों का जवाब देने के लिए स्टूडियो में मौजूद रहेंगे। आप इस मौजू पर रात 9:30 बजे से इन टेलीफोन नंबरों पर फोन करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। नंबर है 01123104812371712371716। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर पीओजेके के अवाम की भारतीय हुकूमत से मदद की अपील खित्ते में जारी बहरान की गहराई को उजागर करती है। पीओजेके में एक महीने से ज्यादा वक्त से एहतजाज जारी है। एक सरकारी अहलकार ने बताया कि अपील की नौयत बिलखसूस इसलिए तशवीशनाक है कि पीओजेके के लोग भारत से दवाइयां और जरूरी गजाई अशिया तलब कर रहे हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की हिदायत पर पाकिस्तानी इदारों ने पिछले 20 दिन से खित्ते के लिए राशन और दवाइयों की सप्लाई रोक दी है। लोगों को गजाई साजो सामान की इंतहाई कमी का सामना है। इस नाकाबंदी का आगाज गजाई अशिया की सप्लाई की मौतली से हुआ और बाद में इसमें दवाइयां भी शामिल हो गईं। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने भारतीय हुकूमत से लाइन ऑफ कंट्रोल खोलने की अपील की है। ये दरख्वास्त पाकिस्तानी फौज के उस हालिया फैसले के तनाजुर में सामने आई है जिसमें उसने कहा है कि अगर एहतजाज में कमी ना आए तो गोलियां चलानी शुरू कर दी जाएं। इधर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने पाकिस्तानी हुकूमत को उसकी मांगें पूरी करने के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। इंसानी हकूक के कौमी कमिश्नर ने कर्नाटक के शहर बेंगलुरु में पत्थर की एक कान में ग्रेनाइट की एक बड़ी चट्टान गिरने के सबब 7 मुहाजिर मजदूरों की मुबैना हलाकत के सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी को नोटिस जारी किया है। तिजारत और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने आज कहा कि टेक्नोलॉजी पर मबनी दो जबानों पर मुश्तमिल मैनेजमेंट की तालीम देही शहरी फर्क को खत्म करने और हर एक बासलाहियत व जरूरतमंद तलबा को उनके हालात से कदा नजर मयारी तालीम तक रसाई को यकीनी बनाएगी। जनाब गोयल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट उदयपुर में एक नए कोर्स को नई दिल्ली से वर्चुअल इफ्तिताह के मौके पर इजहार ख्याल कर रहे थे।
2: इसमें मैनेजमेंट एजुकेशन बाइलिंगुअल होने के कारण सरल भाषा में लोगों तक पहुंचे। उम्मीद करता हूं कि इसमें जो भाषा होगी वो ऐसी रखी जाएगी कि सभी को आसानी से समझ में आए और साथ ही साथ ऑनलाइन होने के कारण काफी व्यापक प्रभाव इसका देखने को मिल सकता है।
0: भारतीय महकमा मौसमियात ने गुजरात सौराष्ट्र कच्छ मध्य महाराष्ट्र साहिली कर्नाटक के दूरदराज मकामात पर कल शदीद से शदीद तर बारिश के इम्कान के तनाजुर में रेड अलर्ट जारी किया है। महकमे ने अंडमान निकोबार जजायर आंध्र प्रदेश गंगाई मगरबी बंगाल अरुणाचल प्रदेश आसाम मेघालय छत्तीसगढ़ नागालैंड मणिपुर मिजोरम और त्रिपुरा में अगले 3 से 4 दिन के दौरान गरज चमक व तेज हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई की है। मुंबई और साहिली महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है जिससे मामूल की जिंदगी में रखना पड़ा है। पेश है एक रिपोर्ट।
3: महाराष्ट्र

0: वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने एसडीआरएफ के साथ सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि 8 जुलाई की रात तक इसी तरह के मौसमी हालात रहने का इम्कान है। मावल तालुके के पटन गांव में आज एक घर पर मिट्टी के तोड़े खिसकने से कम से कम 2 लोगों की मौत हो गई। मुंबई से देवप्रिया भट्टाचार्य की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं तौहीद खानी।
1: आला रहनुमा मरहूम आयतुल्ला खां अली खामनई के जज्बे खाकी के जुलूस के लिए आज ईरान की राजधानी तेहरान में सौगवार सियाह लिबास में मलबूस थे। ईरानी परचम में लिपटे खामनई के जनाजे के साथ उनके मुतअद्दिद अहले खाना के जनाजे भी शामिल हैं, जो इसराइल और अमरीका की जानिब से जंग के आगाज में 28 फरवरी को फजाई हमलों में मारे गए थे। उनके जसद खाकी को इमाम के रोजे से मुशाबहत करते हुए एक ट्रक पर रखा गया है। हुकाम ने सोख के दौरान सड़कों व मुल्की फजाई हदूद को बंद कर दिया है और रोजमर्रा की जिंदगी के मामूलात को मुअत्तल कर दिया है। ये सोख सनीचर से शुरू हुआ और जुमेरात तक जारी रहेगा। जनाब खामनई को मशहद में इमाम रजा के रोजे के अहाते में दफनाया जाएगा। और फीफा आलमी कप में अमरीका के एरलिंगटन में आज राउंड ऑफ 16 के एक मैच में पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा, जबकि इसी राउंड के एक और मैच में साथ ही मेजबान अमरीका बेल्जियम से कल सुबह सिएटल में मुकाबला करेगा। इंग्लैंड, नॉर्वे, मराकश और फ्रांस क्वार्टर फाइनल्स में पहुंच चुके हैं और आज सुबह राउंड ऑफ 16 के एक मैच में इंग्लैंड साथ ही मेजबान मैक्सिको को 2-3 गोल से हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंचा। राउंड ऑफ 16 के एक और मुकाबले में नॉर्वे ने ब्राजील को 1-2 गोल से शिकस्त दी और क्वार्टर फाइनल में अपना मकाम बनाया। और आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 3 मुल्कों के अपने दौरे के पहले मरहले में जकार्ता पहुंच गए हैं। वजीर आजम मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी 125वीं सालगिरह के मौके पर खराज अकीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि उनका तस्वुर नए भारत की रहनुमाई करता रहेगा। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने जनरल सेक्रेटरी चंपत राय और ट्रस्ट के मेंबर डॉक्टर अनिल मिश्रा के इस्तीफे मंजूर कर लिए हैं और कृष्ण मोहन को उबूरी जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर किया है। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में बहुत तेज बारिश के सबब मामूल की जिंदगी मुतासिर हुई है। कच्छ, सौराष्ट्र, मध्य प्रदेश और साहिली कर्नाटक में कल बहुत तेज बारिश के सिलसिले में रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक।

0: नमस्कार, पब्लिक स्पीक में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रत्येक सोमवार हम किसी एक खास विषय पर चर्चा करते हैं। आज का विषय है डिजिटल इंडिया, प्रौद्योगिकी के माध्यम से नागरिकों का सशक्तिकरण। पिछले एक दशक में आधार, यूपीआई, डिजीलॉकर, आयुष्मान भारत, डिजिटल मिशन और सरकारी सेवाओं का ऑनलाइन होना, इन सब ने आम नागरिक के जीवन को सुगम बनाया है। गांव की एक महिला भी अब मोबाइल फोन से अपना बैंक खाता चला रही है। किसान घर बैठे सब्सिडी ले रहा है और विद्यार्थी ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा है। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या हर नागरिक डिजिटल रूप से साक्षर है? साइबर ठगी, डेटा सुरक्षा और डिजिटल डिवाइड जैसी चुनौतियों से हम कैसे पार पा सकेंगे? इस विषय पर चर्चा के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस विभाग के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नंद कुमारम तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में पूर्व राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक डॉक्टर गुलशन राय। आप दोनों मेहमानों का स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: तो जुड़े रहिए हमारे साथ विशेष चर्चा में और जानिए कि कैसे प्रौद्योगिकी एक आदमी को सशक्त बना रही है और डिजिटल सफर में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। श्रोताओं, आपके मन में इस विषय से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। हमें आपकी फोन कॉल्स का इंतजार है। स्टूडियो की फोन लाइंस खुल चुकी हैं। आप हमारे स्टूडियो के फोन नंबर 2331-0481-2371-7116-2371-7106 और 2331-4444 पर फोन कर अपने सवाल पूछ सकते हैं। दिल्ली के बाहर के श्रोता, दिल्ली का एसटीडी कोड 011 लगाना ना भूलें। आप अपना प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 9289-0944-044 पर भी भेज सकते हैं। इस नंबर पर केवल संदेश ही भेजें, कॉल ना करें। हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts पर भी #AskAIR का इस्तेमाल करते हुए अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप

0: न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। तो सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत में नंद कुमार जी आपसे जानना चाहेंगे, पिछले 10 साल में डिजिटल इंडिया का सबसे बड़ा बदलाव आप क्या मानते हैं जिसने सीधे आम नागरिक को फायदा पहुंचाया है?
1: सबसे बड़ा बदलाव यह है कि आज एक कोई भी गृहिणी अथवा कोई भी व्यक्ति जो छोटा व्यवसाय करता है, जो किसान है, वो एक मोबाइल के माध्यम से पैसे ले सकता है, पैसे दे सकता है, बिना किसी कागज और सरकारी दफ्तर गए वो आधार से अपनी आइडेंटिटी प्रूव कर सकता है, किसी भी अपने यार दोस्त साथी से व्हाट्सएप पर बातें कर सकता है, या किसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का म्यूजिक या देश के कल्चरल चीज़ों का यूट्यूब पर लाभ उठा सकता है एट ए रेट जो कि बहुत ही कम है, पूरी दुनिया में सबसे कम रेट पर, और ये सब उसके एक छोटे से हाथ में मोबाइल के माध्यम से। तो अपने आप में एक ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी भारत की रही है कुछ सालों की इस दौरान।
0: बिल्कुल गुलशन राय जी, डिजिटल अरेस्ट, OTP फ्रॉड, फर्जी लोन ऐप जैसी साइबर ठगी बहुत बढ़ गई हैं। एक आम नागरिक को इनसे बचने के लिए तुरंत क्या करना चाहिए?
2: इसके लिए तुरंत तो ये करना चाहिए, देखिए किसी कोई भी सरकारी ऑर्गेनाइजेशन या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन संस्था जो है वो किसी से फोन पे कोई डेटा नहीं मांगते हैं, किसी का अकाउंट नंबर, किसी का क्रेडिट कार्ड नंबर और कोई डिटेल, इसकी जानकारी कोई भी नहीं मांगता है। और सब बैंक्स में बार बार वो एक एडवर्टाइजमेंट करते हैं, सबको मैसेज भेजते हैं, SMS भेजते हैं कि कोई भी जानकारी किसी को मत दीजिए, हम किसी से जानकारी फ़ोन पे और SMS से और WhatsApp द्वारा नहीं मांगते
0: जी।
2: लेकिन फिर भी हमारे यहाँ काफ़ी लोग, आज की डेट में प्रौद्योगिकी का ऐसा प्रभाव पड़ गया है, नए नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल आ गए हैं जिससे वो फेक साइट और फेक कॉल ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देते हैं वो, और पूरा ऐसा सिनेरियो बना देते हैं कि जैसे ये पुलिस का दफ्तर है जिसमें पुलिस कमिश्नर बोल रहा है कि आपका ये होने वाला है, वो होने वाला है। तो उस संदर्भ में आप नागरिकों को और हमारे ये याद रखना चाहिए, जैसा कि सब बैंक्स कहते हैं और जैसा मैं भी कह रहा हूँ, कि कोई भी संस्था इस भारत में किसी से कोई इंफॉर्मेशन वैसे नहीं मांगती है
0: जी।
2: और ऐसा है, इसका एक थंब रूल है, थंब रूल ये है कि अगर आपको कोई कॉल करता है और वो कॉल उसकी आप सुन लेते हैं और उसके उठा के कॉल कर लेते हैं और आपसे कुछ, एक तो परिचय मांगता है तो परिचय मत दीजिए, अपना डिटेल मांगते हैं तो डिटेल मत दीजिए, अगर आपसे कोई कुछ करने के लिए कहता है तो आप उसे कहिए कि मैं थोड़ा सा बिजी हूं और आपका मैं अभी एक मिनट में तुरंत में आपको फोन करता हूं।
0: ठीक है,
2: ऐसे केसेस में रिटर्न कॉल कभी नहीं होती
0: जी,
2: रिटर्न कॉल नहीं होती,
0: सबसे बड़ी बात।
2: हाँ
0: जी,
2: और आज ये पहला एक वो है कि रिटर्न कॉल करें और रिटर्न कॉल में उससे सब पूछें, क्योंकि रिटर्न कॉल करने में पुलिस जो है उसको ट्रेस करने की कोशिश हो जाती है, रिकॉर्ड मिल जाता है, तो उसका रिकॉर्ड मिल जाता है उसका, तो रिटर्न कॉल उसे कहे मैं रिटर्न कॉल करते हैं आपको एक मिनट दीजिए, कुछ सामान गिर गया है, कुछ थाना है, कुछ भी करके करें और वो रिटर्न कॉल करें, वो बहुत जरूरी है, ये सबसे बड़ा थंब रूल है
0: जी।
2: और किसी को जानकारी मत दीजिए इस बारे में कि मैं कौन हूँ, मैं कौन नहीं हूँ। आजकल बहुत बड़े फ्रॉड हो गए हैं, वो जो ऐप आती है एक जिसमें होता है जिसमें आप नंबर डालिए आपको बता देता है कौन सा क्या आता है उसका क्या आता है, और वो आजकल उसमें भी लोग फ्रॉड करते हैं, अपना नाम लिख देते हैं करते हैं, तो आप उसका जवाब मत दीजिए कहीं हम आपसे आएंगे। और आज जो है दूर संचार विभाग ने, सरकार ने ये क्या किया कि जब आपको कॉल आती है तो उस पे नाम फ्लैश होता है कि ये कहाँ से किसका नाम आ रहा है, कौन आ रहा है, वो सब सर्विस प्रोवाइडर उसको स्पैम भी लिखते हैं कि ये फेक कॉल है या ऐसी कॉल है, तो आप पहले तो कॉल को देखें कि कॉल पे किसका नाम आ रहा है और कॉल पे क्या मैसेज आ रहा है, कॉल देखें पहले गौर से जब कॉल आती है, तो उसके बाद अगर फोन आपको जान पहचान का नाम नहीं है तो मत उठाइए, अगर आप गलती से उठा लेते हैं तो आप उसे कहिए कि मैं थोड़ी देर में कॉल आपको एक मिनट में कॉल करते हैं। रिटर्न कॉल जब करेंगे तो वो मैच्योर नहीं हो
0: जी। और इस समय हमारे साथ श्रोता जुड़ गए हैं, रवि जवालिया हरिद्वार से जुड़े हैं। रवि जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, हमारे विशेषज्ञों से क्या सवाल पूछना चाहते हैं?
3: हाँ धन्यवाद सर। सर नमस्कार, मेरा नाम रवि जवालिया है
0: जी, रवी।
3: मैं गर्मीपुर हरिद्वार से बोल रहा हूँ
0: जी।
3: जी सबसे पहले से विशेषज्ञों को भी मेरा नमस्कार सर।
2: नमस्कार रवि जी, नमस्कार।
3: हाँ सर मैं ये जानना चाहता हूँ, एक मतलब जो नया युवा

0: जो मतलब टेक्निक का यूज करना चाहता है वो डिजिटल साक्षर कैसे हो, क्योंकि आजकल ट्रांजेक्शन वगैरह जैसे कि हम सभी जानते हैं कि एआई भी आया है, फ्रॉड भी है, तो वो डिजिटल साक्षरता कैसे प्राप्त करे, और इसके लिए क्या मतलब स्पेशल कोई नंबर है?
1: देखिए, डिजिटल साक्षर के उस संदर्भ में सरकार ने बहुत काम किया है और सरकार की वेबसाइट पे इस बारे में बहुत ज़्यादा उसमें काम है। इनकी एक नाइलेट है, सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ प्रौद्योगिकी विभाग की एक संस्था है, नाइलेट, NILIET नाइलेट है, और उस पर उन्होंने काफ़ी कोर्सेस उस पर डिजिटल साक्षरता पे लिख रखे हैं। लेकिन डिजिटल साक्षरता आज की डेट में जरूर काम करने के लिए बहुत सिंपल सा है। आप मोबाइल चला लेते हैं, आप स्मार्टफोन चला लेते हैं, आज की डेट में जितने यंग लोग हैं वो सब संभाल लेते हैं, और जो हम जैसे उम्र वाले हैं लोग, हम उन्हीं बच्चों से सीखते हैं हमारा मोबाइल कन्फिगर कर दीजिए। तो ये तो एक डिजिटल के बारे में बच्चों को, आज यंग जनरेशन को बहुत अच्छी तरीके से मालूम है, पर आपको अगर आपकी इसके एक सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर आपको देखना है तो नाइलेट की साइट पे जाके आप कोर्स देखिए, और उनमें काफ़ी मटेरियल है, उस पर काफ़ी इंफॉर्मेशन है, काफ़ी शॉर्ट मॉड्यूल्स है, आप उसमें देखेंगे आपको उसके बारे में पता लगेगा, और आप उसमें नाइलेट का नंबर भी होगा और जिसपे आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
2: बिल्कुल, हमारे जो श्रोता हैं वो नाइलेट पे जाकर साक्षरता प्राप्त कर सकते हैं। और नंद कोमरम जी, आपसे जानना चाहेंगे, यूपीआई आज दुनिया के लिए एक मॉडल बन गया है, ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में डिजिटल पेमेंट को 100% अपनाने के लिए सरकार की अगली क्या प्राथमिकता हो सकती है?
3: यूपीआई दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे सस्ता प्लेटफॉर्म है, जिसके माध्यम से तकरीबन आज के देश में अगर अंदाज लगाएं तो 1 in every 2 or even 1.2 in every 2, मतलब 50-70% ट्रांजेक्शन पूरी दुनिया का यूपीआई के माध्यम से होता है।
2: बहुत बड़ी बात।
3: और भारत, न केवल भारत में बल्कि अन्य कई देशों में उसको व्यवस्थित कर चुका है, और एक समय में जो यूरोपियन या यूएस डोमिनेटेड पेमेंट सिस्टम थे उसको हम लोगों ने वहां तक जाकर के उससे बहुत ही सस्ते रूप में बनाया। अब जो उसके ऊपर डेवलपमेंट्स हो रहे हैं कि उसके ऊपर इंश्योरेंस, उसके ऊपर लेंडिंग, आपस में जो पीयर टू पीयर मतलब आपस में लेन देन या उधार देना या बैंक का कर्ज देना, या जो हमारे देनदारी की सूची बनकर एक साथ पेमेंट हो जाना, या क्रेडिट स्कीम्स लाना जो कंपनीज लाती हैं कि ये खरीदो तो ये पाओ, या ये वॉलेट में रख लो तो कल वो पाओ, इस तरह के जो छोटे छोटे स्कीम्स हैं वो उसके ऊपर धीरे धीरे बन रहे हैं। ये बड़ी खुशी की बात है कि देश में, जो हमारे देश में ये भी एक सच है कि कैपिटल का अभाव है, खास करके जो एमएसएमई और छोटे व्यापार करने वाले लोग हैं उनका क्रेडिट हमेशा कमी रहता है, तो उस कैपिटल को सपोर्ट करने के लिए यूपीआई एक बड़ा ही सिबिल और बाकी सारे स्कोर के माध्यम से इजी लेंडिंग कर पाता है। तो धीरे धीरे एनबीएफसी का काफ़ी पोर्टफोलियो ग्रो हो रहा है, बैंक्स उस कस्टमर तक पहुंच पा रहे हैं जहां तक कि वो पहले नहीं पहुंच पा रहे थे। तो आने वाला जो समय है अगले 5 सालों में, कैपिटल फॉर बिजनेस या इंडिविजुअल्स यूपीआई के माध्यम से आगे बढ़ने की कोशिश।
2: बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। और एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं, बिहार के सासाराम से अमित उपाध्याय। अमित जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
4: जी नमस्कार, सभी जितना भी विशेषज्ञ है, मेरा ये सवाल था कि जैसे कि एक ओटीपी का जो फ्रॉड बढ़ते जा रहे हैं बहुत सारे केस में, उसके लिए हम लोग कैसे इसको व्यापक रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में हम लोग इसको जागरूक अभियान चला सकते हैं, क्या कि इसको क्या हो सकता है? और दूसरी चीज, ये में एक सुझाव भी था, जितना भी सरकारी विद्यालय है या विश्वविद्यालय है, इसमें हम लोग समय समय पर सरकार और उसके के माध्यम से समय समय पर इसको कैसे हम लोग उस पर चर्चा करके ताकि लोगों को जागरूक कर सकते हैं। जी
1: आपका सवाल बहुत ही अहम सवाल है। ओटीपी का फ्रॉड काफ़ी पहले से काफ़ी बढ़ गया है, पर आप ये देखिए कि थोड़ा सा सोचिए कि ओटीपी क्यों आता है और कैसे आता है। ओटीपी जब ही आता है जब आप किसी सर्विस को देख लेने की कोशिश करते हैं, आप किसी को लॉगिन करते हैं मोबाइल पे, किसी के वेबसाइट पे करते हैं, कोई वेबसाइट करते हैं, या कुछ पैसा कुछ करने की कोशिश करते हैं, और वो आपको ये देखने के लिए कि ये सही ट्रांजेक्शन है आपको ओटीपी भेजते हैं। आपके फोन पे ओटीपी आता है, जो रजिस्टर्ड फोन होता है उनके पास उसी पे ओटीपी आता है। कोई भी ओटीपी तभी आप देखिए जब आपने मांगा हो, कोई सर्विस करने के लिए मांगा हो, आपने कुछ कोशिश की हो। अगर आपने कोई सर्विस नहीं की, आपने सर्विस करने की कोशिश नहीं की, आपकी डिजायर नहीं है, आपकी रिक्वेस्ट नहीं है,

0: तो आप किसी भी ओटीपी को मत रिकॉग्नाइज करिए, मत देखिएगा, आप ओटीपी को लीजिएगा ही नहीं। ऐसे को ओटीपी आता रहता है, अपने आप ही ओटीपी भेजते रहेंगे, उनको आप उस पर बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए। उसी ओटीपी को देखिए जब आप किसी सर्विस को कुछ लेने की कोशिश करते हैं और वो आपको जी जानने के लिए कोशिश करता है कि आप सही आदमी हैं जो कि सर्विस ले रहे हैं, तभी आपको ओटीपी भेजता है। ओटीपी एक एक माध्यम है आपको आइडेंटिफाई करने का। तो ऐसे कोई बगैर आपके कहे को ओटीपी भेजता है उसको मत लीजिएगा, उस पे मत ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल मत ध्यान दीजिए।
1: सिंपल सा है, जो आपने मांगा तभी ओटीपी आया, अदरवाइज ओटीपी नहीं आएगा। चलिए एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश के सागर से, विपिन। विपिन आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए क्या सवाल है।
2: सभी को नमस्कार
1: जी,
2: मैं विपिन बात कर रहा हूँ सागर से। सर मेरे दो सवाल हैं। पहला सर मैं ये जानना चाह रहा था, आजकल देखा जाता है सोशल मीडिया पे और अलग अलग जगह कि बहुत सारे ऐप हैं जो आपका क्रेडिट स्कोर बढ़ाने के लिए कहते हैं कि इसे डाउनलोड करें, आपका इससे एक्सपर्ट जो आपको सलाह देंगे उस हिसाब से आपका क्रेडिट स्कोर ग्रो करेगा। तो ये कैसे हम जाने कि सही या गलत है ऐप हम जो डाउनलोड करें या नहीं करना चाहिए। दूसरा सवाल ये था सर कि जो हेल्पलाइन है 1930 सर, इस पर कॉल करते हैं तो क्या होता है कि हमारा कॉल ऑटोमेटिकली इमरजेंसी नंबर इमरजेंसी कॉल में ट्रांसफर हो जाता है यानी 112 पर। तो ये नॉर्मल है, ऐसे ही लगता है कॉल कि 1930 पे करते हैं और इमरजेंसी में ट्रांसफर होता है, या फिर ये हेल्पलाइन अलग होती है, कोई प्रॉब्लम चल रही है अभी?
3: मैं पहला सवाल का जवाब देता हूँ। पहले जो आपने कहा कि हम अगर कोई भी प्रश्न मतलब इस तरह से पूछते हैं कि हमारा एक बार आप इनका पहला सवाल जो था
1: एक बार फिर से सवाल करें,
3: फिर सवाल करेंगे आप?
1: कट गया शायद उन्होंने उनका
3: डिस्कनेक्ट
1: हो गया है। लेकिन 1930 के बारे में कुछ
3: अच्छा 1930 के बारे में मैं ये कहना चाहूंगा बाकी श्रोताओं के लिए जो जुड़े हुए हैं कि 1930 और 112 इस तरह से कनेक्टेड है कि कुछ 1930 के कॉल इमरजेंसी कॉल होते हैं, जैसे कि साइबर में इमीडिएट रिलीफ, तो आप 112 से कई बार कोई इमीडिएट कहीं पुलिस की गाड़ी पहुंचानी है, कहीं स्वास्थ्य की गाड़ी पहुंचानी है, तो इमरजेंसी रिलीफ में भी लोग 1930 में लगा देते हैं, या इमरजेंसी कोई एक्शन लेना है ब्लॉकिंग ऑफ एन अकाउंट, 1930 में ये भी सुविधाएं हैं कि उससे रिलेटेड बैंक का भी एक प्रोसेस है, तो कई बार आपको डायवर्जन ऐसा मिल जाता होगा। ऐसे एज ए पॉलिसी 1930 स्पेसिफिक पर्पस के लिए डेडिकेटेड है, जो साइबर फ्रॉड या अकाउंट फ्रॉड या उस तरह की चीज़ों के लिए रहता है, न कि दूसरे चीज़ों के लिए। और जो आपका डिजिटल ऐप वाला क्रेडिट स्कोर का विषय था, क्रेडिट स्कोर सिबिल का या अलग बैंकिंग ब्यूरो के डेटा के आधार पर बनता है कि आपने पहले क्या लोन लिया है, आपका लोन में पेमेंट का स्ट्रक्चर कैसा था, आप कितने डिसिप्लिन वे में पे करते चले गए, तो आपके बैंक का ट्रांजैक्शन के आधार पर बनता है। आपके किसी ऐप में कोई एक्टिविटी का स्कोर पर कोई असर नहीं पड़ता, बार बार देखने से या बार बार किसी ऐप में चार बार गेम खेलने से, क्योंकि आपका जो आपने हाउसिंग लोन लिया, आपने मान लीजिए कोई पेमेंट टाइम पर पेमेंट कर दिया, ये फैक्ट्स हैं जिसके आधार पर सिबिल स्कोर बनाता है या अन्य क्रेडिट एजेंसी आपका स्कोर बनाती है। ये सब केवल लोगों को समझाने के लिए कि देखिए साहब एक पॉइंट बढ़ जाएगा, ये बार बार करेंगे तो 5 पॉइंट जुड़ जाएगा, ये सब केवल गुमराह करने का रास्ता है। सिविल का स्कोर एक साइंटिफिक मेथड से पूरे देश में बनाया जाता है, इसके लिए कोई ऐप बिल्कुल भी डाउनलोड ना करें, वो ज़्यादातर आपको गुमराह करने के लिए।
1: बिल्कुल, तो हमारे श्रोताओं को जानकारी मिली होगी। तो जो श्रोता अभी हमसे जुड़े हैं हम उन्हें बता दें कि आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पब्लिक स्पीक और आज हम डिजिटल इंडिया प्रौद्योगिकी के माध्यम से नागरिकों का सशक्तिकरण विषय पर चर्चा कर रहे हैं, आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस विभाग के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नंद कुमारम जी और प्रधानमंत्री कार्यालय में पूर्व राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक डॉक्टर गुलशन राय जी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ओडिशा से देश पांडे देशदीप दास जी जुड़ गए हैं। देशदीप दास जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्या सवाल पूछना चाहेंगे
4: जी? नमस्कार।
1: नमस्कार जी। नमस्कार
4: जी। कुमारम महोदय और राय महोदय को मेरा सादर नमन।
3: नमस्कार जी।
0: नमस्कार, आपको भी सादर नमन
4: जी। मैं देशदीप दास केंद्रापरा उड़ीसा से बोल रहा हूँ। तो मेरा सवाल है, शिक्षार्थियों को सशक्त बनाने वाली प्रमुख डिजिटल सेवाएं कौन सी है?
3: शिक्षार्थी मतलब विद्यार्थी
1: जी,
3: स्टूडेंट्स
4: विद्यार्थी जी सर।
3: तो स्टूडेंट्स के लिए अगर शासकीय गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स बताएं तो जैसे दो है, अगर आप किंडल स्कूल से 12वीं तक में हैं तो दीक्षा एक प्लेटफॉर्म है, इस पर सभी एनसीईआरटी की किताबें अलग अलग भाषाओं में अलग अलग विषयों की बड़े ही डिजिटल और इजी सुगम स्थान तरीके से उपलब्ध होती है। दूसरी उस पर वीडियो के कोर्सेज बने हुए हैं जो ऑनलाइन उन विषयों से संबंधित, मान लीजिए कोई छठी क्लास का मैथ्स का बच्चा है या कोई सातवीं क्लास का मैथ्स का बच्चा है, तो अगर वो सातवीं पढ़ रहा है और उसे छठी में डाउट है तो बड़ा इंटरकनेक्टेड बड़े ईजी वे में दीक्षा प्लेटफॉर्म उसके माध्यम से, और कई लाख बच्चे इससे जुड़े हुए हैं ऑलरेडी। अगर आप बड़े क्लास में बच्चे हैं, मतलब आप कॉलेज के स्टूडेंट हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज के या किसी प्रोफेशनल कोर्स में हैं, तो स्वयं करके एक पोर्टल है या NPTEL नाम से जो पोर्टल पहले चलता था, जिस पर कि बड़े हाई लेवल के जो कोर्सेज राइट फ्रॉम आपको उसमें IIT कानपुर या IIT के बड़े MTech के मास्टर्स PhD के कोर्स से लेकर के और जो आपके 12th के इंजीनियरिंग के मेडिसिन के IIMs के मैनेजमेंट के ये सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, इवन कमर्शियल चार्टर अकाउंटेंसी वगैरह के। तो ये एक पूरा जूनियर क्लास से लेके सीनियर तक का कोर्सेज है। इसके अलावा बहुत सारे गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस ने, राज्य सरकारों ने अपने अपने भी प्रयास किए हैं। उड़ीसा में आप अगर यूट्यूब पे जाएंगे तो बहुत सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस ने अपने कोर्स को पब्लिक किया है, तो वहां पर भी जाकर के आप सब्जेक्ट वाइज सेशन वाइज ऐसे कोर्सेज का लाभ देखकर ले सकते हैं।
1: नंद कुमारन जी, वरिष्ठ नागरिक और महिलाएं अक्सर डिजिटल सेवाओं से घबराती हैं, उन्हें डिजिटल रूप से साक्षर बनाने के लिए आपके मंत्रालय की क्या विशेष योजना है?
3: दो विषयों पर हम लोग विशेष ध्यान देते हैं। एक तो उनका अकाउंट खुलना सबसे बड़ा काम और उनके हाथ में स्मार्टफोन होना। तो स्मार्टफोन में आज के डेट में भारत में बहुत ही कम दरों पर स्मार्टफोन उपलब्ध हैं, तो इसके रेट्स को भी आप अगर कंपेयर करेंगे, जैसे डेटा बहुत कम रेट पे था तो स्मार्टफोन भी भारत में बहुत ही लो स्तर लो कॉस्ट पर बिक रहा है आजकल, और भारत की PLI स्कीम्स ने बड़ा उसमें कारगर रोल प्ले किया है। अब जहां तक रहा उनके सीखने और व्यवहार की बात, तो लोकल भाषा में कंटेंट उपलब्ध करा करके कि वो जिस भाषा में, अगर वो तमिल में बात करते हैं, अगर वो हिंदी में बात करते हैं, जिस भी गुजराती में बात करते हैं, तो उस भाषा में आजकल सभी सरकारी वेबसाइट को उपलब्ध कराया गया है। आप भाषिणी के माध्यम से या अन्य AI टूल्स के माध्यम से सभी शासकीय पोर्टल्स को उस लोकल भाषा में उपलब्ध कराने का प्रयास है, जिसके माध्यम से आप इजी से उसे समझ सकें। और हेल्पलाइन भी सिटीजन के लिए अलग लागू हो गया है, जो सीनियर सिटीजन का अलग एक डेस्क है जो उनको फॉलो अप करता है और उनको सपोर्ट देता है, ताकि वो 1930 में तो कर ही सकते हैं, उसके अलावा सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल हेल्पलाइंस भी हैं।
1: एक और श्रोता दिल्ली से जुड़ गए हैं, धर्मवीर। धर्मवीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्या सवाल करना चाहेंगे?
5: धन्यवाद, मैं धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ। सर को मेरा नमस्कार। मेरे दो क्वेश्चन है सर।
1: जी बताइए।
5: पहला क्वेश्चन, जैसे कि कीपैड वाला फोन और स्मार्टफोन, अगर कीपैड उसमें भी अगर मैसेज आते हो और वो फोन हमारा बैंक में रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो इसमें अगर गलत बटन दबा देने से कभी इसमें फ्रॉड होने के चांसेस होते हैं, अगर हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर फोन दूसरा है तो? और दूसरा सवाल मेरा ये है, वो मेरा मेन मकसद है सवाल का, कि जैसे आज के समय में दसवीं क्लास के बच्चों से स्टार्ट होकर देखा जाता है स्कूलों में कंप्यूटर कोर्स कराए जा रहे हैं, प्रैक्टिकली कराए जा रहे हैं, क्यों ना बच्चों को नर्सरी टाइम से बच्चों को ये फ्रॉड के बारे में, स्मार्टफोन के बारे में बताया जाए कि ऐसे गलत नंबर आए तो आपको उसको छूना नहीं है, या जो भी जैसे भी तरीके से बताया जाए, ट्रेनिंग दी जाए, नर्सरी से ही स्टार्ट किया जाए, क्योंकि आपको पता ही है आजकल हर बच्चा शुरू से ही लेके फोन लेके बैठ जाता है, और जो फोन हमें नहीं चलाना आता वो बच्चा वो खोल के बैठ जाता है। इसके लिए सरकार को चाहिए कि स्कूलों में भी, ये मेरा सुझाव भी समझ लिया जाए, मेरा क्वेश्चन है कि नर्सरी क्लास से भी बच्चों को इस चीज के लिए ट्रेनिंग देनी जरूरी है। धन्यवाद।
0: आपका जो पहला प्रश्न है कि उसमें स्मार्टफोन और फीचर फोन की बात है, देखिए दोनों में बहुत अंतर होता है। स्मार्टफोन फीचर फोन जो होता है बहुत सिंपल फोन होता है और उसपे बहुत फीचर्स नहीं होते हैं, लेकिन जो भी मैसेज आते हैं बैंक से आता है या OTP आता है, वो सब SMS के द्वारा आते हैं, व्हाट्सएप और किसी उसके द्वारा नहीं आते हैं। तो वो OTP आना या कोई मैसेज आना वो ऐसा ही है जैसे कि एक स्मार्टफोन में आता है। तो अगर आप उस पर कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उसका वही इफेक्ट है जो कि स्मार्टफोन के अंदर होता है। तो अगर आपने स्मार्टफोन से किया है या की फोन से, की फीचर फोन से किया है, उसका इफेक्ट सेम है। जहां तक OTP और मैसेजेस का सवाल है, उसका दोनों का इफेक्ट सेम ही है, बिल्कुल सेम है, उसमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन स्मार्टफोन इसलिए इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, उसमें फीचर्स बहुत कम होते हैं, ऐप नहीं डाउनलोड कर सकते आप, कोई भी ऐप नहीं डाउनलोड कर सकते, और आपको वो जो दूसरी किस्म की जो अटैक्स होते हैं, साइबर अटैक्स, साइबर इंसिडेंट्स होते हैं, वो उस फीचर्स फ़ोन पे नहीं होती हैं, वो सब स्मार्टफोन पे होते हैं वो सब। इसलिए दोनों में बहुत अंतर है, कॉस्ट में भी अंतर है, फीचर्स में भी अंतर है, और उसका यूटिलिटी का भी अंतर है। लेकिन एक आम नागरिक के पर्पज़ के लिए, अगर आप बैंक से इंटरेक्ट करते हैं, आपका OTP आता है, आप कोई नंबर एक्सेस करते हैं, वो आप फीचर्स फ़ोन पे एक्सेस कर सकते हैं। कुछ चीज़ें आज की डेट में की फीचर्स फ़ोन भी बहुत अच्छे हो गए हैं, जिसपे आप वेबसाइट भी देख सकते हैं, अपना ओपन कर सकते हैं, ऐसे भी की फीचर्स फ़ोन हो गए हैं। लेकिन अगर आप दोनों में अंतर मोटा अंतर से आपको मैंने बता दिया है, और की फीचर्स फ़ोन नॉर्मल पर्पज़ के लिए काफ़ी सेफ होता है, स्मार्टफोन में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है और केयरफुल रहना पड़ता है।
1: गुलशन जी, एक और सवाल हमारा है, गाँव का किसान पहली बार जब स्मार्टफोन चलाता है तो उसे साइबर फ्रॉड से बचाने के लिए सबसे जरूरी क्या बातें हो सकती हैं?
0: देखिए, एक तो उसको कहा जाता है कि अपने एंटीवायरस रखना चाहिए
1: जी।
0: एक दूसरी बात यह है कि वो जो भी ऐप डाउनलोड करे, वो जो इतनी जो जरूरत हो और एक ट्रस्टेड सोर्स से ऐप डाउनलोड करे
1: जी।
0: आज कहते हैं कि आप गूगल का प्ले स्टोर है, गूगल से प्ले आप ऐप डाउनलोड करिए, और एप्पल का प्ले स्टोर है, वहाँ से डाउनलोड करिए, ऐसे किसी वेबसाइट पे जाके आप ऐप मत डाउनलोड करिए, वो दूसरा सवाल है। और तीसरा सवाल तो वो है कि आपको ऐसे मैसेज आए जो आपने मांगा नहीं है, आपने पूछा नहीं है, उस पे ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत नहीं है।
1: बिल्कुल नंद कुमारन जी, सोशल मीडिया फ्रॉड के बारे में बात करते हैं। फेसबुक, व्हाट्सएप पर इन्वेस्टमेंट स्कैम और पार्ट टाइम जॉब के नाम पर ठगी बहुत हो रही है, एक आम गृहिणी इसे कैसे पहचाने?
3: देखिए, ये डिजिटलाइजेशन और इसकी एक अच्छी चीज़ है कि पार्ट टाइम जॉब घर बैठे गृहिणियाँ कर रही हैं और उसका लाभ उठा रही हैं। लेकिन कुछ लोग इस अच्छी चीज़ का दुरुपयोग करने के लिए लालच देकर या कोई काम का गलत चीज़ बताकर उनके अकाउंट्स या कोई फ्रॉड या कुछ पिक्चर्स या कुछ ऐसी चीज़ों में इंगेज होते हैं जो लॉन्ग टर्म में नुकसानदेह होता है। तो जैसा अभी गुलशन राय साहब ने बताया कि आप फिनेंशियल ट्रांजैक्शन और अपने वर्क को समझें अच्छे से, कि आप कब उनको OTP दे रहे हैं, कब अपना आइडेंटिटी दे रहे हैं, क्योंकि आइडेंटिटी थेफ्ट भी एक बड़ा कॉमन हो रहा है कि आपसे बात करी, सारे कागज इकट्ठे किए और फिर वो चले गए, या फिर आपसे बैंक अकाउंट मांगा, बोला हाँ साहब कुछ क्रेडिट कर रहे हैं, आप ये कर रहे हैं, और उसमें फिर कुछ पैसे क्रेडिट भी कर देते हैं और थोड़े दिनों के बाद उसे ज़्यादा पैसा आपसे फिर निकाल ले जाते हैं। तो इस तरह के समय में ध्यान यह देना चाहिए कि मैं क्या इन्फॉर्मेशन दूं और कैसे दूं। बड़ी छोटी बड़ी अच्छी बात बताई कि मैं कॉल बैक करना, अपना वेबसाइट चेक कराना, और लोगों का रेफरेंस देना, चार लोगों से बात करना कि क्या सच में कोई हमारी दूसरी बहन, दूसरी साथी वहां काम करती है कि नहीं, सोशल वेरिफिकेशन प्रोसेस करना, इस तरह से कोई ट्रस्टेड माध्यम से ही जॉब करें। क्योंकि कई बार आप जो जॉब कर रहे हैं उस जॉब के पीछे क्या काम हो रहा है ये आपको पता नहीं चलता और आप उसकी जिम्मेवारी या फेस बन जाते हैं। तो काम को ध्यान में रखते हुए इस तरह से काम में जाना चाहिए।
1: बिल्कुल जाना चाहिए। और एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं, मध्य प्रदेश के पन्ना से हर्षवर्धन पांडे। हर्षवर्धन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
6: हाँ, तो मैं ये जानना चाहता कि ये जो साइबर अपराध है जो चल रहा है, इस पर सरकार द्वारा कभी ये नियम कानून बनाकर रोक ये लगाई जाएगी कि ऐसे ही चलता रहेगा? इसका जो 1930 जो काल है, इस पर कभी वो ये जो काल करते हैं तो कभी होती है कि नहीं होती है? दूसरा प्रश्न ये है, इसका मुझे उत्तर चाहिए
3: जी। हर्षवर्धन जी, आपका प्रश्न मैं सुनकर के प्रयास करता हूँ। जो विषय है वो जो कहना यह रहता है लोगों का कि 1930 में दो तरह के सवाल आते हैं, या तो कुछ जानकारी के लिए, या अकाउंट को ब्लॉक करने के लिए, या एक ट्रांजैक्शन रिवर्ट करने के लिए, और कुछ केसेस में वो कानून अपराध में कन्वर्ट करके उस पर केस भी होता है। तो 1930 के बाद वो चला जाता है आपके जो थाना, संबंधित जो थाना है जहाँ पर या तो क्राइम ओरिजिन हो रहा है या जहाँ पर क्राइम टर्मिनेट हो रहा है, दो तीन तरह के जगहों पर केस रजिस्टर हो सकता है। तो इस तरह के केसेस में वो उस संबंधित थाना में या उस जिले के साइबर थाना अगर कोई चिन्हित हो तो वहां, अन्यथा राज्य के मुख्यालय में भी प्रकरण दर्ज होते हैं, उसको जीरो एफआईआर करके फिर ट्रांसफर करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्रकरण दर्ज होते हैं और उस पर कार्रवाई होती है हमारे जो बीएनएसएस और जो न्याय संहिता के क्रम के रेप में, और इसमें बहुत अधिक कार्रवाइयां होती हैं। यह बात जरूर है कि चूंकि केस भी बहुत दर्ज होते हैं तो शायद थोड़ी देरी हो जाती हो।
1: और अंत में आप लोगों से जानना चाहेंगे कि हमारे श्रोताओं को एक बात में अगर जवाब देना हो, डिजिटल रूप से सशक्त नागरिक बनने की सलाह देनी हो तो क्या कहना चाहेंगे?
0: ये बहुत अहम सवाल है
1: जी।
0: डिजिटल रूप सशक्त बनने के लिए आपको, जैसे हमारे एक्सपर्ट श्री नंद कुमार जी ने बोला कि आपको इस टाइप का थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करना चाहिए कि जो चीज इंफॉर्मेशन आप ले रहे हैं वो गलत तो नहीं है, ऐप जो आप डाउनलोड कर रहे हैं गलत तो नहीं है, आप ओटीपी सर्विस मांगी नहीं है वो नहीं करना चाहिए। ज़्यादातर आप कोई जब तक आप चीज कोई एक्सेस मांगते नहीं हैं तब तक कोई जानकारी आपके पास आती है उस पर ध्यान गौर करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा ध्यान करिए, थोड़ा सा सशक्त हो जाइए तो आप डिजिटल ट्रांजेक्शन बहुत आसान है।
3: भारत डिजिटल में दुनिया भर में अग्रणी है और एकाध दो देशों को छोड़ दें तो शायद गिनती के नंबर 3 पे तो हम लोग हैं ही।
1: बिल्कुल,
3: मैं फ्रॉड के डर से डिजिटल में आगे न बढ़ें ऐसा बिल्कुल ना सोचें। ये एक नया युग का समय है, नया युग बनता जा रहा है हमारी आंखों के सामने। एआई के माध्यम से, डिजिटलाइजेशन के माध्यम से अपने परिवार, अपने बच्चे, अपने संबंधियों को मजबूत करें और जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स इसके मिल रहे हैं आज और आने वाले समय में उसका पूरा लाभ उठाएं और अपना भविष्य संवारने में इसका इस्तेमाल करें।
1: बिल्कुल, और घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि हम चर्चा को यहीं पर विराम दें। हम अपने सभी श्रोताओं का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया, और साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस विभाग के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नंद कुमारम जी तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में पूर्व राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक डॉक्टर गुलशन राय, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका, श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद
1: जी। आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा इसके बारे में आप अपने सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं, पता है airnsgtalks@gmail.com। कार्यक्रम को दोबारा सुनने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.nic.in पर लॉगिन कर सकते हैं, और साथ ही पब्लिक स्पीक का ये अंक यहीं पर समाप्त होता है। अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे। मुकेश कुमार को दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। रात्रि के 10 बजे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा।
1: ये आकाशवाणी है। आज की रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में प्रस्तुत है पंडित कैलाश चंद शर्मा का बांसुरी वादन। कैलाश शर्मा का संगीत जगत से परिचय बचपन में ही हो गया था। बांस से बने इस वाद्य यंत्र से निकलने वाली मधुर ध्वनियों से प्रेरित होकर उन्होंने नई दिल्ली स्थित गंधर्व महाविद्यालय में श्री प्रकाश एन सक्सेना से बांसुरी सीखना प्रारंभ किया। बाद में उन्होंने पंडित विनय चंद्र मौदगल्य से भारतीय शास्त्रीय संगीत की बारीकियों का भी अध्ययन किया। बांसुरी कैलाश शर्मा के जीवन का अभिन्न अंग बन गई और उन्होंने निरंतर अभ्यास जारी रखा। उन्होंने अंतर महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय स्तर की संगीत प्रतियोगिताओं में भाग लिया और अनेक पुरस्कार प्राप्त किए। तब से लेकर आज तक कैलाश शर्मा ने अपने व्यावसायिक जीवन में एक लंबा सफर तय किया है। उन्होंने भारत तथा विदेशों के अनेक देशों में व्यापक रूप से प्रस्तुतियां दी हैं और उनके संगीत को अत्यधिक सराहना प्राप्त हुई है। उन्होंने महान संगीत सम्राट पंडित रविशंकर के साथ अनेक अवसरों पर कार्य किया तथा विश्वविख्यात रंगकर्मी श्री पीटर ब्रुक द्वारा पेरिस में आयोजित एक कार्यशाला में भाग लेने के लिए उनका चयन किया गया। उन्हें भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद यानी ICCR द्वारा मध्य पूर्व के 10 देशों की यात्रा पर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के एकल वादक के रूप में प्रस्तुति देने के लिए भेजा गया। कैलाश शर्मा ने राजधानी में आयोजित अनेक प्रमुख संगीत समारोहों में एकल वादक के रूप में प्रस्तुति दी है, जिनमें विष्णु दिगंबर जयंती, शंकर लाल संगीत समारोह, सेहर तथा नैना देवी स्मृति समारोह प्रमुख हैं।
2: दिस इज आकाशवाणी। इन टुनाइट्स रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा वी ब्रिंग यू अ फ्लूट रिसाइटल बाय पंडित कैलाश चंद शर्मा। पंडित कैलाश चंद शर्मा वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू द वर्ल्ड ऑफ म्यूजिक व्हाइल ही वॉज स्टिल अ चाइल्ड। इंस्पायर्ड बाय द साउंड्स दैट इमेनेटेड फ्रॉम दिस इंस्ट्रूमेंट मेड ऑफ बैम्बू, ही स्टार्टेड लर्निंग द फ्लूट फ्रॉम श्री प्रकाश एन सक्सेना at Gandharv Mahavidyalaya, New Delhi. Later, he also learnt the nuances of the Indian classical music from Pandit Vinay Chandra Modgalya. The flute became an integral part of Kailash Chandra Sharma's life and he played on, participating in and winning prizes at inter-college university level music competitions. Since then, Pandit Kailash Chandra Sharma has come a long way professionally, having performed a great deal in India and many countries abroad. He has worked with the great maestro Pandit Ravi Shankar on many occasions and was selected to participate in a workshop organized in Paris by the renowned theater personality Mr. Peter Brook. He was sent on a tour for 10 countries in the Middle East by the ICCR to perform as a soloist. Pandit Kailash Chand Sharma has performed as a soloist in some of the major music festivals that are held in the capital, such as Vishnu Digambar Jayanti, Shankar Lal Music Festival, Seher, the Naina Devi Memorial Festival, to name a few.
1: आपके साथ आज इस कार्यक्रम में तबले पर संगत कर रहे हैं पंडित विनोद लेले। पंडित कैलाश चंद शर्मा अपने कार्यक्रम का आरंभ राग मालगुंजी से कर रहे हैं। विलंबित रचना एक ताल व द्रुत रचना तीन ताल में निबद्ध है।
2: Today he is accompanied on tabla by Pandit Vinod Lele. Kailash Chand Sharma begins his flute recital with Rag Malgunji. Vilambit composition is set to Ek Taal and Drut composition is set to Teen Taal.

0: ये था पंडित कैलाश चंद्र शर्मा द्वारा बजाया गया राग मालगुंजी। पंडित कैलाश चंद्र शर्मा अपने कार्यक्रम का समापन राग मिश्र खमाज से कर रहे हैं। मध्य लय रचना दादरा ताल में निबद्ध है।
1: You just heard राग मालगुंजी। पंडित कैलाश चंद्र शर्मा concludes his flute recital with राग मिश्र खमाज। मध्य लय कॉम्पोजिशन इज सेट टू दादरा ताल।

0: अभी आप सुन रहे थे पंडित कैलाश चंद शर्मा का बांसुरी पर बजाया राग मिश्र खमाज। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे पंडित विनोद लेले। इसी के साथ आज की रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा अब यहीं संपन्न होती है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया और इसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही प्रसारित किया गया।
1: पंडित कैलाश चंद शर्मा वॉज अकम्पनीड ऑन तबला बाय पंडित विनोद लेले। विद दैट वी कंक्लूड टुनाइट्स रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। दिस प्रोग्राम वॉज अर्लियर रिकॉर्डेड in the studios of Akashwani Delhi. This program came to you from Delhi station of Akashwani.

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, इसके बाद अंग्रेजी में समाचार होंगे जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में आज शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया ने 2018 में अपने संबंधों को सुदृढ़ कर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचाया है जिससे लोगों को लाभ हुआ है। इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि तीनों देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। दोनों ने राम मंदिर में दान राशि में कथित गड़बड़ी के मामले में नाम सामने आने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। आज शाम अयोध्या में हुई बैठक के बाद ट्रस्ट ने नए महासचिव की नियुक्ति तक कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव बनाया है। ट्रस्ट ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी का नियुक्ति का भी फैसला है। इसके लिए 3 सदस्य समिति बनाई गई है जो उपयुक्त नामों की सिफारिश करेगी। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने कहा कि पूरे मामले में किसी साजिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ट्रस्ट ने कहा कि दान में मिली सभी वस्तुएं सुरक्षित हैं।
2: अनेक अच्छे अच्छे पदार्थ जो दिए गए, अनेक वस्तुएं जो प्रदान की गई, वे भी कहां गुल हो गई, वे कहां चली गई। उन सारी वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों ने आपके सामने आपको दिखाने के लिए लाया है। हम आपको दिखाएंगे और वे सारी वस्तुएं जिनका वर्णन आता है, इन सब को हम आज आपके सामने यहां पर रख करके दिखाने वाले हैं। किस प्रकार की 2800 वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों के पास उपलब्ध है और वे सारी वस्तुएं सुरक्षित है।
1: ईरान की राजधानी तेहरान में आज सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई की अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। खामेनेई और उनके परिवार की 28 फरवरी को इसराइल और अमेरिका की ओर से किए गए हमलों में मृत्यु हो गई थी। ये शोक शनिवार से शुरू हुआ है और बृहस्पतिवार तक जारी रहेगा। आयतुल्ला अली खामेनेई को उनके जन्म स्थान मशहद स्थित इमाम रजा की दरगाह में सुपुर्द खाक किया जाएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों के बीच लोगों ने भारत सरकार से सहायता की अपील की है। पिछले एक महीने से क्षेत्र में प्रदर्शन जारी है। लोगों ने भारत से दवाइयां और जरूरी खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। पिछले 20 दिनों से इस क्षेत्र में राशन और दवाइयों की आपूर्ति रोक दी गई है। अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चाउना मीन ने आज भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण BSI अरुणाचल प्रदेश क्षेत्रीय केंद्र और जीबी पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान के ईटानगर केंद्र के सहयोग से आयोजित वन महोत्सव में भाग लिया। उन्होंने युवा पीढ़ी से अरुणाचल प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और स्वदेशी ज्ञान प्रणालियों को संरक्षित और बढ़ावा देने का आग्रह किया। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई शहरी और ग्रामीण इलाकों में जलभराव हो गया है। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे और मुंबई गोवा हाईवे पर हुए भूस्खलन का मलबा तुरंत हटाकर यातायात सामान्य करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने SDRF के साथ समीक्षा की और सभी अधिकारियों को त्वरित समन्वय कार्रवाई के निर्देश दिए। इस बीच मौसम विभाग ने गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में कल मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में आज देर रात 12:30 बजे पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा। एक अन्य मुकाबले में सुबह 5:30 बजे अमेरिका का सामना बेल्जियम से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani. The news read by R.S. Raghu. Prime Minister Narendra Modi arrived at Jakarta today on the first leg of his high-stake three-nation Indo-Pacific tour to Indonesia, Australia and New Zealand. Upon arrival at the Jakarta airport, Mr. Modi was personally received by Indonesian President Prabowo Subianto. Prime Minister Modi was accorded a grand and enthusiastic welcome from the local Indonesian community and the Indian diaspora. In a social media post, Mr. Modi said that India and Indonesia elevated their relations to a comprehensive strategic partnership in 2018, which has benefited the people. A vibrant cultural program featuring traditional Indonesian and Indian dance performances was organized to welcome the Prime Minister, reflecting the deep civilizational and cultural bonds shared by the two countries. During the visit, Prime Minister Modi will hold bilateral talks with Indonesian President Prabowo Subianto. Prime Minister Narendra Modi has said that Dr. Shyama Prasad Mukherjee was a great patriot and a visionary dedicated to the integrity of India. In his video message on the occasion of 125th birth anniversary of Dr. Mukherjee, Mr. Modi said, "The thought of Dr. Mukherjee is playing a major role in guiding modern India."
4: आज देश की धरती, पश्चिम बंगाल की धरती, अपने एक महान सपूत, एक महान देशभक्त, भारत की अखंडता के लिए समर्पित एक युगद्रष्टा को श्रद्धा पूर्वक स्मरण कर रही है। आज हम उस विचार बीज का गुणगान कर रहे हैं जो आधुनिक भारत को दिशा देने में बड़ी भूमिका निभा रहा है। मैं डॉक्टर मुखर्जी की 125वीं जन्म जयंती के अवसर पर उन्हें नमन करता हूं, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।
3: द श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट हैज एक्सेप्टेड द रेजिग्नेशंस ऑफ जनरल सेक्रेटरी चंपत राय एंड ट्रस्ट मेंबर डॉक्टर अनिल मिश्रा। Both had stepped down after their names surfaced in the alleged Ram Temple donation embezzlement case. Krishna Mohan has been appointed interim general secretary until a new appointment is made. His complaint formed the basis of the FIR registered in the alleged donation irregularities case, in which 8 people have been arrested. Addressing the media, Trust Treasurer Govind Dev Giri said, "The possibility of a conspiracy behind the episode could not be ruled out." 1993 batch IPS officer Alok Kumar Mittal has been appointed as Director General of Bureau of Police Research and Development. Another IPS officer of 1993 batch Amit Garg has been appointed as Director of